शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां

0: 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

सभी सुनने वालों को प्रातः वंदन और अभिनंदन। आइए अर्चना की करते हैं शुरुआत इस प्रार्थना के साथ।

ये है आपका अपना चंबल चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ईश्वर का नाम वह अलौकिक दीपक है जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। जब मन व्याकुल हो जाता है तो प्रभु का नाम सबसे बड़ी औषधि बन जाता है, और जब ईश्वर की कृपा हो जाए तो जीवन वास्तव में संवर जाता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। कहते हैं भजन केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक पवित्र माध्यम है। जब हम सच्चे मन से प्रभु का भजन करते हैं तो मन को आनंद और जीवन को नई ऊर्जा मिलती है।

ये था हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के प्रमुख कलाकार थे पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, रविंद्र साठे, पंडित रतन मोहन शर्मा, वाणी जयराम, राजेंद्र मेहता, नीना मेहता और साथी। इसी के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना को यहीं देते हैं विराम।

अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। प्रमुख कलाकार थी उत्तरा केलकर और मिताली सिंह और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन, विषय है आनंदानुभूति।
1: प्रत्येक सुख उपभोग के बाद दुख आता है। ये दुख उसी क्षण आ सकता है अथवा संभव है कुछ देर में आए। जो आत्मा जितनी उन्नत है उसे सुख के बाद दुख भी उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है। हमें सुख दुख दोनों ही नहीं चाहिए। ये दोनों ही हमारे प्रकृति स्वरूप को भुला देते हैं। दोनों ही जंजीर हैं, एक लोहे की तो दूसरी सोने की। इन दोनों के पीछे ही आत्मा है, उसमें न सुख है न दुख। सुख दुख दोनों ही अवस्था विशेष हैं और प्रत्येक अवस्था सदा परिवर्तनशील होती है, परंतु आत्मा आनंद स्वरूप, अपरिणामी और शांति स्वरूप है। हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं करनी है, वो तो हमारा प्रकृत स्वरूप है। केवल मैल को धो डालो तभी उसका दर्शन होगा। इस आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर हम जगत से ठीक ठीक प्रेम कर सकेंगे। खूब उच्च भाव में अपने को प्रतिष्ठित करो। मैं अनंत आत्म स्वरूप हूँ, ये समझकर हमें जगत प्रपंच की ओर संपूर्ण शांत भाव से दृष्टिपात करना होगा। ये जगत एक छोटे बच्चे के खिलौने के समान है। हम जब उसे समझ लेंगे तब जगत में कुछ भी क्यों न हो वो हमें चंचल नहीं कर सकेगा। यदि प्रशंसा से मन प्रसन्न होगा तो निंदा से वो अवश्य ही संतप्त हो जाएगा। केवल इंद्रियों का ही नहीं मन का भी समस्त सुख अनित्य है, किंतु हमारे भीतर ही वो निरपेक्ष सुख रहता है जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहता। ये सुख पूरी तरह स्वायत्त और आनंद स्वरूप है। सुख के लिए आभ्यंतरिक आत्मा पर हम जितना निर्भर रहेंगे उतना ही हम आध्यात्मिक होंगे। इस आत्मानंद को ही जगत में धर्म कहते हैं। जगत में दुख विरहित सुख, अशुभ विरहित शुभ पाने की संभावना कदापि नहीं है, क्योंकि जीवन का अर्थ ही है साम्य भाव की विच्युति। हमें चाहिए मुक्ति। जीवन सुख अथवा शुभ कुछ भी नहीं है। सृष्टि प्रवाह अनंत काल से चल रहा है, ना उसका आदि है ना अंत। वो एक अनंत सागर के ऊपर ही निरंतर गतिशील तरंग के समान है। इसमें कुछ ऐसे गहरे स्थल हैं जहां हम अभी नहीं पहुंचे हैं और कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहां साम्य भाव पुनः स्थापित हो चुका है, किंतु ऊपर की सतह पर तरंग सर्वदा ही उठती रहती है। वहां पर अनंत काल से साम्यावस्था को प्राप्त करने की चेष्टा चलती ही रहती है। जीवन और मृत्यु एक ही वस्तु के विभिन्न नाम मात्र हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही माया हैं। ये अवस्था स्पष्ट रूप से समझी नहीं जा सकती। एक समय जीवित रहने की चेष्टा होती है तो दूसरे ही क्षण विनाश या मृत्यु की। हमारी यथार्थ स्वरूप आत्मा इन दोनों से परे है। जब हम ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं तो ईश्वर और कुछ नहीं, वास्तव में आत्मा ही है, जिससे हमने अपने को अलग कर लिया है।

0: और जिसे हम अपने से अलग मानकर पूजते हैं, किंतु वास्तव में ये उपासना उसी की है जो चिरकाल से एकमात्र ईश्वर पदवाच्य हमारी अंतरात्मा है। उस साम्यावस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए पहले हमें रजस द्वारा तमस को और सत्व द्वारा रजस को जीतना होगा। सत्व का अभिप्राय उस प्रकार की स्थिर, धीर, प्रशांत अवस्था है जिसके धीरे धीरे बढ़ने पर अंत में अन्यान्य भाव अर्थात रजस और तमस सर्वथा लुप्त हो जाते हैं। स्वरूप का बोध करके द्वंद रहित होकर रहना ही आनंद अनुभूति का उपाय है। संकीर्णताओं, बंधनों से मुक्त होने पर ही स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त होती है। सत्य मार्ग के अवलंबन से, विवेक वैराग्य से, भक्ति प्रेम से ये अवस्था प्राप्त होती है। संसार को भगवान का खेल समझकर हर अवस्था में निर्विकार भाव से रहना ही आनंद अनुभूति का रहस्य है।
1: आनंद अनुभूति। अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर श्रीमती राखी कटारा के विचार। इसी के साथ कार्यक्रम चिंतन अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। ये समय है आज प्रसारित किए जाने वाले खास कार्यक्रमों की जानकारी आपको देने का, यानी समय है कार्यक्रम विवरण का।

इस सभा में सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। इस कार्यक्रम में आज विषय होगा वर्षा ऋतु में आंखों की देखभाल और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे। कार्यक्रम नमस्कार कोटा प्रसारित होगा सुबह 7:00। इसमें आपके लिए होगा प्रेरक विचार, साथ ही चर्चा होगी अपने कार्य पेंडिंग न रखें। आप जान पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में और आपको बताएंगे अल्लूरी सीताराम राजू जयंती और भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा के बारे में। बहनों का अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत प्रसारित होगा सुबह 9:30। इसमें चर्चा का विषय होगा रिश्तों का सही मूल्यांकन जरूरी है। इसके अलावा आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर भारती सक्सेना और जो विषय होगा जिस पर वो बात करेंगी वो है गर्भ निरोध के नवीन तरीके। फिल्म संगीत होगा सुबह 7:30। इसमें आज आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों के गाने और फिल्म संगीत एक बार पुनः आप सुन पाएंगे सुबह 9:10 पर। सुबह 10:00 से श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। शाम 5:00 युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज का संवाद होगा स्वयं की क्षमताओं को पहचाने। इसके अलावा हमारा देश के अंतर्गत आपको बताएंगे मेघालय के रूट ब्रिज के बारे में और नॉलेज कॉर्नर में आप जान पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अल्लूरी सीताराम राजू की जन्म जयंती, गुलजारी लाल नंदा की जन्म जयंती और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। इसके साथ ही आप सुनेंगे रोजगार सूचनाएं और गीत संगीत। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल शाम 7:00। इसमें चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इसके अलावा आप सुनेंगे आकाशवाणी गांव में। इसमें ग्राम पटोलिया तहसील केशोरायपाटन जिला बूंदी के किसानों एवं ग्रामवासियों से बातचीत पर आधारित क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आप सुनेंगे। रिकॉर्डेड कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आपके लिए प्रसारित करेंगे रात्रि 9:00। लोक संगीत आप सुन पाएंगे शाम 7:30, जबकि चित्रपट संगीत होगा रात्रि 8:00। रात्रि 10:00 से श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। समाचार प्रभात आप सुन पाएंगे सुबह 8:00 और समाचार संध्या

संध्या का समय रहेगा रात्रि 9:15 बजे। ये तो थी जानकारी आज प्रसारित किए जाने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: स्पर्धा जुलाई मासस्य सप्त दिनांके नॉटिंगहम इत्यत्र क्रीडिष्यते। ब्रिस्टल साउथहैम्प्टन इत्येते नगरे विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः अन्तिमयोः द्वयोः स्पर्धयोः आतिथ्यं करिष्यतः, यत् जुलाई मासस्य एकादश दिनांके समाप्यते। एतदनन्तरं भारत इंग्लैंड देशौ त्रिस्पर्धानाम् एकदिवसीयाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलां क्रीडिष्यतः इति वार्ताः।
1: FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 7 बज रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

हवाओं में खुशबू फिजाओं में गीत, हवाओं में खुशबू फिजाओं में गीत, नया दिन लाया है उम्मीदों की प्रीत। उगते सूरज की सुनहरी किरणों और चहचहाते पंछियों की मधुर आवाजों के साथ आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन आपके अपने मनपसंद दैनिक कार्यक्रम में, जिसका नाम है नमस्कार कोटा। एक और नई सुबह के साथ हैं आप और हम, तो बाहें फैलाकर स्वागत कीजिए इस नई सुबह का, और एक बड़ा सा थैंक यू कहिए इस यूनिवर्स को, क्योंकि हम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और स्वस्थ रहते हुए इस नई सुबह का आनंद जो ले रहे हैं। हर नई सुबह हमें ये सिखाती है कि बीती हुई बेकार की बातों को भुला दीजिए और जो काम की बातें हैं उनसे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए और अपने हर दिन की शुरुआत पूरे उत्साह, उमंग और विश्वास के साथ कीजिए। क्या आप जानते हैं कि सुबह सवेरे सब इतना एक्टिव क्यों होते हैं? भाई सुबह सुबह सब इतना एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि सुबह सुबह हमारा मस्तिष्क बहुत सक्रिय होता है। इसलिए कोई भी जरूरी काम हो, चाहे योग हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, पढ़ाई हो या फिर हो कोई और इम्पोर्टेंट काम, सब सुबह सुबह ही करने चाहिए। इससे इसके जो परिणाम होते हैं वो भी बेहतर होते हैं। इसलिए सुबह सुबह जब हम पढ़ाई करते हैं या युवा और बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से याद हो जाता है, और उसे हम दूसरे नजरिए से देखें कि यदि हम जल्दी उठकर अपने दैनिक दिनचर्या के कामों को निपटा लेते हैं तो हमारे सभी काम जल्दी से पूरे हो जाते हैं और हम समय से फ्री हो जाते हैं और अपनी अन्य गतिविधियों के लिए हम समय निकाल पाते हैं, है ना? सुपर्ब सैटरडे मॉर्निंग है, सुबह के 7:02 का समय है और अपने चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा अपनी रेडियो साथी अलका के साथ। और समय को देते हुए सम्मान, हम भी बढ़ेंगे आगे और साझा करेंगे आपके साथ आज का सुविचार। तो आज का विचार कहता है कि हर काम को खुश होकर प्रसन्नता से करो, क्योंकि इससे सफलता तो मिलती है साथ ही खुशी भी दुगनी हो जाती है। भाई बात तो बिल्कुल सही है, वैसे भी जब हमारा अपना काम है, हमें ही करना है, तो क्यों ना हम उसे खुश होकर करें, क्यों ना हम उसे प्रसन्नता के साथ करें। जब हम खुश होकर प्रसन्नता से और उत्साह से अपने काम को हम करेंगे तो उसके परिणाम भी जबरदस्त होंगे। एक बार करके देखिए, अच्छा लगता है। तो ये तो था हमारा आज का विचार, और अब कार्यक्रम में होगी गीत संगीत की बहार।

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और साझा करेंगे आपके साथ कुछ सूचनाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। कल यानी शुक्रवार को कोटा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बरसात नहीं हुई, इस कारण तापमान कुछ अधिक रहा और उमस होने के कारण गर्मी बनी रही। दिन भर लगातार मौसम में बरसात का इंतजार रहा, बादल छाए रहे, इस कारण से तेज धूप के तेवर कुछ नरम पड़े और तापमान में भी हल्की सी गिरावट रही। बादल छाए रहने के कारण बारिश की उम्मीद बनी रही लेकिन बारिश नहीं हुई। अब आपको बता दें कि शहर का अधिकतम तापमान रहा 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 24.6 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बादलों की आवाजाही के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी बनी रहेगी। हालांकि हवा में नमी के चलते उमस का जोर बना रहेगा। मानसूनी गतिविधियां धीरे धीरे अब सक्रिय हो रही हैं, विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग और उसके आसपास लगने वाले जिलों में अगले कुछ दिनों के लिए भारी और कहीं पर अति भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।

अगली सूचना आप तक पहुंचाते हैं। स्कूटी योजना की संशोधित अंतरिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। अब छात्राएं देख सकती हैं अपना नाम। जी हां, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की ओर से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी व देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2025-26 की संशोधित अंतरिम वरीयता सूची 30 जून को जारी कर दी गई है। छात्राएं विभागीय पोर्टल पर या महाविद्यालय जाकर अपना नाम देख सकती हैं। साप्ताहिक ट्रेन बीकानेर श्रीडी और अजमेर सोलापुर स्पेशल ट्रेनों का संचालन अब 19 जुलाई से 16 अगस्त के बीच होगा। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। रेलवे प्रशासन ने कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली 4 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 04715 बीकानेर साईनगर श्रीडी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब 18 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 04716 साईनगर श्रीडी बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 19 जुलाई से 16 अगस्त तक संचालित होगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 09627 अजमेर सोलापुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब 22 जुलाई से 12 अगस्त तक और गाड़ी संख्या 09628 सोलापुर अजमेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 23 जुलाई से 13 अगस्त तक संचालित होगी। इसी तरह जोधपुर चेन्नई समर स्पेशल का कोटा होकर संचालन होगा। जी हां, जोधपुर चेन्नई

के बीच और MGR चेन्नई सेंट्रल जोधपुर के मध्य साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह स्पेशल ट्रेन कोटा मंडल के सवाई माधोपुर, सोगरिया, बारा और छबड़ा स्टेशनों से होकर गुजर रही है। इस ट्रेन का संचालन 28 जुलाई तक किया जाएगा।

और अगली खबर आपको देते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा इसी माह अंतिम सप्ताह में होगी। जी हां, आरपीएससी की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 में लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। मुख्यालय से भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के डीजीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार लिखित में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित बोर्ड द्वारा जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर व अजमेर में रेंज स्तर पर की जाएगी। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे।

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा, सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो आज है जुलाई महीने का पहला शनिवार, तो आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सहकारिता की भावना को बढ़ावा देना है और लोगों के बीच आपसी सहयोग, समानता और सामूहिक विकास के प्रति जागरूकता लाना है। सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना और एक दूसरे की उन्नति में भागीदार बनना। कृषि, बैंकिंग, दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र, शिक्षा और लघु उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये संस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करती हैं। सहकारिता में छोटे छोटे किसानों, महिलाओं, युवाओं को आर्थिक रूप से और साथ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने का अवसर प्रदान किया जाता है। आज के इस युग में जब हर जगह गला काट प्रतियोगिताएं चल रही हैं, ऐसे में सहकारिता सामाजिक एकता, समावेशी विकास और सतत प्रगति का एक सशक्त माध्यम है। हमें सहकारिता की भावना को अपने जीवन में अपनाकर मिलकर कार्य करने चाहिए ताकि एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण हो सके। तभी इस दिवस को मनाने की सार्थकता साबित होगी।

कई बार आपने देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे काम पड़े रहते हैं, यानी लगातार उनके पास काम का बोझ रहता है और वो हौच-पौच रहते हैं, यानी कह सकते हैं कि लगातार काम नहीं करते और काम इकट्ठा होता जाता है, यानी काम उनका पेंडिंग होता जाता है। जब काम पेंडिंग हो जाता है तो हम खुद टेंशन में आ जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? काम पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर रोज का काम हर रोज निपटाना चाहिए। यदि हम जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो समय पर कार्य करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने कामों को टालते रहते हैं, काम चढ़ाते रहते हैं, उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ता जाता है और काम का बोझ बढ़ने से टेंशन होती है, तनाव होता है, चिंता होती है और समय की बर्बादी भी होती है, क्योंकि जब वो काम को करने

बैठते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कि कब कौन सा काम करें, कैसे करें। इसके विपरीत यदि हम अपने काम को समय पर पूरा कर लें, अनुशासित तरीके से पूरा करें, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास भी जागृत होगा और हम सफल भी होंगे। कार्य को पेंडिंग रखने की आदत से बहुत सारे अच्छे अवसर हमारे हाथों से निकल जाते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक काम को योजना बनाकर सही तरीके से और सही समय पर, निर्धारित समय पर पूरा करना चाहिए। छोटे छोटे कामों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे छोटे कामों को समय पर करेंगे तभी हम बड़े कामों को समय पर कर पाएंगे और तभी हम सफल भी हो पाएंगे, और यही होता है सफलता का आधार। समय का सदुपयोग करने वाला हर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन पाता है। अतः हमें कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए। समय पर अपने काम को पूरा करने की आदत ही सफलता, संतोष और बेहतर भविष्य हमारा बनाती है। इसलिए अब ये नियम बनाइए या अपने आप से वादा कीजिए कि अब आप कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखेंगे, बल्कि हर काम को समय पर ही पूरा करेंगे।

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। और आइए अब हम चर्चा करेंगे भारतीय प्रतिष्ठा के वाहक स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक प्रतिष्ठा के महान वाहक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनसे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, वेदांत और मानवता के संदेश को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित किया। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया, जिससे भारत का गौरव विश्व मंच पर स्थापित हुआ। उन्होंने युवाओं को एक नारा दिया, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो तब तक मत रुको। ये प्रेरणादायक संदेश, ये नारा युवाओं में आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति का संचार कर गया। उनका मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों को विश्व भर में सम्मान दिलाने का गौरव हासिल कर चुके हैं, यानी उन्होंने विश्व भर में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों का प्रचार और प्रसार किया और सम्मान दिलाया। उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें उनके आदर्शों का अनुसरण कर अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा और गौरव को सदैव ऊंचा बनाए रखना चाहिए। आज हम मना रहे हैं भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा की जन्म जयंती। जी हाँ, भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और प्रख्यात राजनेता थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। श्रमिकों के अधिकारों, उनके कल्याण के लिए उन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए थे। स्वतंत्र भारत के वे श्रम और रोजगार मंत्री तथा गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद वे 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सादगी, ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना सार्वजनिक जीवन बिताया। वे उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन देश सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनके योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। गुलजारी लाल नंदा का निधन 15 जनवरी 1998 को हुआ था। उनका जीवन आज भी सत्यनिष्ठा, सादगी और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। आज उनकी जन्म जयंती पर हम उन्हें याद करते हुए सादर नमन करते हैं।

और आज हम मना रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू की जन्म जयंती। जी हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए संघर्षरत थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के अन्याय का डटकर विरोध किया। उन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व करते हुए सशस्त्र आंदोलन चलाया और उनके आंदोलन का नाम था रंपा आंदोलन या रंपा विद्रोह। वे साहसी निडर देशभक्त नेता थे। अंग्रेज सरकार उनसे भयभीत रहती थी। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि की सेवा को समर्पित कर दिया। साथ

मई 1924 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें गोली मार दी थी। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गौरवपूर्ण अध्याय है। आज भी उन्हें आंध्र प्रदेश में श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनका जीवन हमें साहस, त्याग और देश प्रेम की प्रेरणा देता है। भारतवासी सदैव उनके बलिदान के ऋणी रहेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है और उनका नाम सदा याद रखा जाएगा। और श्रोताओं, बातें करते करते, जानकारियां साझा करते करते कार्यक्रम का समय बिल्कुल हो चुका है समाप्त। तो चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग प्राणायाम कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए और ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए। एक दूसरे से सहयोग कीजिए और हमेशा परमपिता का, उस परम शक्ति का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। चलते चलते आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीना ने और प्रस्तुति रही राजेश महावर की। ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया अलका ने। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार कोटा।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

हाजिर हैं हम लेकर के फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से कुछ तराने। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म अपना देश का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी का गीत है और आरडी बर्मन का संगीत।

फिल्म संगीत में पुरानी फिल्मों के तराने आप सुन रहे हैं, और इससे पहले कि आप सुने अगला गाना, हम आपको देंगे कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज सुबह 8:15 बजे आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। इस कार्यक्रम में विषय होगा वर्षा ऋतु में आंखों की देखभाल, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ होंगे डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे। श्रोताओं, विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है या आपकी कोई समस्या है तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2941142, कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो सुनना न भूलें आज सुबह 8:15 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आइए बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है उत्सव। आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की, गीत रचना वसंत देव की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, और आज आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों के कुछ गीत। आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म गाइड का ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मिलीजुली आवाजों में, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत एसडी बर्मन का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गाना फिल्म नीला आकाश से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीत रचना राजा मेहंदी अली खान की और संगीत मदन मोहन का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं, एक बार फिर आपको याद दिला दें, आज सुबह 8:15 बजे प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। विषय होगा वर्षा ऋतु में आंखों की देखभाल और हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे। श्रोताओं, विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है या किसी तरह का आपका कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन कर सकते हहैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 2941142 और कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो सुनना न भूलें आज सुबह 8:15 बजे से 9 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आइए बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है नया दौर। गीत को अपनी आवाजें दी हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम ने। गीत रचना साहिर की और संगीत ओपी नैयर का।

नया दौर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, सुबह 8:15 आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। विषय होगा वर्षा ऋतु में आंखों की देखभाल और हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8:00 को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को पूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में

0: आने से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान

0: पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रूपए के सौदे स्वीकृत, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी, लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर छाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100

0: और 103.6 मेगाहर्ट्ज, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा। फोन नंबर 9351412449।
2: अब लेसिक लेजर से पाएं चश्मे से आजादी। विश्व की सबसे आधुनिकतम अमेरिकन सिग्नेचर फेको मशीन द्वारा बिना इंजेक्शन, बिना टांके और बिना पट्टी बांधे मोतियाबिंद ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण।
1: आपके पर्दे की सभी बीमारियों की जांच एवं ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध। लेसिक लेजर सर्जरी, फेकिंग लेंस इम्प्लांटेशन, डिजिटल फंडस कैमरा से आंखों के पर्दों की जांच एवं एंजियोग्राफी, जापानी ग्रिल लेजर मशीन से मधुमेह रोगियों के पर्दे की सिकाई,
2: जटिल भेंगापन एवं कालापानी जांच और ऑपरेशन सुविधा।
1: सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा।
0: स्वागत है आप सभी का सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत में। श्रोताओं, हर सप्ताह इस कार्यक्रम में हम अलग अलग विषयों को लेकर आते हैं, तो इस बार का विषय है वर्षा ऋतु में आंखों की देखभाल। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे। विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है, किसी तरह का आपका कोई सवाल है, तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 2941142 और कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो अब से लेकर 9 बजे तक डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार
0: और बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में।
3: थैंक यू।
0: जैसा कि सभी जानते हैं कि आंखें हैं तो ये जहान खूबसूरत है, और आंखों में जरा सी कोई समस्या आ जाती है तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, हालांकि हमारे कोटा संभाग में भी बरसात नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश होगी। तो बरसात के ऋतु में या वर्षा ऋतु में आंखों की किस तरह की समस्याएं उसमें आती हैं और उनकी देखभाल हमें किस तरह से करनी चाहिए, इसी विषय को लेकर आज हम यहां पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि वर्षा ऋतु में किस तरह की समस्याएं आमतौर पर आंखों में देखने को मिलती हैं।
3: नमस्कार, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बरसात यानी कि मानसून का आगमन प्रकृति की सुंदरता के साथ, हरे भरे वातावरण के साथ, मोरों की सुरीली सुरीली आवाज के साथ, पक्षियों की सुरीली आवाज के साथ शुरू होता है, और वर्षा ऋतु में कई सारी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं, विशेषकर आंखों में, क्योंकि इस समय आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण वातावरण में बैक्टीरियल, फंगल और वायरल ग्रोथ यानी कि कीटाणुओं, विषाणुओं और फंगस के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी कारण आंखों में विशेष रूप से वर्षा ऋतु में आई फ्लू नामक बीमारी देखने को मिलती है, जिसे मेडिकल भाषा में कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है और आम भाषा में आंख आना यानी कि आई फ्लू कहा जाता है। और आंख आना ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसा लक्षण है जिसके बारे में प्राय हम सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि बचपन में जब आज से 10 साल पहले पूरी की पूरी फैमिली में आंख आ जाती थी, लाल हो जाती थी।
0: हाँ।
3: तो ये बड़ा कॉमन सिम्टम है, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि वर्षा ऋतु में होती है। और जब भी कभी कंजंक्टिवाइटिस यानी आंख आने जैसी समस्या होती है, तो उसके लिए विशेष रूप से ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, यानी कि 5 से 7 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है। और इसके लिए विशेष सावधान रखने की जरूरत होती है कि हम अपना टॉवल, अपना तौलिया, अपना तकिया अलग रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति को घर में, जिस व्यक्ति को कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू होता है, उस व्यक्ति के माध्यम से ये संक्रामक बीमारी परिवार के अन्य सदस्यों को भी फैल सकती है। इसलिए इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 5-7 दिन सावधानी रखें, अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं, हाथों को बार बार धोएं, आंखों को बार बार हाथ से टच नहीं करें, और अपना तौलिया, अपना टॉवल, अपना आई मेकअप का सामान अलग रखें।
0: जी, जी।
3: तो ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू यानी कि आंख आना। अब आंख आने में एक विशेष प्रकार का आई फ्लू होता है जिसको हम वायरल केराटोकंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो वायरल केराटोकंजंक्टिवाइटिस में आपका जो कॉर्निया होता है, जो आपकी पारदर्शी पुतली होती है, उस कॉर्निया में, पारदर्शी पुतली में छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं, जिनको हम पंक्टेट केराटाइटिस मेडिकल भाषा में कहते हैं। पंक्टेट केराटाइटिस यानी थोड़े थोड़े माइक्रो जख्म होना। तो ऐसी स्थिति में आंखों में चुभन होती है, कई व्यक्तियों में धुंधला दिखाई देना लगता है, आंख की विजन जो होती है ब्लरिंग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मेरी

0: चंबल चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं से गुजारिश है कि नेत्र विशेषज्ञ की मार्गदर्शन में ही उपचार लें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें और अपनी आंखों में मेडिकल स्टोर पर जाकर स्टेरॉयड ड्रॉप का उपयोग न करें, क्योंकि कई बार ये स्कारिंग परमानेंट भी जाती है। तो ये हुआ वायरल क्रिएटो कंजंक्टिवाइटिस के बारे में, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में वायरल आई फ्लू कहते हैं
1: जी।
0: और इसके साथ साथ में आंखों में बरसात के मौसम में फंगल अल्सर भी हो जाता है, जो विशेष रूप से हाड़ौती की ग्रामीण अंचल में किसानों जो कि फसलों के साथ काम करते हैं, फसल बोते हैं, तो उनको ज्यादा कॉमन होता है। इसे मेडिकल भाषा में इन्फेक्शियस केराटाइटिस यानी कि आंखों में अल्सर होना, आंखों में इन्फेक्शन होना कहते हैं। कई जगह हाड़ौती में कागज के टुकड़े से या फिर जीभ के माध्यम से आंख में कोई चीज फॉरन बॉडी चली जाती है तो निकालने का ट्रेंड अभी भी प्रचलित है। तो मैं चंबल चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं से गुजारिश करूंगा कि यदि आपकी आंख में कोई फॉरन बॉडी चली जाए, यानी कोई लोहे का टुकड़ा या कोई भी प्लांट का टुकड़ा चला जाए, पौधे का टुकड़ा, पार्टिकल चला जाए, धूल, तो उसको आंख को दो तीन बार ठंडे पानी से धो लें। यदि वो नहीं निकले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, अपने हिसाब से निकालने का प्रयास न करें, क्योंकि आंखें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। जब आप उसको कागज के टुकड़े से या किसी और चीज से निकालते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं
1: जी। आपने आंखों में अल्सर का जिक्र किया, तो इसके किस तरह के लक्षण सामने आते हैं?
0: आंखों में जब अल्सर होता है तो आंखों का जो कॉर्निया होता है, जिसको हम पारदर्शी पुतली कहते हैं, तो इस कॉर्निया की जो पावर होती है वो पावर लगभग 44 डायप्टर होती है। तो ये कॉर्निया आंख का 44 डायप्टर की पावर होती है, और पावर इसमें जब कॉर्निया में जब चोट लग जाती है या कोई इसकी जो 5 परतें होती है, तो इसमें जो बाहरी परत जिसको हम एपिथेलियम कहते हैं, वो जब डिस्टर्ब हो जाती है, अपने हिसाब से अपने स्थान से हट जाती है, तो आंखों में एक बैरियर हटने के कारण, ये एक बैरियर का काम करती है, तो उसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, वायरस यानी विषाणु या फंगस से हो सकता है, तो इसको हम मेडिकल भाषा में कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। तो ये समस्या बरसात में विशेष रूप से देखी जाती है, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में जहां किसान अपनी फसलें बोते हैं या जहां माइंस वर्कर माइंस में काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कि चोट लगने से कोई फॉरन बॉडी उनकी आंख में चली जाती है, तो इस स्थिति में वो कई बार आंख में चुभन पानी आता है, उस सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, और जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो मैं चंबल चैनल के माध्यम से ये सभी श्रोताओं से अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपकी आंख में कोई विजाती या फोन पार्टिकल चला जाए तो तुरंत उसको डॉक्टर को नजदीकी नेत्र विशेषज्ञ से दिखाएं, परामर्श लें, अपने हिसाब से उसका इलाज न करें, क्योंकि आंखों से वो फोन पार्टिकल निकालना बड़ा मुश्किल है।
1: कई बार सुनते हैं एलर्जी हो गई है आंखों में, क्या ये भी वर्षा ऋतु में ही खास तौर से होती है?
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वर्षा ऋतु में
1: डॉक्टर साहब आपको रोकते हुए कॉलर लेते हैं। हेलो
2: हेलो नमस्कार
1: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी राकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका?
2: सबसे पहले तो मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर जी, जैसे कि आप, जैसे भी मैं सुन रहा था कि अभी कोटा में बारिश नहीं, हमारे हिमाचल में मानसून दस्त दे चुका है, तो मैं इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज की डेट में जो आंखों में जो है आई फ्लू हो जाता है, तो उससे हमें कैसे बचे, क्योंकि ये तो बरसात के मौसम में जो होता है।
0: राकेश जी, पहले तो धन्यवाद कि आप शिमला हिमाचल प्रदेश से हमसे जुड़े हैं, और आपका सवाल बहुत अच्छा है कि वर्षा ऋतु में आई फ्लू से कैसे बचें। तो आई फ्लू से बचने के लिए, जैसा कि हम बार बार हाथ वॉश करते हैं, हैंड वॉशिंग, तो सबसे पहले अपने हाथों को वॉश करते रहें, मतलब कम से कम 2-3 बार 4 बार धोते रहें, और अपने हाथों से आंखों को न मसलें, क्योंकि कई बार वर्षा ऋतु में आई फ्लू जो कि ह्यूमिडिटी कारण कॉमन होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है, टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशन होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है, तो इसलिए आई फ्लू कॉमन होता है। यदि घर में किसी को आई फ्लू है तो उस व्यक्ति का तकिया, रुमाल, कॉस्मेटिक्स अलग रखें। और आई फ्लू राकेश जी ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि 5 से 7 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है, और इस दौरान एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का उपयोग नेत्र चिकित्सक के मार्गदर्शन में करें, और सावधानी विशेष रखनी कि आंखों को साफ ठंडे पानी से 2 बार धोएं, और गर्म पानी में रुई को उबाल कर उसको उससे आंखों को साफ करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आंखें चिपक जाती हैं, डिस्चार्ज काफी आता है तो आंखें खुलती नहीं है, और जब सुबह उठते हैं तो काफी कीचड़ और डिस्चार्ज निकलता है। तो रात को एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट डाल के सोएं आप, जिससे कि आपकी

0: जो आंख है वो चिपके नहीं, और रुई को गर्म पानी में उबाल कर उससे साफ करें आंखों की पलकों को, जिससे कि आंखें खुल सकें।
1: जी जी जी, धन्यवाद राकेश जी, कॉल किया आपने। जी डॉक्टर साहब, आप एलर्जी का जिक्र कर रहे थे, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे एलर्जी पर जी।
0: हाँ, आंखों में एलर्जी एक बरसात में बहुत कॉमन समस्या है, और जब एलर्जी होती है तो आंखों को बार बार मसला जाता है। तो मैं चंबल चैनल के माध्यम से एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि जो बच्चे या जो व्यक्ति आंखों को बार बार मसलते हैं, उनकी आंखों का जो कॉर्निया होता है, जो पारदर्शी पुतली होती है, उसका शेप जो होता है वो कॉर्निकल शेप हो जाता है, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, कॉर्निकल शेप है। तो इसी स्थिति में एक बीमारी हो जाती है जिसको हम मेडिकल भाषा में केराटोकोनस कहते हैं। तो मैं
1: हैं हमारे बीच,
0: हाँ बिल्कुल,
1: हेलो
2: हेलो जी मैडम, नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं
2: जी? मैं अर्जुन जाट बोल रहा हूँ
1: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप
2: जी? मैं बूंदी से बोल रहा हूँ। मैंने तो इसलिए फोन किया है कि रेडियो पे आवाज गूंज रही है, डबल डबल आवाज जा रही है मैडम।
1: आपके रेडियो सेट में कुछ खराबी हो सकती है, चलिए कार्यक्रम सुनते रहिए, धन्यवाद कॉल करने के लिए जी। डॉक्टर साहब, एलर्जी की बात हम कर रहे थे।
0: हाँ, तो एलर्जी जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बरसात के अंदर, और बरसात में जब आप एलर्जी से पीड़ित होते हैं तो आंखों को बार बार मसलते हैं, आंखों में लाल होना और आंखों में डिस्चार्ज आना आदि समस्याएं हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आंखों को बार बार न मसलें, क्योंकि रिपीटेड आई रबिंग कैन लीड टू केराटोकोनस। तो मैं हाड़ौती के सभी श्रोताओं से विशेष गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी आंखों को न मसलें, बार बार आंखें मसलने से केराटोकोनस नामक एक गंभीर बीमारी हो सकती है, जिससे कि आंखों में चश्मे का तिरछा नंबर यानी कि सिलिंड्रिकल नंबर बढ़ सकता है, और साथ ही साथ धुंधला दिखाई दे सकता है, और कई बच्चे विशेषकर उल्टा सोते हैं। तो मैं इस वार्ता के दौरान एक विशेष हिदायत देना चाहता हूँ कि कभी भी आप उल्टा नहीं सोएं, यानी प्रोन पोजीशन में नहीं सोएं। जब आप उल्टा सोते हैं तो तकिया होता है वो आंखों को प्रेस करता है, कॉर्निया को प्रेस करता है, और जिसके कारण आंखों में की कॉर्निया पर एक जो बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर होता है उसमें जोर पड़ता है, वो केराटोकोनस को जन्म दे सकता है
1: जी।
0: तो उल्टा नहीं सोएं।
1: बिल्कुल, ये तो बहुत ही जरूरी बात है, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए। एक कॉलर है, हेलो
3: मैडम। नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार,
3: मैं चेकावटी से बोल रहा हूँ, संतोष बोल रहा हूँ
1: जी। संतोष जी,
3: मैडम मैं डॉक्टर जी से इसके संदर्भ में बता रहे थे कि कॉर्निया पे एक परत जम जाती है, वो धुंधला दिखने लग जाता है
1: जी।
0: हाँ जी।
3: अब तो सर ऐसा है कि जैसे मैं केराटोकोनस का पेशेंट हूँ।
0: अच्छा।
3: और मैंने ये डार्क सर्जरी करा लिया है। इसमें अभी जैसे विजन में बड़ा ही डाउन जा रहा है, जैसे मतलब पावर लगाने के बाद भी।
0: हाँ जी, हाँ जी।
3: तो एक कॉर्निया पे जो जम जाती है उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, कैसे क्या?
0: ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं बता रहा था कि कॉर्निया हमारे आंख का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। आंख की टोटल पावर लगभग 60 डायप्टर होती है, जिसमें से कॉर्निया 44 डायप्टर पावर को कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें क्या होता है कि जब आप आंखों को बार बार मसलते हैं तो आंख का जो कॉर्निया के जो कोलेजन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, और उसका शेप होता है वो कोन शेप हो जाता है, जैसे हम आइसक्रीम का कोन में आइसक्रीम खाते हैं तो कोन शेप हो जाता है, जिसको हम केराटोकोनस कहते हैं या कॉर्निकल कॉर्निया कहते हैं। तो आपकी डार्क सर्जरी हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। तो आप चश्मे का नंबर जो आपको दिया है उसको लगाएं, और पीरियोडिकली हर 3 to 6 मंथ्स में चेकअप कराते रहें, ड्रॉप डालते रहें, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डालते रहें, और आंखों को मसलन से बचें, आंखों को बिल्कुल भी रब नहीं करें। यदि आप उल्टा सोते हैं तो उल्टा सोना बंद कर दें आज से ही, और साथ ही साथ आंखों में यदि एलर्जी है आपकी आंखों में तो कुछ ड्रॉप्स के माध्यम से एलर्जी को कंट्रोल करें। और कई बार डार्क सर्जरी के बाद में विजन रिकवरी में कुछ टाइम लग सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप नेत्र विशेषज्ञ के परामर्श से चश्मे का नंबर लगाकर अपना काम चलाएं, और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का उपयोग नेत्र चिकित्सक के परामर्श से करते रहें।
3: सर मुझे 18 साल हो गए।
0: अच्छा।
3: डॉक्टर जी कहे 18 साल हो गए। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये रहता है कि कोई और कोई लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्या, जिससे कि मेरे ये कॉर्निया मतलब मेरा पावर थोड़ा कम, मुझे मतलब रिलीफ मिल जाए।
0: बिल्कुल,
3: मेरा जो थिकनेस जैसे कॉर्निया का थिकनेस करीबन 4.5 करीबन का आ रहा था।
0: अच्छा अच्छा, तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेटेस्ट सर्जरी के अंदर टोरिक फेकिक लेंस आजकल उपलब्ध हैं, और टोरिक फेकिक लेंस के माध्यम से टोरिक इम्प्लांटेबल कॉलेमर लेंस के माध्यम से आपकी आंख की रोशनी में सुधार हो सकता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लेकर, और जो लेटेस्ट सर्जरी प्रोसीजर है जिसमें टोरिक ICL या टोरिक इम्प्लांटेबल फेकिक लेंस के माध्यम से अपनी आंखों की रोशनी को

0: बेहतर करने में आपको आप अपनी उनकी सहायता ले सकते हैं।
1: सर मुझे बताया गया था कि जैसे ये कभी मोतियाबिंद बनता है तो उसके बाद ही आपका ये छेड़ेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप बताइएगा,
0: हाँ
1: पहले ये टॉरिक लेंस का पहले भी यूज कर सकते हैं या?
0: हाँ बिल्कुल, आप अगर आपके चश्मे का नंबर ज्यादा है, तिरछा नंबर ज्यादा है, तो टॉरिक फेकिक लेंस का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको विस्तार से जांच करानी होगी। और वो चश्मे का नंबर जैसे किसी का मान लो -10 है, -5 है, -8 सिलेंडर है, तो उस स्थिति में तिरछा नंबर को हटाने के लिए ये टॉरिक फेकिक लेंस का उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए आपको विस्तार से जांच करानी होगी और जांच करा कर ही परामर्श देना उचित होगा।
1: जी अभी मोतियाबिंद का वेट नहीं करना चाहिए।
0: हाँ मोतियाबिंद तो आप अगर मान लो आपका चश्मे का नंबर ज्यादा है तो आप जल्दी भी करा सकते हैं, उसके लिए आप चिकित्सक को दिखा लें तो वो सारे ऑप्शंस डिस्कस हो जाएंगे, सारे ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी और आप दिखाकर और अपना परामर्श ले सकते हैं।
2: जी संतोष जी,
1: थैंक यू,
0: धन्यवाद,
2: धन्यवाद कॉल किया आपने,
1: धन्यवाद मैडम,
0: धन्यवाद।
2: और यहाँ पर बारी है एक अंतराल की और उसके बाद हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे।
3: नजर धुंधली हो या नंबर हाई, चश्मा हटाना हो या मोतियाबिंद, सुवी आई हॉस्पिटल पर आपको मिलेगा आंखों की समस्या का हर इलाज।
4: अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आए ट्रेन डॉक्टर्स आप कोटा में एडवांस मशीन्स के साथ आंखों की हर समस्या की जांच और उपचार। लेसिक लेजर से पाए चश्मे से आजादी और फेकिक लेंस प्रत्यारोपण से मोटे चश्मे से छुटकारा।
3: विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा कैटरेक्ट सर्जरी, रेटिना केयर और कॉर्निया उपचार।
4: सुवी आई हॉस्पिटल एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
4: फोन नंबर 9351412449।
2: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत, आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। और इस कार्यक्रम में आज विषय है वर्षा ऋतु में आंखों की देखभाल, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नेत्र सर्जन डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे। और श्रोताओं आपको बता दें वो लेखक भी हैं और साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो अब कोई सवाल है आपका विषय से संबंधित तो अब से लेकर 9 बजे तक आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो डॉक्टर साहब अंतराल पर जाने से पहले एलर्जी के बारे में हमारी बात हुई, आजकल मौसम ऐसा है कि बरसात अभी हुई नहीं है, उमस बहुत ज्यादा है, ऐसे में भी आंखों में कुछ समस्याएं आती हैं, उसके बारे में बताइए।
0: जब वातावरण के अंदर ह्यूमिडिटी यानी कि उमस अधिक होती है तो इसी स्थिति में ड्राइनेस की समस्या बढ़ जाती है, और ड्राइनेस की समस्या के समाधान के लिए हमें 20-20-20 रूल का पालन करना है और साथ ही साथ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का उपयोग करना है और दिन भर में 8-10 ग्लास पानी पीना है। तो कई आजकल स्मार्टफोन और कंप्यूटर टेबलेट्स एक प्रोफेशनल लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, तो मैं चंबल चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं से अपील करना चाहता हूं कि आज स्मार्टफोन का उपयोग घर घर में हो रहा है, तो जब भी आप स्मार्टफोन का यूज करें तो 20-20-20 रूल का पालन करें। 20-20-20 रूल का मतलब होता है कि 20 मिनट फोन का यूज करने के बाद में 20 सेकंड का ब्रेक लें, 20 फीट दूर देखें, और जो आपका फोन है या कंप्यूटर लैपटॉप है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग आंखों के लेवल पर नहीं होके और लगभग 20 सेंटीमीटर नीचे होने चाहिए, ताकि वो आंखें आपकी ज्यादा खुली नहीं रहें। जब आपकी आंखें ज्यादा खुली होती है तो ड्राइनेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और इसके साथ साथ ही जब आप रात को सोते हैं तो सोते समय एसी का एक्सपोजर या पंखे का एक्सपोजर सीधा आपकी आंखों में नहीं आना चाहिए। जब आप ऑफिस में बैठते हैं तो एसी का जो ब्लो एयर का आता है वो सीधा आंखों पर नहीं आए, पीछे से आए या साइड से आए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कई बार जब आप सोते हैं रात को तो आपकी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं होती है, थोड़ा सा खुली होती है, तो ऐसी स्थिति में ड्राइनेस हो सकती है। और जो व्यक्ति आजकल फास्ट फूड का सेवन अधिक कर रहे हैं, फलों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या सब्जियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक विशेष मैं हिदायत देना चाहता हूं कि फास्ट फूड के साथ साथ में आप फास्ट फूड का सेवन कम से कम करें और सब्जियों का फलों का उपयोग करें।
2: कॉलर है, ड्रॉप हो गया है कॉल। जी डॉक्टर साहब,
0: तो सब्जियों का फास्ट फूड फलों का उपयोग अधिक करें, फास्ट फूड का उपयोग कम करें।
2: हेलो
5: हेलो
2: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
5: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
2: जी योगेश जी सवाल पूछिए अपना।
5: हम ये जानना चाहते हैं, अभी गांव देहात में हम ज्यादातर देखते हैं कि जो बारिश का पानी होता है उसमें लोग नहाते भी हैं,
2: जी
5: तो क्या ये सेफ होता है आंखों के हिसाब से?
0: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा योगेश जी। सबसे

0: पहले धन्यवाद, आपने छत्तीसगढ़ से ये सवाल पूछा है। तो बारिश के पानी में जब पहला पानी आता है बारिश का, तो कई बार उसमें आसपास गंदगी बह के आती है, तो हम प्रयास करना चाहिए कि पहला बारिश का जो पानी आता है झरने से, तो उसमें मतलब थोड़ा सा प्रयास करें बच्चें उसमें नहीं नहाएं, क्योंकि जो आसपास की गंदगी होती है पूरी, जो पूरा वो पहली बारिश में फर्स्ट बारिश में आती है, फिर धीरे धीरे जब वो एक बार गंदगी धुल जाती है तो उसके बाद में फिर इतना मतलब वो डेंजरस नहीं होता, इतना मतलब हानिकारक नहीं होता। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सावधानी रखें, कई बार लोग बारिश के पानी में नहाते समय आँखों में जैसे कि तेज पानी की धार जाने से आँखों के कॉर्निया में एब्रेजन हो सकता है या आँखों में एलर्जी हो सकती है। किसी किसी को कई बार आँखों में और शरीर के अन्य अंगों पर चोट भी लग सकती है, कई बार फिसलन होती है वहाँ पे बारिश के पानी में। तो सावधानी पूर्वक नहाएं। हर साल देश भर से कई सारे लोगों की घटनाएँ आती है बहने की, तो मानसून एक ऐसा मौसम है जहाँ लोगों का उत्साह प्रकृति के साथ साथ चलता है। प्रकृति की हरे भरे वातावरण में हर आदमी उत्साहित होता है और वो झरनों में नहाने के लिए लालायित हो जाता है। तो सावधानी रखें, सुरक्षा रखें, जिससे कि कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस नहीं हो और अपनी आंखों की सुरक्षा भी रखें और पहली बारिश में जो फर्स्ट बारिश आती है उसमें झरने से नहाने से बचें।
1: जी योगेश जी, आपका ये समस्या का समाधान हुआ।
2: जी धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। एक और कॉमन समस्या है, जैसे जो लोग माइंस में काम करते हैं तो वहाँ ब्लास्ट होते हैं, छोटे छोटे कण वहाँ पर से निकलते हैं, तो आँखों को ये किस तरह से नुकसान पहुँचा सकते हैं?
0: हड़ौती का जो एरिया है जिसमें आसपास
1: कॉलर है। हेलो हेलो जी डॉक्टर साहब।
0: हड़ौती का जो एरिया है उसमें माइंस काफ़ी सारी हैं और माइंस के वर्कर्स काफ़ी सारे आते रहते हैं हमारे पास दिखाने के लिए। तो मैंने एक चीज़ देखी पिछले 20 वर्षों में कि माइंस में दो तरह की इंजरी होती है। एक तो वो इंजरी होती है जब आप काम करते हैं और कई बार ब्लास्ट करते समय पार्टिकल्स, जो स्टोन के पार्टिकल्स लग जाते हैं। कुछ लोगों में ऐसी इंजरी भी हमने देखी जिसमें वो जो केमिकल यूज करते हैं, जो कैल्शियम कार्बाइड और अन्य मिश्रण से बना होता है, जो उस केमिकल को यूज करते, तो उस केमिकल के प्रीमेच्योर ब्लास्ट से आंखों में इंजरी आती है, तो जो कि एल्कलाइन इंजरी होती है। तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड और अन्य प्रकार के पदार्थ होते हैं, तो वो जब पानी के संपर्क में आते हैं तो ब्लास्ट होता है, वो तेज ब्लास्ट होता है, तो वो जो माइंस वर्कर्स होते हैं उनमें हो जाता है।
1: एक कॉलर है। हेलो हेलो जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: सवाल पूछिए। हाँ जी
3: रामपाला जिला भारत।
1: जी जी
3: हाँ डॉक्टर साहब, मेरी एक सलाह मांग रहा तारों में।
1: जी
3: मुंह में पानी पर गेट ठंडे पानी से छींटे मारना आँख में फायदा बंद है या नुकसान रहेगा?
0: प्रहलाद जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से छींटे डालने की प्रथा हमारे भारत में कई वर्षों से चली आ रही है। आप छींटे एक दो बार मॉर्निंग में मार सकते हैं, कोई उसमें नुकसान नहीं, लेकिन जोर जोर से बहुत तेज छींटे नहीं मारें। कई बार क्या होता है कि बहुत तेजी से छींटे मारने से आँखों में इंजरी हो सकती है, कॉर्निया में इंजरी हो सकती है, और यदि आपकी आँख में कोई पार्टिकल चला जाए और छींटे मारने से नहीं निकले तो उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको डॉक्टर को दिखाना है। बाकी आप मुंह में पानी भर के छींटे मारने का जो आपने सवाल पूछा है वो आप जारी रख सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ।
3: एक और प्रश्न
1: जी,
3: अपने जो बोलते हैं इसमें त्राटक विधि, एक काला गोला बना के उसी तरफ झांकना, इसकी थोड़ा बताओ आप।
0: हाँ त्राटक विधि और मैं कई बार लोग काला गोला बना के देखते हैं या कई बार कोई मोमबत्ती की लो की तरफ देखते हैं, ये सब प्राचीन भारत की विधियां हैं जो कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं। क्योंकि जब भी आप कोई किसी तरफ देखते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, यानी कि एकाग्रता बढ़ती है। ये सब प्राचीन भारत की विधियां हैं जिसके अपने फायदे हैं, लेकिन इनको प्रॉपर विधि से किया जाना चाहिए, किसी मार्गदर्शक या मेंटर के मार्गदर्शन में किया जाए तो और अच्छा माना जाता है। और जब भी आप त्राटक वाला करते हैं तो उसके बाद फिर पामिंग करके, यानी कि आंखों को बंद करके पामिंग करके आंखों को विश्राम देना न भूलें, और साथ ही साथ आंखों को जो एक्सरसाइज होती है जिसमें आंखों की क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, वो एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज आंखों को स्वस्थ रखने के लिए बनाई गई हैं, जिसका उपयोग आप विधिवत तरीके से किसी मार्गदर्शक के निर्देश में कर सकते हैं। प्रहलाद जी
1: प्रहलाद जी धन्यवाद, आपने कॉल किया।

0: जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि माइंस में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उससे आंखों में
1: तो माइंस में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उससे आंखों में कई बार बहुत तेज चोट लगती है, कई बार आंखों के नुकसान परमानेंट हो जाता है। तो मैं चंबल चैनल के माध्यम से सभी माइंस वर्कर्स से अपील करना चाहूंगा, और विशेषकर जो लोग वहां पे सुपरवाइजर के रूप में काम करते हैं माइंस में, तो वो प्रोटेक्टिव ग्लास का उपयोग करें जिससे कि चोट इस तरह से चोटों को रोका जा सके।
0: हेलो
2: डॉक्टर
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
1: हाँ नमस्कार
0: जी।
2: मेरी उम्र 65 बरस है
0: जी।
2: मैंने दोनों आँख में लेंस लगा लिया हूँ, फिर भी आँख लोचता है, कभी पपनी उपनी सब फूल जाता है।
1: अच्छा,
2: इसका इलाज बताया जाए।
1: अच्छा, तो आपने दोनों आँखों में लेंस लगवा लिया है और आँखों में चुभन होती है, खुजली होती है और आसपास पपड़ी जम जाती है, ये सवाल है आपका ना पलकों पे? तो इसको डॉक्टर साहब, इसको मेडिकल भाषा में स्क्वेमस ब्लेफेराइटिस कहा जाता है, जिसमें आँखों के पलकों पर पपड़ी जम जाती है। तो उसके लिए आप जो है वो नेत्र चिकित्सक के मार्गदर्शन में जो एक एंटीबायोटिक आई क्रीम का उपयोग करें, और धीरे धीरे एंटीबायोटिक आई क्रीम के उपयोग के माध्यम से आपको पपड़ी जमने में रिलीफ मिलेगा, और साथ ही साथ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का उपयोग लगातार करते रहें। आँख को बार बार न मसलें, और आँख को आप चाहें तो ठंडे पानी से धो सकते हैं और गर्म पानी में रुई डालकर उससे पोंछ सकते हैं। तो ये समस्या पपड़ी जमने वाली, जिसको हम ब्लेफेराइटिस कहते हैं, ये सामान्यतः सर्दी के मौसम में अधिक कॉमन होती है, और आप धीरे धीरे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के उपयोग से ये समस्या में आपको रिलीफ मिल सकता है।
2: इतना सुंदर सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, भगवान आप लोगों को निरोग रखे।
0: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। बात हो गई माइंस में काम करने वालों की, किसानों की, अब स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं, क्योंकि कोटा में बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाई का माहौल है, उन्हें काफी देर तक पढ़ाई करनी होती है, उन्हें किस तरह का ध्यान रखना चाहिए?
1: कोटा शिक्षा की काशी कहा जाता है, कोटा शिक्षा नगरी कहा जाता है, और इसी वजह से प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी नीट और IIT में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोटा आते हैं। और जैसा कि आपने कहा है, आंखें हैं तो जहान है, तो मैं इस चंबल चैनल के माध्यम से सभी कोचिंग विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम 3 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज है कि 20-20-20 रूल का पालन करें, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, और खान पान का विशेष ध्यान रखें, फास्ट फूड से बचें, हरी सब्जी और फलों का उपयोग करें, और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे अखरोट, बादाम और तिल्ली आदि भोज्य पदार्थों का सेवन करें, जो कि आंखों के लिए ड्राइनेस को रोकने के लिए काफी मददगार होते हैं, और इसके साथ साथ 7 घंटे की नींद लें।
0: हेलो
3: मैम, आईज वाले के लिए बात करना था।
0: जी डॉक्टर साहब सामने बैठे, सवाल पूछिए, पहले नाम बताइए अपना।
3: गजेंद्र अग्रवाल कोटा से बोल रहा हूँ।
0: जी गजेंद्र जी, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
3: मैडम मेरा एक सवाल ये था कि आजकल ये अपन स्विमिंग पूल में नहाने का है
0: जी,
3: स्विमिंग पूल में क्लोरीन वगैरह बहुत रहता है
0: जी जी,
3: तो उससे आंखों का क्या डैमेज ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि ज्यादातर देखा है केसेज में कि नहाने के बाद में आंखों में जलन लगती है, ऐसा कुछ होता है।
1: गजेंद्र जी नमस्कार, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि स्विमिंग पूल में क्लोरीन का लेवल कई बार आवश्यकता से अधिक होता है, जिससे कि आंखों में जलन, आंखें लाल होना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसके लिए कुछ लोगों को स्विमिंग पूल में जब पहली बार वो प्रवेश करते हैं तो आंखों में लाल होना, आंखों में एलर्जी होना जैसे लक्षण हो सकते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है। तो आप सबसे पहले इसके लिए ध्यान रखें कि चश्मा एक विशेष प्रकार का आता है, जिसको हम लगाकर स्विमिंग पूल में प्रवेश करते हैं, तो उस चश्मे का उपयोग करें, और जब स्विमिंग पूल में आप नहाने जा रहे हैं तो पहले दिन आप बहुत लंबा समय तक व्यतीत नहीं करें, कि कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत लंबे समय तक उस पानी में रहते हैं तो आंखों में लाल होना, चुभन होना जैसी समस्या हो सकती है, और साथ ही साथ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का उपयोग करें। किसी किसी व्यक्ति में अपवाद स्वरूप आंखों में एलर्जी हो सकती, बहुत सीवियर हो सकती, तो ऐसे व्यक्ति स्विमिंग पूल में जाने से बचें। तो नॉर्मली अधिकांश व्यक्तियों में स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस जो होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। तो धीरे धीरे आप अपना समय बढ़ाएं, और साथ ही साथ प्रोटेक्टिव गॉगल्स का, स्विमिंग पूल जो गॉगल्स होते हैं उसका उपयोग करें। थैंक यू
0: जी, धन्यवाद गजेंद्र जी, आपने कॉल किया जी। डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स के बारे में आपने बता ही दिया। कई बार कॉमन

0: समस्या सामने आती है कि फुंसी हो गई आंख में, चाहे पलक पे हो या आंख के अंदर, ये क्या है, क्यों होती है फुंसी?
1: इसको मेडिकल भाषा में स्टाई कहते हैं, वो कई बार ये फुंसी अंदर की तरफ हो जाती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में हॉडियोलम इंटरनम यानी कि केलेजोन कहते हैं। तो ये फुंसी सामान्यतः बरसात की ऋतु में हो सकती है, जब वातावरण में आर्द्रता ह्यूमिडिटी अधिक होती है। कई बार वातावरण में खुजली होने की वजह से बार बार पलकों पर हम खुजाते हैं, उसकी वजह से भी फुंसी हो सकती है। कुछ केसेज में डायबिटीज वाले केसेज में फुंसी हो सकती है, जो डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति है, मधुमेह रोग से ग्रसित है, को फुंसी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें और फुंसी के लिए इलाज करवाएं अपना।
0: हेलो
2: हेलो, हाँ जी नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: को भी नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: टीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ।
0: जी नमस्कार अंसारी जी, सवाल पूछिए अपना।
2: हाँ जी, सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, जैसे ना ऋतु के मौसम के बारे में बताया है, जैसे ना बारिश

0: बार वातावरण में खुजली होने की वजह से बार बार पलकों पर हम खुजाते हैं, उसकी वजह से भी फुंसी हो सकती है। कुछ केसेज में डायबिटीज वाले केसेज में फुंसी हो सकती है, जो डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति हैं, मधुमेह रोग से ग्रसित हैं, उनको फुंसी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें और फुंसी के लिए इलाज करवाएं अपना।
1: हेलो
2: हेलो, हाँ जी नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: टीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ।
1: जी
0: नमस्कार
1: अंसारी जी, सवाल पूछिए अपना।
2: हाँ जी, सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, जैसे कि ना ऋतु के मौसम के बारे में बताया है, जैसे कि ना बारिश में हम जाते है, या बारिश हो जाती है या ऐनक लगी हो, अगर उससे एलर्जी हो जाती है आंखों में बारिश के कारण, डॉक्टर बोल देते हैं इन्फेक्शन हो गई
1: जी।
2: अगर जो मेडिसिन बाहर देते हैं, जैसे हमारे पंजाब में कई दवाई देते हैं फ्री होती है, जहाँ राणा साहब गुरुद्वारा में भी है लुधियाना झुगरी रोड में जीएनई कॉलेज के पास देते हैं 200 रुपए की।
1: जी सवाल क्या है?
2: दवाइयाँ देते हैं भी, उसको डॉक्टर उससे नुकसान भी हो सकता है और डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ही करवाना चाहिए।
0: तो जी सत श्री अकाल जी, बहुत चंगा सवाल पूछा जी आपने, बहुत ही चंगा सवाल है जी आपका। तो तुसी ये दसना था जी कि जब भी आपको कोई समस्या हो, आंखों में खारिश हो और या फिर कोई भी चुभन हो, तो तुसी क्वालिफाइड डॉक्टर नाल ही उपाय इलाज करवाना चंगा रहता है जी। और उसमें ये रहता है जी कि जब भी कभी दवाई लें तो हमेशा दवाई एक ब्रांडेड कंपनी के लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो जेनेरिक दवाई में पता नहीं चलता कि क्या सॉल्ट है, कितना सॉल्ट सही है। तो ये एक अलग डिस्कशन है, लंबा विषय है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। पर लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि कई बार जो अच्छी दवाई कंपनी दवाई है वो भी सस्ती रेट में मिल जाती है, तो उनका उपयोग क्वालिफाइड नेत्र चिकित्सक के परामर्श से लें जी।
1: जी शुक्रिया आपने कॉल किया।
0: चंगा जी।
1: जी
0: सत श्री अकाल।
1: तो डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स की बात हुई, उमस और फुंसी की भी बात हुई, इसके अलावा जैसे रेगुलर तौर पे क्या किसी तरह की ड्रॉप आंखों में डाली जा सकती है जिससे कि अपनी आंखें सामान्य बनी रहें?
0: ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि रेगुलर मतलब नियमित रूप से आंखों में हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डाल सकते हैं, क्योंकि लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जो होती है वो आंखों की कॉर्निया को, जो कॉर्निया होता है आंखों की पारदर्शी पुतली होती है जिसमें एक टियर फिल्म होती है, उस टियर फिल्म को नमी बनाए रखने में बहुत ही सहायक होता है। तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का उपयोग नियमित रूप से कर सकते हैं, खासकर आज हम जबकि डिजिटल एरा में रह रहे हैं। ये एरा एक डिजिटल एरा है जिसमें हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, हर चीज का मतलब हम लोग स्मार्टफोन पर डिपेंडेंट हैं। लगभग 8 से 10 घंटे तक स्मार्टफोन का उपयोग हर घर में किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का उपयोग अति आवश्यक है और आप 3-4 बार डाल सकते हैं
1: दिन में।
0: और हाँ, और इसके साथ साथ आप विशेष रूप से ड्राई आई, जो कि स्मार्टफोन इंड्यूस्ड ड्राई आई से बचने के लिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फूड का उपयोग करें जिसमें से अखरोट और तिल्ली और ये पदार्थ होते हैं, जो कि फास्ट फूड का उपयोग न करें, फलों का उपयोग करें, मौसमी फलों का, हरी सब्जियों का उपयोग करें, और साथ ही साथ भोज्य पदार्थों में आटे में पॉजिटिव मिलेट का उपयोग करें, क्योंकि कई बार जो हमारा शुगर है, शुगर इज मोर वेरी डेंजरस, शुगर जो होते हैं शुगर सफेद चीनी कोकेन से भी 8 गुना अधिक एडिक्टिंग है। तो मैं चंबल चैनल के सभी श्रोताओं से अपील करना चाहूंगा कि शुगर का उपयोग यानी कि सफेद चीनी का उपयोग, नमक का अधिक उपयोग आज से ही कम कर दें
1: जी।
0: मैं अपने जीवन में भी नमक का उपयोग कम से कम करता हूं और शुगर का उपयोग भी नहीं करता हूं, क्योंकि शुगर ऐसी चीज है जो कि बहुत ही टॉक्सिक है, और शुगर जब ब्लड शुगर बढ़ती है तो डायबिटीज हो जाती है, शुगर जब ब्रेन में चली जाती है, ब्रेन में डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं, जिसको टाइप 3 डायबिटीज कहा जाता है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के बारे में सभी लोग जानते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन एक विशेष समस्या होगी जिसको हम बोलते हैं टाइप 3 डायबिटीज। तो टाइप 3 डायबिटीज का मतलब होता है कि अल्जाइमर्स डिजीज, शुगर जब जोड़ों के अंदर विशेष अपना दुष्प्रभाव पैदा करती है, तो उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इस पे काफी रिसर्च चल रहा है।
1: जो आप टाइप 3 का जिक्र कर रहे हैं ये वही जैसे अल्जाइमर्स रोग होता है।
0: अल्जाइमर्स रोग जिसको स्मृति लॉस या स्मृति विभ्रंश बोलते हैं, तो ये अल्जाइमर्स डिजीज टाइप 3 डायबिटीज इसको कहा गया है। तो इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने फूड्स में, अपने अपने फूड की डिश में सफेद चीनी का उपयोग यानी कि जो चीनी का उपयोग कम से कम करें। यदि आप चाय पीते हैं तो चाय में चीनी कम से कम रखें, और जो आप जो भी पदार्थ खाते हैं वो चीनी उसमें कम से कम होनी चाहिए। मतलब जो यदि आप स्वीट खाने की आपको आदत है तो धीरे धीरे उस आदत को भी कम करें
1: जी। डॉक्टर साहब

0: अक्सर देखने में आता है बहुत छोटे बच्चे, यानी 2.5, 3, 4 साल के बच्चे चश्मा पहनकर घूमते हैं। तो इतनी कम उम्र में आजकल चश्मे बच्चों में लगने लगे हैं, इसकी क्या वजह है?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि छोटे बच्चों में चश्मा क्यों लगता है। हमारी आंख है ये प्रकृति का बहुत ही बड़ा उपहार है। आंख की लंबाई जो होती है, एक्सियल लेंथ होती है, ये 22.5 मिलीमीटर होती है और 22.5 से 23 मिलीमीटर नॉर्मल लेंथ होती है। और जब आपकी आंख की एक्सियल लेंथ यानी कि लंबाई बढ़ जाती है, 1 मिलीमीटर लंबाई बढ़ती है, तो -3 डायोप्टर के चश्मे का नंबर बढ़ जाता है
0: जी।
1: तो बच्चों में चूंकि ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, तो इसी स्थिति में बच्चों में आंख की एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। और मैं चंबल चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज बच्चों के चश्मे के नंबर रोकने के लिए कहना चाहता हूं कि आज हम आर्टिफिशियल लाइट के एरा में रह रहे हैं। आज हम हर जगह आर्टिफिशियल लाइट है, सूर्य के प्रकाश से हमारी दूरी बनी हुई है। तो मैं बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम एक दिन आधे घंटे सूर्य के प्रकाश में प्रकृति के साथ गुजारें। जब आप सूर्य के प्रकाश में खेलते हैं, जब आप प्रकृति के सानिध्य में होते हैं, तो आंखों के पर्दे में एक विशेष प्रकार के जो रेटिना सेल्स होते हैं, रेटिना नामक पर्दे में जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं, उन सेल्स से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। और डोपामिन ये आंखों की एक्सियल लेंथ बढ़ने से रोकता है। तो चश्मे का माइनस नंबर यानी कि मायोपिया बढ़ने से रोकने के लिए धूप में खेलें, फास्ट फूड का सेवन न करें और साथ ही साथ स्मार्टफोन का उपयोग सीमित मात्रा में करें, डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं और हर साल में 2 बार आंखों की जांच कराएं, जिससे कि आपका मायोपिया को बढ़ने से रोका जा सके। और इसके साथ जो डाइल्यूटेड एट्रोपिन आई ड्रॉप होती है 0.01%, उसका भी उपयोग आजकल मायोपिया को रोकने के लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ है।
0: जी,
1: और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं, तो पर्दे की जांच दवा डाल के अवश्य करवाएं।
0: जी जी,
1: तो ये 5 टिप्स मैंने बताई मायोपिया रोकने के लिए। और मायोपिया एक एपिडेमिक के रूप में, ग्लोबल पेंडेमिक के रूप में सामने आ रहा है। यदि मायोपिया को रोका नहीं गया तो विश्व भर में 2050 तक विश्व की आधी आबादी यानी कि 5 अरब लोग मायोपिया से पीड़ित होंगे। भारत में आज से 10 साल पहले मायोपिया की जो प्रीवेलेंस था वो लगभग 10-15% था, अभी 30-40% बच्चे मायोपिया से पीड़ित हो रहे हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और
0: तो क्या इसमें विजन लॉस होता है?
1: हाँ, मायोपिया में के बहुत बड़े खतरे भी हैं, क्योंकि मायोपिया वाले बच्चों को ओपन एंगल ग्लॉकोमा यानी कि काला पानी होने की संभावना अधिक होती है। मायोपिया वाले बच्चों को अट्रैक्ट होने की संभावना अधिक होती है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को पर्दे के अंदर, रेटना के अंदर लेटिस डिजनरेशन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। और साथ ही साथ मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति जो है वो कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, जैसे वो बाहर जाएगा तो साफ नहीं दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति कई बार चाहते हुए भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ऐसे व्यक्तियों कई बार, कई व्यक्ति स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, वो चश्मा जानबूझ के लगाती नहीं, क्योंकि एक टेबू माना जाता है सामाजिक रूप से, एक वो टेबू माना जाता है। जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, जब मुझे चश्मा लगा था, तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि आप इसको चश्मा लग गई, क्या इलाज करेगा। और मुझे बहुत जान के आश्चर्य हुआ था कि मेरी योग्यता का आकलन मेरे चश्मे से किया गया था। तो ये मायोपिया है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है।
0: जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक आप पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर अपने श्रोताओं को बता दूं, थोड़ा कार्यक्रम में समय बाकी है, यदि आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है आपका, तो अब से लेकर 9 बजे तक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। आप अपना सवाल हमें पूछ सकते हैं, नंबर है 2941142। तो श्रोताओं, आपको बता दूं कि डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे इस समय हमारे साथ हैं, जो नेत्र सर्जन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ में लेखक भी हैं। इसके अलावा कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, बहुत कुछ वो समाज को जागरूक करते रहते हैं समय समय पर कई कार्यक्रमों में भाग लेकर, और आज ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में हैं। तो इस समय का लाभ उठाइए और कोई सवाल है तो आप प्लीज हमें कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आई फ्लू की बात हुई, एलर्जी की बात हुई, उमस में किस तरह से सावधानी रखनी है ये बात हुई, हाड़ोतुई के किसानों को लेकर के बात हुई, माइंस को लेकर बात हुई, स्टूडेंट्स को लेकर बात हुई, अब लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डालनी चाहिए ये भी हमने बात करी, खान पान कैसा हो ये भी हमने बात करी, क्या कोई ऐसा विषय हमसे छूट गया है जिसे हमने टच नहीं किया और आप हमारे श्रोताओं को उसकी जानकारी देना चाहेंगे?
1: मैं सभी श्रोताओं को एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नन्हे शिशु होते हैं, उनमें आंखों में एक बीमारी हो जाती है जिसको हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार की बीमारी है जो कि छोटे बच्चों में होती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में आंखों का कैंसर कहते हैं।

0: जी
1: इसमें क्या होता है कि जैसे आंखों का जो पुतली होती है उसके पुतली के बीच में बीचों बीच जैसे एक बिल्ली की आंख चमकती है
0: जी
1: जिसको हम कैट्स आई रिफ्लेक्स कहते हैं, उस प्रकार से उस बच्चे की आंख के बीच में सफेद निशान दिखाई देता है। कई
0: जी
1: बार पेरेंट्स उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। तो यदि छोटे बच्चे में विशेषकर जैसे जन्म होने से पहले 1 या 2 सालों तक यदि किसी बच्चे की आंख के बीचों बीच सफेद
0: डॉक्टर
1: निशान
0: साहब
1: दिखाई,
0: इस बात को रोकते हुए एक कॉलर है। हाँ हेलो
2: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: जी मैम, कोटा से बोल रहा था अजय शर्मा।
0: जी अजय जी, सवाल पूछिए अपना।
2: मैम एक सवाल था मेरा कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन 2-3 महीने पहले कराया ये आंखों का,
0: जी
2: मोतियाबिंद का। अब जब से वो शिकायत कर रही है कि अब मेरे को जब से ऑपरेशन कराया ना तब से उनको जुकाम बना रहता है, मतलब हमेशा। तो इसका कुछ कारण है क्या?
1: अजय जी नमस्कार, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मोतियाबिंद ऑपरेशन से जुकाम का कोई संबंध नहीं है, और इसके लिए आप एक बार ENT नेत्र विशेषज्ञ को के साथ साथ आप ENT विशेषज्ञ को भी दिखा लें जिससे कि जुकाम का कारण पता चल सके। कई बार आंखें और नाक कान गले का रिश्ता बड़ा नज़दीकी रिश्ता है, तो इसलिए आप दिखा लें और दिखा के उनकी मार्गदर्शन अपना उपचार करा लें। जुकाम का मोतियाबिंद ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं है।
2: अच्छा सर, एक चीज और पूछ रहा था, ये जो दवाई डाल रहे हैं मतलब मोतियाबिंद के लिए, तो इसका भी कोई, उनको काला पानी भी था असल में,
1: काले पानी की दवाई लगातार डालते रहे और उसमें कोई
2: लगातार डाल रहे, तो इससे भी कोई वो नहीं, जुकाम तो
1: नहीं,
2: नहीं?
1: इससे कोई जुकाम का संबंध नहीं। और एक मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि काले पानी की दवाई जब डालते हैं आप, तो आंखों के कोने में, मतलब आप चाहें तो थोड़ा सा प्रेशर लगा लें जिससे कि दवाई गले में नहीं जाए और वो आंखों में बनी रहे। तो एक जो दोनों आंखें जहाँ मिलती है, नाक का जो जंक्शन होता है, वहाँ थोड़ा सा कुछ 30 सेकंड के लिए प्रेस कर लें जिससे कि आंखों जो दवाई है वो गले में नहीं जाए।
2: ठीक है सर,
0: जी धन्यवाद कॉल किया आपने। नवजात शिशु के कैंसर की बात आप कर रहे थे डॉक्टर साहब।
1: हाँ,
0: जी
1: छोटे बच्चों में एक विशेष प्रकार की बीमारी हो जाती है जिसको हम वाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। जब
0: जी
1: बच्चे जन्म से लेकर 2 साल तक यदि बच्चों की आंख के बीचों बीच आप सफेद निशान देखते हैं, तो ये आंख के कैंसर यानी रेटिनोब्लास्टोमा का लक्षण हो सकता है। इसको नजरअंदाज न करें,
0: तो क्या
1: तुरंत
0: ये जन्मजात आता है?
1: कई बार जन्म के तुरंत बाद हो जाता है। कुछ
0: जी
1: बच्चों में जन्मजात मोतियाबिंद भी हो सकता है जिसकी वजह से सफेद पुतली के बीचों बीच सफेद निशान दिखाई देता है।
0: जी
1: तो ऐसी स्थिति में तुरंत नजदीकी नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें, उसको नजरअंदाज न करें, क्योंकि बीचों बीच सफेद निशान दिखना मोतियाबिंद का, जो कि जन्मजात हो सकता है, का लक्षण है, या फिर आंखों के कैंसर का लक्षण भी है, जो कि इन बच्चों में जन्म से लेकर 2 साल तक काफी कॉमन होता है।
0: जी जी
1: और एक और मैं सवाल बताना चाहूंगा कि जो बच्चे, जो शिशु जन्म से पहले यानी तय समय से पहले 9 महीने से पहले पैदा होते हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में प्री मेच्योर चाइल्ड कहा
0: जी
1: जाता है,
0: जी
1: ऐसे बच्चों में एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है जिससे हम आरओपी यानी कि रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी कहा जाता है।
0: जी
1: तो रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी जन्म से 7 महीने 6 महीने के जो जन्म बच्चे हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है, और ऐसे बच्चों में 2 हफ्ता और से लेकर 4 हफ्ता के बीच में दवा डालकर पर्दे
0: जी
1: की जांच कराना अति आवश्यक है
0: जी
1: ताकि रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी का पता लगाया जा सके। सामान्यतः ये जाँच रेटना विशेषज्ञ के द्वारा की जाती है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे बच्चे जो कि प्रीमेच्योर बॉर्न है वो उनके पेरेंट्स जरूर जांच कराएं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। श्रोता भी आपसे लाभान्वित हुए, समय निकालकर आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीना ने और प्रस्तुति थी राजेश महावर की। कंट्रोल रूम से हमारे सहयोगी रहे विनीत स्नेही, और ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया अलका दीक्षित ने। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी श्रोता सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर, देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के प्रभावों की समीक्षा की, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और राज्य को विभिन्न सौगात देंगे। वे जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जाएंगे, जहां वे लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश के पहले ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पचपदरा में एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिससे देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखे जाने और जोधपुर एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि नए टर्मिनल को लेकर वहां लोगों में बहुत उत्साह है। इसके बनने से अधिक पर्यटक जोधपुर आएंगे, जिससे स्थानीय व्यवस्था मजबूत होगी।
2: जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर हवाई संप्रेषण, देश विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे मेहरानगढ़, उम्मेद भवन, ओसिया और थार जैसे क्षेत्र पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी। होटल, हस्तशिल्प, परिवहन, रेस्तरा और स्थानीय व्यापार को भी सीधा लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आधुनिक एयरपोर्ट निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति देगा, जिसे जोधपुर क्षेत्रीय विकास का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल पचपदरा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रिफाइनरी का इंतजार लंबे समय से था, जो अब पूरा होने जा रहा है।
3: काफी समय से इंतजार था रिफाइनरी का, रिफाइनरी का भी उद्घाटन होने वाला है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने 17 जनवरी 2018 में इसका शिलान्यास किया और उद्घाटन भी उसका वो ही कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे राज्य

0: राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ का इंजन है।
1: मुख्यमंत्री ने कल पचपदरा स्थित मंडापुरा में HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का भी उद्घाटन किया। सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। दो दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिरोही संवाददाता।
2: कार्यक्रम में देश भर से विधि एवं न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ तथा नीति निर्माण से जुड़े अधिकारी भाग लेंगे। चिंतन शिविर में न्याय प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी आधारित न्याय प्रणाली, नागरिकों को सरल एवं सुलभ कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाने, संस्थागत सुधार तथा सुशासन को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून आगे बढ़ रहा है और उसने ज्यादातर हिस्सों पर अपनी पहुंच बना ली है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू जिलों से होकर गुजर रही है। अगले 2-3 दिन में इसके शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने आज जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी को छोड़कर पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। इसके अलावा कुछ दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इनमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर शामिल हैं। यहां भारी बारिश की चेतावनी है। इस बीच जयपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं। सुबह कुछ स्थानों पर छिटपुट बरसात भी हुई। करौली में हल्की फुहारों ने जिले का मौसम खुशनुमा बना दिया है। भरतपुर और बांसवाड़ा में कल देर रात से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। जालौर में कल रात हवा के साथ हल्की बरसात हुई। सिरोही के पिंडवाड़ा, आबू रोड, स्वरूपगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों में कल देर शाम घंटे भर तक झमाझम बादल बरसे। हमारे डूंगरपुर संवाददाता ने बताया कि वहां 2 दिन से चल रही बारिश से लगभग सभी इलाके तरबतर हैं।
3: राजस्थान में मानसून के प्रवेश के बाद दक्षिणी राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। 2 दिनों से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। वहीं बारिश की वजह से खेत भी पानी से लबालब हो गए हैं। वहीं नदी नालों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। बारिश के साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और किसान अब खेती बाड़ी में जुट गए हैं। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति और उसके संभावित प्रभावों पर समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने संबंधित मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को उपयुक्त फसल बुवाई की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जलाशयों और भूजल स्तर की निगरानी, पशु चारे की उपलब्धता तथा कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के 30वें संस्करण का आयोजन कल जयपुर में किया गया। कार्यक्रम में देश के 25 राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। युवाओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका निभाते हुए संसद की कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण दिया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत की आधारशिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर। देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में 2 दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के भावों की समीक्षा की। कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन 1:00 PM प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: FM 102 और 103

2.6 मेगाहर्ट्ज, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत।

हाजिर हैं हम लेकर के फिल्म संगीत, और ये पहला नजराना है आप सभी के लिए। फिल्म का नाम है सनम रे, आवाजें हैं अरिजीत सिंह, मिथुन और अनिरुद्ध भोला की, गीत और संगीत मिथुन का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आइए अब सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है बरेली की बर्फी। आवाज, गीत और संगीत आरको का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आपके अपने चंबल चैनल पर। और आइए अब सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो। आवाजें हैं आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीपादा की। इरशाद कामिल का गीत है और प्रीतम का संगीत।

ये है आपका अपना चंबल चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है टू स्टेट्स। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपादा की। गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

फिल्म टू स्टेट्स के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी उनका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत।

0: आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्ज 103.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी मीनाक्षी शर्मा। फूलों की तरह आप मुस्कुराते रहें, चमकते सूरज की तरह दमकते रहें, गम की हर बात पुरानी हो जाए कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। बस इन्हीं शुभ विचारों के साथ आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। सखियों, मौसम आज थोड़ा सा अच्छा हो रखा है, थोड़ी सी आज धूप कम है, मौसम सुहावना है और इस सुहावने मौसम के अंदर मन करता है कि आपके साथ बातों का सिलसिला शुरू करें और कभी ख़त्म ना करें। और हमेशा हम लोग आकाशवाणी के द्वारा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहते हैं, जो आपके दैनिक जीवन में, आपकी पूरी ज़िंदगी में हमेशा ही काम आती है। और इसी क्रम में आज आपको हम सुनवा रहे हैं एक विशेष भेंटवार्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती सक्सेना से हमारी जो बातचीत हुई है। इसका विषय है कि गर्भ निरोधक की जो नवीन तकनीकें हैं वो कौन कौन सी हैं। इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं हम डॉक्टर भारती सक्सेना से। गिनती आज भी नहीं आती मेरी माँ को, मैं एक रोटी मांगता हूँ, वो हमेशा दो ही लेकर आती है। सखियों, माँ का वात्सल्य ऐसा ही होता है। माँ अपने बच्चे को हर दुख से बचाती है, उसकी देखभाल पालन पोषण करती है और बच्चे की उचित देखभाल करती है। पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ की खुद की सेहत सही रहे और दो बच्चों के बीच में उचित अंतराल रहे। और इस अंतराल को बनाए रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गर्भ निरोधक तकनीकें। आजकल गर्भ निरोधक के लिए बहुत सारी नई नई तकनीकें आ चुकी हैं। इन नवीन तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती सक्सेना, जो वरिष्ठ आचार्य पद पर आसीन है न्यू मेडिकल कॉलेज में। नमस्ते डॉक्टर साहब।
1: नमस्ते।
0: माँ का स्वास्थ्य सही रहे, बच्चे का स्वास्थ्य सही रहे, इसके लिए दो बच्चों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए?
1: जी, मैं सभी महिलाओं को यही कहती हूँ कि आज आप देखें कि जितनी भी आपको एक्ट्रेसेस या जो भी डॉक्टर्स हैं, जो वो स्वस्थ इसीलिए हैं क्योंकि वो सही समय पर गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी,
1: तो इसलिए गर्भ निरोधक का इस्तेमाल एक बार जैसे डिलीवरी हुई है तो 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए, मतलब एक डिलीवरी से और दोबारा प्रेगनेंसी लगने में कम 2 वर्ष का, तो एक डिलीवरी से दूसरी डिलीवरी में 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। और ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो महिला को प्रेगनेंसी के समय इतने व्यय करना पड़ता है बच्चे के लिए, उनका शरीर का सब कुछ रक्त के थ्रू जाता है बच्चे को, तो उनमें कमजोरी आ जाती है, तो वो सारी कमजोरी दूर हो जाए। और यदि जल्दी प्रेगनेंसी दोबारा से हो जाएगी तो उसके खतरे बहुत सारे होते हैं, उसमें अबॉर्शन या जो गर्भपात जल्दी होना, जल्दी डिलीवरी होना, सतमासी डिलीवरी होना, बच्चे का वजन कमजोर होना, यदि अगर जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती तो। यदि डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है तो ऑपरेशन केसेस में तो ये और भी ज्यादा जरूरी है कि उसमें 2 साल का कम से कम अंतर रखा जाए।
0: जी,
1: जिससे अंदर जो टांके हैं वो अच्छे से ठीक हो जाए, क्योंकि यदि टांके पूरे ठीक नहीं होते उसकी प्रक्रिया लंबी होती है।
0: जी,
1: तो वो पतले रह जाते हैं और पहले दूसरी प्रेगनेंसी लग जाती है। और दूसरी जो प्रेगनेंसी है ना, वो जल्दी से जल्दी 1.5 महीने के अंदर भी लग सकती है। बच्चा 1.5 महीने का है छोटा वाला, पहले वाला
0: जी।
1: और 1.5 महीना हुआ है तो कई बार अंडा बनने लग जाता है, और वो अंडा बन जाता है तो पहला पीरियड भी नहीं आया होता है, उससे पहले दूसरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है।
0: जी,
1: ये बात कई महिलाओं को बताते हैं तो वो समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो जाता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी 1.5 महीने पे भी हो सकती है प्रेगनेंसी, नहीं तो 2-3 महीने में, यदि असावधान है महिला और पूरा ब्रेस्ट फीडिंग भी पूरा नहीं कर रही, मतलब स्तनपान पूरा नहीं करा रही है, तो प्रेगनेंसी लगने के चांसेस होते हैं। और यदि पहले ऑपरेशन से डिलीवरी है तो उसमें एक सबसे ज्यादा खतरनाक जो स्थिति है कि आंवल जो है वो पुराने टांकों के ऊपर ही स्थापित हो जाती है और वहीं से ग्रो करने लग जाती है, तो उसमें महिला को आगे चल के बहुत गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ता है, तो वो ना हो तो स्पेसिंग होनी चाहिए,
0: तो
1: 2 से 3 साल का अंतर।
0: बिल्कुल, तो ये 2 से 3 साल का अंतर मेंटेन करने के लिए कौन कौन से गर्भ निरोधक का इस्तेमाल ज्यादा सही रहता है?
1: जी,

0: गर्भ निरोधक वैसे अधिकतर जो हॉस्पिटल सप्लाई में है और डॉक्टर सभी महिलाओं को पता है उनमें होते हैं, कुछ तो टेम्पररी साधन होते हैं, परमानेंट होते हैं। परमानेंट तो सभी को पता है कि नसबंदी कराई जाती है, या तो महिला करा ले या पुरुष नसबंदी। उसके अलावा जो टेम्पररी साधन है उसमें जो प्रतिदिन यूज करने वाले निरोध हैं, इसी तरह वजाइनल सर्वाइकल कैप्स वगैरह हैं या स्पंजस जेलीज हैं, ये सब प्रतिदिन जब भी संभव हो तब यूज करना पड़ता है। उसके अलावा जो कुछ स्थाई हैं जिनमें कि थोड़ा समय तक वो एक बार लगाए जाते हैं और कई समय तक काम करते हैं, उसमें इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिसमें कि आप साधारणतया हम कॉपर टी की तरह जानते हैं जिनको, अलग अलग तरह की होती है कॉपर टी, तो कॉपर बिना कॉपर वाले पहले हुआ करते थे साधन, बाद में कॉपर के फॉर्म में जिसमें अलग अलग मात्रा में कॉपर होता है, तो ये आईयूसीडीज होते हैं। इसके अलावा हार्मोन बेरिंग आईयूसीडी भी होते हैं जिसे मिरेना के नाम से जानते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास हार्मोन बेस्ड मेथड, हार्मोन बेस्ड मेथड में जैसे आपने गोलियां होती हैं, इसके अलावा इंजेक्शन है जो 3-3 महीने में लगाए जाते हैं
1: जी।
0: और आजकल जो साधन अवेलेबल है जो बिल्कुल लेटेस्ट जो हमारे यहाँ अवेलेबल हुआ है, ऐसा नहीं है वो नया साधन है
1: जी,
0: वो 20-30 साल से सारी दुनिया में यूज हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ फ्री में अवेलेबल अब हुआ है वो
1: जी।
0: वो है छोटी सी रॉड एक लगा देते हैं बाह के ऊपर, हाथ के अंदर, हाथ में मतलब यूट्रस में नहीं लगाई जाती, अच्छा। हाथ में लगाया जाता है, उसको इम्प्लेनॉन बोल।
1: कि हमने गर्भ निरोधक दवाइयां सुनी है, कॉपर टी के बारे में सुना है, इंजेक्शन के बारे में सुना है, पर ये आपने बिल्कुल नया बताया इम्प्लेनॉन। तो आपने बताया कि ये तो हाथ में लगता है,
0: हाँ।
1: तो जब ये हाथ में लगता है तो फिर ये कैसे काम करता है, इसको कैसे लगाते हैं
0: जी? जो ये कंधे के नीचे वाला जो जहाँ ब्लाउज का वो आता है वहाँ आपकी उस जगह पर ये लगाई जाती है। तो इस में एक माचिस की तीली जितना बड़ा, 4 सेंटीमीटर जितना एक प्लास्टिक मटेरियल का, इसमें पॉलीमर होता है
1: जी,
0: उस पॉलीमर के अंदर हार्मोन होता है, इनकॉर्पोरेटेड होता है हार्मोन उसके अंदर बैठा होता है। तो वो जब हम किसी एक इंजेक्शन लगाने जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एप्लीकेटर होता है, उससे हम लगा देते हैं बाह में, वो बाह में रहता है और वहां से वो हार्मोन रिलीज करता है। तो हार्मोन जाता है सब अपनी जो खून की नसें होते हैं उनके थ्रू पूरे शरीर में जाता है, और उससे फिर क्या होता है कि जो ओवरीज हैं
1: जी
0: उन पे फर्क पड़ता है, तो अंडा नहीं बनता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो अंडा बनता नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है प्रोजेस्टेरोन, कुछ घंटों से लेके एक दिन के अंदर ही इसका इफेक्ट चालू हो जाता है कि भाई गर्भ निरोधक की तरह इसका काम चालू हो जाता है। और ये जो हार्मोन होता है ये एक तो अंडा नहीं बनने देता है, दूसरा यूट्रस के अंदर जो सर्विक्स पे सर्वाइकल म्यूकस होता है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो उससे स्पर्म्स अंदर नहीं जा पाते हैं, और जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है इतनी पतली हो जाती है उसमें बच्चा नहीं ठहर पाता।
1: अच्छा।
0: इस तरह से काम करता है।
1: ये इम्प्लेनॉन कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं?
0: इम्प्लेनॉन एक ऐसा साधन है जो ये कह सकते हैं वर्सेटाइल है, ये किन्हीं भी महिलाओं में लगाया जा सकता है, जैसे यंग गर्ल्स हैं, लड़कियां मतलब बहुत कम उम्र वाली जो महिलाएं हैं उनमें भी लगाया जा सकता है, 40 साल से ऊपर वाली महिलाओं में भी लगाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उनके पहले बच्चा हुआ हो, नहीं बच्चा हुआ है तो भी वो ये वाला गर्भ निरोधक काम में ले सकती हैं, जिनके कई बच्चे हैं वो भी काम में ले सकती हैं, जो दुबली महिलाएं हैं उनके भी लगाया जा सकता है, जिनके वजन बहुत ज्यादा है उनके भी लगाया जा सकता है, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है उनमें भी यूज कर सकते हैं, वजाइनल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह इसके बहुत सारे मतलब कोई गतिरोध ज्यादा है नहीं, अधिकतर जो हार्मोन बेरिंग है वो सिगरेट स्मोकर्स को मना होते हैं,
1: अच्छा
0: इसमें वो भी नहीं है हिंड्रेंस। मरीज के खून की कमी है वो भी यूज कर सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग जिनको स्तनपान कर रही है तो स्तन जो ब्रेस्ट मिल्क पे या माँ के दूध पे कोई फर्क नहीं होता है, तो ये अधिकतर सभी महिलाओं में लगाया जा सकता है। अब किस समय लगाया जाता है, जैसे पीरियड आया है तो पीरियड के तुरंत बाद फर्स्ट 7 डेज के अंदर डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के कुछ दिनों के अंदर इसको लगाया जा सकता है। जब तक मरीज हॉस्पिटल में रहती है, जैसे ऑपरेशन केसेस में 6-7 दिन तक रहती है हमारे पास, नॉर्मल डिलीवरी वाली 2-3 दिन रहती हैं, तो उस दौरान आराम से लगाया जा सकता है। और इसके अलावा जिनके अबॉर्शन हुआ है उनके भी लगाया जा सकता है
1: जी।
0: तो अधिकतर महिलाओं को हम ये वाला गर्भ निरोधक लगा सकते हैं। इवन जैसे किसी के यदि ट्यूब में बच्चा लगा था, नसों में बच्चा लग जाता है
1: जी,
0: तो उसका ऑपरेशन करके वो नसों में ऑपरेशन कर देते हैं, तो अब वो साथ में अभी बच्चा नहीं चाहती है, 3 साल बाद बच्चा चाहती है
1: जी,
0: तो उसको भाई नसबंदी तो नहीं करनी है लेकिन वो बच्चा नहीं चाह रही 3 साल तक, तो ये इम्प्लेनॉन उस ऑपरेशन के बाद भी लगाया जा सकता है।
1: अभी आपने ये बताया कि जिनके बच्चा नहीं हुआ है अभी तक
0: जी,
1: न्यूली मैरिड है वो भी लगा सकते हैं,
0: बिल्कुल लगा सकते हैं,
1: इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा।
0: यहाँ मैं एक चीज और बताना चाह रही हूँ कि जिनके बच्चा नहीं है ना वो आईयूसीडी भी यूज कर सकती हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, पर डरते हैं लगवाने से, यूट्रस के अंदर कोई भी चीज लगवाने से महिलाएं डरती हैं
1: जी।
0: तो जिनके बच्चा नहीं है अभी

0: अभी शादी हुई है, कई महिलाएं ऐसी होती हैं वो कहती हैं हमें तो गोली भी नहीं खानी और
1: जी
0: ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, तो वो आईसीडी लगवा लेती हैं, पर मन के पक्के होते हैं वो लगवा लेते
1: जी
0: हैं। तो
1: जी
0: आईसीडी भी मनानी है
1: हाँ
0: और ये भी मनानी है।
1: नहीं, कई बार हम लोग देखते हैं कि मना करते हैं बड़े बूढ़े लोग कि नहीं नहीं पहले एक बच्चा हो जाने दो, उससे पहले गर्भ निरोधक का इस्तेमाल मत करो। तो मतलब कोई डर वाली बात नहीं अगर इसका
0: नहीं,
1: इस्तेमाल
0: डर
1: करें
0: कुछ
1: तो
0: नहीं। देखिए, लगाने वाला जो डॉक्टर है वो ट्रेंड हो
1: हो।
0: और वो पूरी सतर्कता से लगाते हैं तो अधिकतर कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने एक दो अपने बहुत अच्छे जानकार लोगों के आईयूसीडी भी लगाया हुआ है
1: जी
0: और ये तो खैर इम्प्लानोन यूज कर ही सकते हैं,
1: जी
0: टेबलेट्स भी यूज कर सकती हैं जो न्यूली मैरिड गर्ल्स
1: न्यूली
0: हैं, तो
1: मैरिड
0: टाइम से पीरियड भी आएगा और बच्चा भी
1: है।
0: नहीं लगेगा।
1: मैम आपने ये तो बता दिया कि किन किन महिलाओं को ये लगाना चाहिए, लेकिन ऐसे भी कोई कंडीशंस हैं जिनमें महिलाओं को ये नहीं लगवाना चाहिए?
0: जी, अधिकतर महिलाओं में तो लगाया जाता है, लेकिन ये भी याद रखना होता है 4 या 5 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कि वो हम पेशेंट से पूछ लेते हैं कि
1: जी
0: ये कंडीशन तो नहीं है, उसमें नहीं लगाया जाता है। जैसे किसी को लिवर की डिजीज है,
1: जी
0: अभी कोई ऐसी डिजीज है जिसमें कि उनके SGOTPT बढ़े हुए हैं, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, हेपेटाइटिस है, इन वाली कंडीशन में क्रोनिक हेपेटाइटिस पुरानी बीमारी है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, इनमें नहीं लगाया जाता। उसके अलावा जिनके पैरों में खून का थक्का जमा हो या दिमाग में खून का थक्का जमा हो,
1: जी
0: पुरानी हिस्ट्री या फैमिली में हिस्ट्री है, उनको हमको नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर, अगर अभी एक्टिव ब्रेस्ट कैंसर है तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते, और पास्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है लेकिन 5 साल में वो कंट्रोल है तो उसमें हम उसके रिस्क ऑफ बेनिफिट देखकर उसको लगा सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जिनको माइग्रेन होता है,
1: जी
0: माइग्रेन होता है जिनको पहले से पता चल जाता है आज मुझे माइग्रेन होगा,
1: जी
0: कुछ ऑरा कहते हैं उसको, तो उन पेशेंट्स में हम नहीं लगाते हैं। इसके अलावा कोई SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस नाम से बीमारी होती है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, उसमें नहीं लगाते। और अगर हार्ट की कोई डिजीज है, इस्चिमिक हार्ट डिजीज, जिनके की पुरानी बीमारी है हार्ट की, कई बार यंग एज में भी हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं, इन महिलाओं को हमको नहीं लगाना होता है। तो बाकी अधिकतर कंडीशंस में हम इसको लगा पाते हैं,
1: जी
0: जैसे BP बढ़ा हुआ है, 160/110 भी है तो भी हम लगा सकते हैं,
1: अच्छा
0: और जिनके डायबिटीज है
1: जी।
0: वो अंडर ट्रीटमेंट है या ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हैं तो भी डायबिटिक पेशेंट के भी लगा सकते हैं,
1: और थायराइड है तो?
0: थायराइड में लगा सकते हैं।
1: तो ये जो इम्प्लेनॉन है वो कितने साल तक काम करता है?
0: इम्प्लेनॉन है वो 3 वर्ष का उसका ड्यूरेशन है, तो अधिकतर ही 3 वर्ष काम करता है। तो हमने जो आपको बताया था कि ऑपरेशन वाले केस में कम से कम 2 से 3 साल
1: जी
0: जरूरी है टाके अच्छे होने के लिए, तो उन केसेस में समझा के लगाया जाता है,
1: जी
0: 3 साल बाद वो निकलवा सकती हैं। निकलवा के यदि उन्हें और आगे आवश्यकता है गर्भ निरोधक की, तो सेम उसी जगह पर दोबारा से भी दूसरा इम्प्लानॉन लगाया जा सकता है। जैसे कोई महिला आई है आज निकलवाना चाह रही है, तो 3 वर्ष हो चुके हैं उनको, पर वो
1: जी
0: चाह रही है कि आगे और भी यूज करें और इससे वो सेटिस्फाइड है कि भाई ये सब ठीक है तो हम दोबारा से ये लगवाना चाहते हैं, तो हम उसी जगह पर वापस से इम्प्लानॉन डाल सकते हैं।
1: तो ये लगाना और निकालना का जो प्रोसेस होता है
0: हाँ,
1: बॉडी में जा रहा है तो कुछ दर्द वगैरह हो
0: ये
1: होता है?
0: एक्चुअली डर तो हर इंसान को होता है कि ये पता नहीं कैसे डलेगा क्या होगा। बहुत माइनर सा प्रोसीजर होता है, उसमें हम सुन की एक सुई लगाते हैं हाथ
1: अच्छा
0: में,
1: उस एरिया को सुन कर देते
0: जी
1: हैं।
0: हाँ, उसमें जिस जगह पे हमने उसको सिलेक्ट किया कि इस जगह लगाएंगे तो वहां पर एक सुन की सुई लगाते हैं। प्रोसीजर मुश्किल से 10 मिनट का है,
1: जी
0: तो सुन की सुई लगाने के बाद 1-1.5 मिनट इंतजार करते हैं तो सुन की सुई का असर आ जाता है। उसके बाद इसका एक लोडेड एप्लीकेटर आता है जिसमें ऑलरेडी इम्प्लानॉन लोडेड होता है,
1: जी
0: वो मोटी सी एक सुई में लोडेड होता है,
1: जी
0: वो सुई को हम उसी जगह पे जहां हमने सुन किया था वहां पे डालते हैं और लौटते में उस सुई को विड्रॉ कर लेते हैं,
1: जी
0: तो सुई तो बाहर आ जाती है और इम्प्लानॉन अंदर आ जाता है।
1: जी
0: इस तरह से ये लगाया जाता है और वो कोई उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, छोटा सा एक जैसे इंजेक्शन लगता है ना उसी
1: जी
0: की तरह
1: जी
0: होता है, वहां पट्टी लगा देते हैं 4-5 दिन के लिए, वो फिर हटा सकती हैं।
1: तो ये मतलब किसी भी हाथ में लगवा सकते हैं?
0: हाँ, किसी भी हाथ में लगा सकते हैं, इसमें कोई हाथ में काम करने का इसका कोई वो नहीं है इशू। बस ये सोचते हैं कि भाई शुरू में 4-5 दिन वो खून का थक्का ना जमे वो ना हो, इसलिए 4-5 दिन का जरूर रेस्ट बताते हैं। और अधिकतर महिलाओं को लगता है मैं इस हाथ से काम करती हूँ तो हम अधिकतर चूज कर लेते हैं भाई इस हाथ से काम करती हूँ तो दूसरे हाथ में लगा दें,
1: जी
0: हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को उठा सकती हैं, गोदी ले सकती हैं, फीड कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती।
1: तो आपने ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आज
0: जी
1: हमारे श्रोताओं को इम्प्लीनॉन के बारे में। मैम ने बताया कि जब मासिक धर्म होता है तो शुरू के 7 दिनों के अंदर इसे कोई भी महिला इसे लगा सकती है और इसको लगाने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल नई तकनीक है सखियों, तो इस तकनीक का जरूर इस्तेमाल करें। आप हमारे स्टूडियो में आए मैम, सखियों को इतनी बढ़िया इतनी उम्दा जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: सखियों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर भारती सक्सेना को।

जिन्होंने इम्प्लिनोन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। और सखियों, हमें अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए दो बच्चों के बीच में गैप रखना ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि जब बच्चे में थोड़ा सा गैप होता है तो बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं और एक दूसरे की वो बहुत केयर भी करते हैं और वो साथ हंसते हैं, साथ रोते हैं, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा बना रहता है। बातें हमारी यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत।

सखियों, रिश्ते ऐसी चीज होती हैं जिन्हें हम कुछ रिश्तों को चुन सकते हैं, कुछ रिश्तों को हम चुन नहीं सकते, हमें वो ईश्वर ही देता है। रिश्ता चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो हमने खुद ने चुना हो या हमें ईश्वर ने दिए, हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे रिश्तेदारों के जो रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते के अंदर जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें हमेशा सभी दृष्टिकोण से सोचकर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर आने में नहीं आना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है वो खूबसूरत बना रहे। और जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे रिश्ते जरूरी होते हैं। उनके साथ ही कई लोग अपनी खुशियों की खुशियां जो है अपने पालतू जानवरों में भी ढूंढते हैं। और सखियों, हमारा भारत देश तो है ही ऐसा देश जहां पर हमने नदियों को भी पूजा है, तालाबों को भी पूजा है, पर्वतों को भी पूजा है और हर जानवर को पूजा है। हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहाँ पे हम

आध्यात्मिक कारणों से ही नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाने के लिए भी हमने बहुत सारे जानवरों का संबंध जो है हमारे देवी देवताओं से कर रखा है। अब देखिए शिव जी की सवारी नंदी है, तो शेरों को संरक्षण देने के लिए हमने दुर्गा माँ को शेरों की सवारी कराई है। शीतला माता की सवारी गधा है। बचबारस पे हम गौ माता की पूजा करते हैं और गाय में तो 36 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है ऐसा मानते हैं, इसीलिए हम पहली रोटी गाय की बनाते हैं। गौमूत्र दूध दही को अमृत तुल्य मानते हैं और पंचामृत में इनका प्रयोग करते हैं। कुत्ता धर्मराज का साथी है। जिस तरह धर्म आपका साथ नहीं छोड़ता वैसे ही कुत्ते अपनी वफादारी कभी नहीं छोड़ते ऐसा हम मानते ही हैं। सखियों ये मूक जानवर घर में पालने से एक सुकून मिलता है। जो लोग जानवरों की नियमित रूप से देखभाल करते हैं, पशुपालन करते हैं, कहते हैं कि उन्हें बीपी भी बहुत कंट्रोल में रहता है क्योंकि उनका जो प्रेम होता है जानवरों का वो अनकहा प्रेम उनके अंदर बहुत ही सांत्वना देता है और इंसान का बीपी कम रहता है या नॉर्मल रहता है और जीवन जो है अच्छे से चलता रहता है। लेकिन सखियों हमारी संस्कृति में एक चीज और लिखी हुई है। हमारी संस्कृति में हम जीव मात्र के प्रति दया प्रेम का भाव तो है लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया है कि जानवरों को आप घर में रखें। हमारे यहाँ पे हमारी संस्कृति में चाहे वो गाय हो, चाहे वो बैल हो, चाहे से वो हम भेड़ बकरी कुछ भी पालते हैं, उन्हें घर के बाहर आंगन में बांधने के लिए बोला गया है और वो सब इसीलिए कहा गया है जिससे कि हमारा घर जो है सुरक्षित रहे, हम हाइजीन भी मेंटेन कर सकें। लेकिन कई लोग आजकल बहुत सारे जानवरों को घर में पालते हैं, उन जानवरों के सखियों बाल झड़ते हैं, उन्हें अपने सोफे पे बिठा लेते हैं, उन्हें अपने किचन में भी अलाउ कर रखा है। तो ये जो जानवर हमारे घर में इस तरह से घूमते हैं, जब हमारे घर में दूसरे मेहमान आते हैं तो उनको उनसे एलर्जी भी हो सकती है, तो हमें थोड़ी सी ये सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर हमेशा से ही जानवरों को घर के बाहर आंगन में बांधने का प्रावधान भी इसीलिए है ताकि हम और हमारा परिवार किसी भी बीमारी से, किसी भी संकट से जूझे नहीं, हम सुरक्षित रहें, जानवरों को प्रेम भी करें और सुरक्षित भी रहें। सखियों जब हम जानवर घर में पालते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो कीड़े मारने की दवाई भी उन्हें समय समय पर देनी चाहिए और जानवरों को छूने के बाद में उनके मलमूत्र की सफाई भी बहुत ध्यान से करनी चाहिए और अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। घर में कीटनाशकों और जहरीले पौधों को और दवाओं को जानवरों से दूर रखना चाहिए। कई बार जानवर खा लेते हैं, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। सखियों पशुओं को घर के अंदर नहीं रखें, हमें हमेशा बाहर खुली हवा में रखना चाहिए। जानवरों के लिए हमें घर बाहर ही बना देने चाहिए क्योंकि जानवर के जब बाल वगैरह झड़ते हैं तो हमारे खाने में आते हैं तो हमें एलर्जी हो सकती है, हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं। सखियों कई लोग जानवरों से बहुत ज्यादा लाड़ लड़ाते हैं, जानवर उन्हें चाटते रहते हैं। अपने पशु को ऐसी ट्रेनिंग दे कि वो चाहे कुछ भी हो जाए आपको चाटे नहीं, क्योंकि सखियों आपको पता होना चाहिए कि बीमारियां काटने से नहीं जानवरों के लार में होती है। जैसे रेबीज जैसी बीमारी जानवरों के उसके जो वायरस होते हैं वो जानवरों के लार में होते हैं और अगर आपको कहीं छोटा सा भी कट लगा हुआ है और जानवर ने आपको वहां चाट लिया या जानवर ने खुद ने ही आपको खरोंच लिया और वहीं पे उसने चाट लिया तो भी आपको रेबीज हो सकता है। तो इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखें और छोटे बच्चों को कभी भी जानवरों के साथ में अकेला ना छोड़ें क्योंकि छोटे बच्चों के कारण से या छोटे बच्चे कभी उनको मार दें, कर दें या कुछ भी स्थिति हो जाए, कभी भी जानवर, कोई भी जानवर हो, इवन गाय भी क्यों ना हो, कोई भी जानवर किसी भी कारण से कभी भी हिंसक हो सकता है। वो अपनी बात, अपनी पीड़ा को बता नहीं सकता, उस ऐसी स्थिति में अगर वो हिंसक हो जाता है तो आपके बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। तो आप ये चीज का ध्यान रखें कि अपने छोटे बच्चों को अकेले जानवरों के साथ ना छोड़ें। और सखियों आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारे वेदों पुराणों संस्कृति में जीव मात्र के प्रति प्रेम और दया का भाव है लेकिन जानवरों को बाहर रखने की ही सलाह दी गई है। और सखियों हमारे पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की हमेशा से ही बनती रही है हमारे घरों में और इसका कारण भी यही है कि कोई भी जानवर भूखा ना रहे। सखियों आजकल कुत्तों को बहुत लोग जो है गली के अंदर बिस्किट देते हैं और ये जो बिस्किट होते हैं उनमें मैदा, शुगर, इस तरह की चीजें होती है, घी होता है, ये जानवरों को हजम नहीं होता, उससे उनकी इम्यून सिस्टम जो है कमजोर हो जाता है और उनमें बीमारियां जल्दी लग जाती है। इसीलिए गली के जो कुत्ते होते हैं उनमें जल्दी रेबीज की बीमारी लगती है। और सखियों रेबीज का टीका अगर आपने अपने घर के कुत्तों को लगवा भी रखा है तब भी अगर आपको वो खरोंच ले या आपको काट ले तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जहां पर भी काटा गया है, खरोंचा गया है, वहां पर कम से कम 15 मिनट तक आप साबुन से अपने उस

उसी स्थान को साफ करें और फिर डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करें। क्योंकि अगर आपने अपने कुत्ते को टीका लगवा भी दिया है तो आप ये मत समझिए कि कभी आपको वो बीमारी हो नहीं सकती, आपके कुत्ते में वो जर्म्स डेवलप नहीं हो सकते, वायरस डेवलप नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है या कोई ऐसी स्थिति में आपका कुत्ता है, आपका कोई जानवर है, तो उसके अंदर रेबीज के वायरस तब भी आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल सावधान और सतर्क रहें, जितना हो सके इन जानवरों को प्रेम तो करें, उनकी देखभाल करें, लेकिन इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि सावधान रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। तो सखियों, बातें हमारी यूं ही जारी रहेंगी। फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे जानवरों के बारे में, हमारे पालतू पशुओं के बारे में, तो क्यों कैसे भूल जाते हैं हम उन गुनगुनाती हुई चिड़ियों को, तोतों को, जो हमारे घर के बाहर गुनगुनाते रहते हैं, हमारे गार्डन को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करते हैं। तो बातें हमारी यूं ही जारी रहेंगी। फिलहाल सुनवाते हैं आपको एक खूबसूरत सा गीत।

सखियों चलते चलते फिर आपसे यही निवेदन कि अपने घर में आप जानवरों को पालें, गैया पालें आप, भैंस पालें आप, बकरी पालें आप, कुछ लोग कुत्ता पालते हैं तो चलिए कुत्ता भी पालिए, लेकिन सावधान रहें, सतर्क रहें। जानवर चाहे कोई सा भी हो, कभी भी किसी भी स्थिति में आप समझ नहीं सकते। कई बार हम जैसे हमारे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, झपट्टा मार देते हैं हमारे ऊपर, वैसे ही जानवर भी कभी भी किसी भी वजह से हिंसक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों को उनसे थोड़ा सा दूर रखें और जानवरों को ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो आपको लार से भिगोए नहीं, आपको चाटे नहीं। तो सखियों अपनी आपको सुरक्षित रखिए और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए अपनी सखी मीनाक्षी शर्मा को इजाज़त, क्योंकि घड़ी की सुइयां कह रही है हमें आपसे कहनी होगी टाटा बाय बाय।

0: अभी बहनें सुन रही थीं उनका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 10 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
2: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी न मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा।

वो उस अंधेरे की आदि थी। वो इसे जानती थी, वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहाँ तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहाँ लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल, अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करती। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती, किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी।

होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थी। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहते नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहां मुँह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती।

नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती।

मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। फिकिरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण की स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें, चंदा ने हुंकारा भरा। हाँ, ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरो सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों

वह हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। कैसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाट बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमने

मनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी की इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फली रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा तो चंदा के बिना आकाश कैसा। वे प्रेम में थे या उनके साथ पूरी

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां।

सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थी। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब? कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझ कर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है, उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा, याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं, उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते, नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी, उनकी बातें नदी में गिरती रहती।

0: नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती, वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रातें

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वहीं ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहाँ से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करते रहे। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वही दोनों लहूलुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं? वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई माँ अपनी बेटी को ये किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा।

बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी वहीं से, जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी

ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता, उसमें सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रही फिर कहानी में लौट आई जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूं। नानी ने कहा,
उर्वशी ने बहुत ही सुंदर

और सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी, उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राज काज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने

लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ी पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उग आता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर

0: आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देखकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था कलाबाज। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

फिल्म लवर्स का दो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के हैं, रचना आनंद बख्शी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खय्याम साहब की संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की, फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो

0: आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे रविंद्र जैन। इस गाने के साथ ही आज का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बारिश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो चिलचिलाती गर्मी से हमें राहत दिलाता है और ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से एक बहुत ही मनमोहक और सौंधी खुशबू आने लगती है। आसमान में काले काले बादल छाते ही मन हर्षित हो जाता है ना? और ये बादल तो हमेशा ही मानो मन में कल्पना जगाते हैं, प्रेम और उमंग जताते रहे हैं। चाहे वो नीले आसमान में तैरते रुई जैसे गोले हों, या सावन के गहरे उमड़ते घुमड़ते बादल या काली घटाएं, ये सभी हमारे मन को बहुत लुभाती हैं। हमारे ही मन को क्यों, हमारे फिल्मकार, हमारे गीतकार इससे अछूते थोड़ी ही रहे हैं। वो भी इन काले बादलों पर अपना मन हार बैठते हैं और अपनी फिल्मों में या अपने गीतों में

तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कारे बद्रा पर आधारित कुछ फिल्मी गाने। और जब बात कारे बद्रा की चले और फिल्म भाभी का गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये फिल्म थी भाभी, 1957 की फिल्म है और लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार चित्रगुप्त थे, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और एक भावुक और बहुत ही मधुर गीत लिखा गया और इस गाने में अभिनेत्री श्यामा ने बहुत ही शानदार अभिनय किया था।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में लिया है। 1953 की फिल्म है शिकस्त, संगीत शंकर जयकिशन का था। और सबसे बड़ी बात कि ये भी वर्षा के मौसम और प्रियतम की याद में जो गीत गाए गए, जो गीत लिखे गए।

इन बादलों ने हमेशा प्रकृति प्रेमी को लुभाया है। हमारे गीतकार, हमारे फिल्मकारों ने तो इनका वर्णन किया ही है, लेकिन जो हमारे महान साहित्यकार हुए हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, महान छायावादी कवि, उन्होंने भी बादलों के घूमने और उनके सौंदर्य पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। गिर रहे घूमकर आसमान में, भर रहे गर्जन गंभीर, शून्य में उड़ते विहग अब लौट चले अपने कुटीर। यानी ये काले बादलों के भव्य, शांत और गंभीर रूप का उन्होंने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। तो ऐसी ही एक फिल्म है, 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के, और इस फिल्म का गीत है जारे जारे कारे बदरा। बहुत ही खूबसूरत गीत, हमें बेहद पसंद आता है, आप सभी को भी पसंद आता है। लता मंगेशकर की आवाज है और नंदा और जितेंद्र पर इस गीत को फिल्माया गया है, और ये गीत बादलों को संबोधित करके अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बहुत ही मशहूर है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में, खासतौर से हिंदी फिल्मों की ही बात चल रही है, बादल एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। कभी ये दूर रहने वाले प्रियतम को संदेश पहुंचाने वाले दूत का प्रतीक होते हैं, तो कभी किसी बिछड़े प्रेमी के गहरे दुख को दर्शाते हैं। कभी प्रेमिका के घने लहराते बालों की तुलना आकाश के काले भूरे बादलों से हम करते हैं, तो कभी कुछ और। ये बादल अशांत, चंचल, शरारती और कभी कभी निर्मम भी हो जाते हैं, और बहुत सारे गीतों में इनको याद किया जाता है, कभी बादल के रूप में, कभी बदरा के रूप में, कभी घटा के रूप में, कभी मेघा के रूप में, अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाव वही होता है कि हम जब किसी को याद करते हैं तो लगता है कि ये बादल शायद हमारे लिए मेघदूत का काम करेंगे। एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है। आशा भोंसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। ये फिल्म है धूल का फूल।

दोस्तों, बादल केवल बारिश का पानी ही नहीं लाते हैं, बल्कि ये आसमान के कैनवास पर प्रकृति द्वारा उकेरी गई एक ऐसी कविता होती है जो पल पल अपना रंग और रूप बदलती रहती है। बादल हमें कभी किसी रूप में नजर आते हैं, कभी किसी आकृति में, और हम जब बादलों को बहुत ही गौर से देखते हैं तो न जाने कैसी कैसी सुंदर आकृतियां बन जाती हैं, है ना। तो चलिए फिल्म दिल दे के देखो, जो कि 1959 की फिल्म है, उसका एक सदाबहार गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बेहद रोमांटिक और मनमोहक गीत है। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार उषा खन्ना हैं। और इस गाने में बारिश के मौसम की प्राकृतिक सुंदरता और नायिका की भावनाओं के बीच का संबंध गीतकार ने लिखा है। यानी बोल जैसे हैं, मेघारे बोले घनन घनन और पवन चले सनन सनन, यानी बारिश के आने और ठंडी हवाओं के चलने का वर्णन गीतकार ने बहुत ही शानदार तरीके से इस गीत में किया है, जो वातावरण में एक मादक और खुशनुमा माहौल पैदा कर देते हैं। और जैसे ही मौसम सुहावना होता है, नायिका का मन जियारा मोरा डोले अपने प्रियतम के लिए पुकारता है और उसका जिया मचलने लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये गीत नायिका के उस मनभावन इंतजार और अपने प्रेमी के प्रति उमड़ते प्यार को दर्शाने वाला बहुत ही प्यारा गीत है, जो बारिश के मौसम में और गहरे काले बादल के छा जाने पर ये गीत भी उतना ही गहरा हो जाता है।

तो आज हमने उन गीतों को लिया जो हमें भी मोह लेते हैं और हमारे गीतकारों को भी, यानी आसमान में छाए कारे बदरा। तो कार्यक्रम के अंत में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म बहाना का गीत जारी बदरा बैरीजा। एक बेहद खूबसूरत और भावुक विरह गीत है ये, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है और आवाज यानी मधुर आवाज लता मंगेशकर की। और इस गीत में नायिका बादलों से बात कर रही है और अपने प्रीतम के लिए, अपने सांवरिया के लिए अपनी तड़प बता रही है, अपने इंतजार को बता रही है। और नायिका बादलों को अपना दुश्मन कहती है और कहती है क्योंकि सावन का मौसम और बादलों की गड़गड़ाहट उसके अकेलेपन को, उसके विरह को और बढ़ा रही है। और ऐसे में वो बादलों को कोसने के साथ साथ उनसे विनती भी करती है कि वे उसके प्रियतम के पास जाएं और उनकी कोई खबर या संदेश लेकर आएं। तो वो कहती भी है कि पिया के दर्शन के बिना उसका मन तड़प रहा है, पी के दरस को जियरा तरसे, और उसका इंतजार यानी उसकी आंखें थक गई है, बाट तकत मोरी हारी नजरिया। बहुत ही खूबसूरत गीत उनके भावों के साथ नायिका के, जो कि बादलों के जरिए अपने प्रिय के पास अपना प्रेम संदेश और अपने रो रो कर बीते दिनों का हाल अपने साजन तक पहुंचाना चाहती है। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

आज का मैटिनी शो। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा

0: और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर लिस्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे महान गीतकार पंडित भरत व्यास को। दो आंखें बारह हाथ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रही हैं। आवाज लता मंगेशकर की, पंडित भरत व्यास की बोल और वसंत देसाई का संगीत।

0: मीना कपूर की आवाज को अभी आपने फिल्म आंखें में सुना। पंडित भरत व्यास की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। पंडित भरत व्यास की रचना को संगीत में ढाला है वसंत देसाई ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़। आवाज लता मंगेशकर की और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन डी थ्री, ओमेगा थ्री, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पंडित शिवराम के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना सुनिए। गायिका है सुमन कल्याणपुर और ये फिल्म है कण कण में भगवान।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल सुनिए। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।

हटना टपट पन भटना घेर घूम घटना छेड़ झट जाने दो पेट मुहे भैर देर निरखत समाज तुहे आए ना लाज तुहे दगाबाज दगाबाज धक धक धक धक धक धड़के जिया थर थर थर थर थर कांप गया थर थक सकिया हट जा हट जा हट जा

गोरी गोरी गोरी गोरी कमल किशोरी चंचल चकोरी एक गांव की छोरी मैं हूं नवल नवेली अलबेली नार समझाए थके पहे बार बार मन छुई मुई करू कान जतन छूते ही हाथ कुमलाए बद मेरा तन मुरारी मत छू मत छू मत छू

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं आया। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एसएन त्रिपाठी की संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंगुलीमाल। रचनाकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार हैं अनिल विश्वास।

0: उसी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार।

0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज फिल्म का नाम भक्त प्रहलाद, गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीत दिया है बी एन बाली ने।

कार्यक्रम का अगला गीत वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, स्वर है मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और साथियों की, और ये फिल्म है भरत मिलाप।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज में फिल्म गृहलक्ष्मी का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं अविनाश व्यास।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गाना। पंडित भरत व्यास की बोलों को संगीत में ढाला है सतीश भाटिया ने।
1: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में ये पंडित भरत व्यास की अंतिम रचना। इस कार्यक्रम की आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, और ये फिल्म का नाम है चा चा चा।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने पंडित भरत व्यास को याद किया था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंच गए हैं। वे अब से कुछ देर बाद 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विदेश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं, जोधपुर रिंग रोड के एक हिस्से सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ये नया टर्मिनल भवन हर साल 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि योजना से अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा तथा 100 नए हवाई अड्डों और 20 हेलीपोर्ट का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 4 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा और राजस्थान में विमानन क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।
2: आप अभी देख रहे हैं उदयपुर में नया टर्मिनल अभी बनने के लिए तैयार है। कोटा में एक नया टर्मिनल हम एयरपोर्ट ही बना रहे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे और काफी श्री गंगानगर है। जैसे हमने राज्य सरकार से भी काफी चर्चा की कि बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं राजस्थान में जहाँ पे नए एयरपोर्ट की संभावना है, तो वो सबको भी आगे 10 साल में किस तरह से उसको भी सच करें, किस तरह से वहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाए, उस पर भी एक तो कोशिश हमारी चलती रही।
1: सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हो रहे हैं।

0: शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप आधुनिक प्रभावी और नागरिक केंद्रित विधिक व्यवस्था के निर्माण पर विचार विमर्श होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। इन सभी को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ, भर्ती, हथियारों की आपूर्ति और हमलों की योजना बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्तता के कारण आतंकवादी घोषित किया गया है। यूपीए अधिनियम में संशोधन के तहत केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया है। संशोधन लागू होने के बाद से सरकार ने 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। राजस्थान पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। 16 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के पहले ही दिन प्रदेश भर में 18,477 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 7,104, तेज गति से वाहन चलाने वाले 5,000 से अधिक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं अवैध पार्किंग करने वाले और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: facebook.com/vbsmumbai पर जाकर जिन्होंने अपने विचार लिख दिए हैं वे तो समझ ही गए हैं कि आज का विषय गजलें हैं और आज हमने क्या टेक्स्ट आपके लिए लिखा है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज का टेक्स्ट है, हमारी फिल्मों में गजलें केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने का सशक्त माध्यम रही हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। जब संवाद नाकाफी होते हैं तब गजलें अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को गहराई से पर्दे पर उतारती है। तो आज सुरीला सफर इन्हीं बेहतरीन पुरानी गजलों के साथ, बताइए आज कौन कौन सी चुनिंदा गजल आपके लिए पेश है। पेशी खिदमत है कार्यक्रम की ये पहली गजल। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय गजल जानकर मुझे गीतकार गोपाल दास नीरज की पंक्तियां याद आ रही हैं। लोग लिखते हैं अखबारों में छपने के लिए, हम लोगों के दिलों पर गजल लिखते हैं। बहुत खूब। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सुनने वाले के दिल पर गीत से ज्यादा गजल का असर होता है। कभी कभी कोई बात पूरा गीत नहीं समझा सकती तो गजल का एक शेर समझा देता है। एक ही बात को कहने का हर शायर का तरीका अलग अलग होता है। जहां महबूब की तारीफ में गालिब कहते हैं कि वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, वहीं मीर तकी मीर कहते हैं, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसके जुल्फ के सब असीर हुए। क्या खूब, बहुत सुंदर। फिल्मों में साहिर, शकील, हसरत, कैफे आजमी ने अपने गजलों के माध्यम से खूब वाहवाही बटोरी है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल शब्द अरबी भाषा के गजाल शब्द से बना है, जिसका अर्थ हिरण होता है। काव्य के संदर्भ में जब हिरण शेर के डर से भागता है तो अंत गिर जाने पर उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गजल कहा जाता है। आपके दिए गए पैराग्राफ के आधार पर गजल का निर्माण संगीत, शायरी और भावुकता के अनूठे संगम से होता है, जो अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तप और आध्यात्मिक प्रश्नों जैसी गहरे मानवीय जज्बातों को शब्दों में पिरोने से बनती है। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी नगमों में शायरी और गजलों का एक बेहद खास और गहरा इतिहास रहा है। फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों के जज्बातों को गहराई देने के लिए कई मशहूर गजलों को बेहतरीन गानों के रूप में पेश किया गया है। हिंदी फिल्मों की कुछ सबसे सदाबहार और मशहूर गजल फिल्म अर्थ है और जगजीत सिंह इस गजल से फिल्म जगत में एक अलग मुकाम बनाते हैं। गिटार और सारंगी के बेहतरीन इस्तेमाल ने इस गजल को सुकून भरा नगमा बना दिया है और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल क्या है, दो मिश्रों में जज्बात की जगमगाहट या बेसिर

पैर की बातें। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें रब नहीं होता, मगर शायरों का मानना है कि इसमें जिंदगी होती है। मिर्जा गालिब के जमाने से पहले शुरू हुआ गजलों का दौर हमारे भारतीय फिल्मों में आज तक चल रहा है। फिल्मी गीतकार शकील बदायूनी, मजरूह, राजा मेहदी अली खान, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी जैसे लोग लिखते हैं। हमारे फिल्मी संगीतकार ने बहुत ही मधुर धुनें बनाई इनके साथ, खासकर नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खय्याम साहब, मुझे तो खासकर लता मंगेशकर जी और जगजीत सिंह की सभी गजलें जो उन्होंने फिल्मों में गाई बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, हमारे सवाल जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, हमारे सवाल हैं हमेशा की तरह दो। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो सवाल हम आपसे करेंगे, जब आप उनका जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी गजल को आप पसंद कर रहे हैं, वैसे तो आपको जो गीत पसंद है वो सर आंखों पर, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन आज हमने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में वो गजलें चुनी हैं जिसमें 5 शेर हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण है और प्रत्येक शेर का अंत रदीफ यानी वाक्यांश शब्द यानी वाक्यांश से होता है और जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द या वाक्यांश से होता है और काफिया और जो रदीफ ही वही मिलकर जो है इस गजल को बनाते हैं, है ना, शेरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की गजल आप हमें बताएं जो आप पसंद करते हैं। बहरहाल मैं आपको आज के सवाल बता देती हूँ। हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत उर्दू में भी लिखे। हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने उनका नाम लिख भी दिया है गीतकारों का, लेकिन फिर भी आपकी नजर में ऐसे कौन से गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मी गीत लिखे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी, बस उन गीतकारों का नाम लिखना है। और हाँ, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारे जो फिल्मी गजलें हैं उनकी कुछ खास पंक्तियां जिसने आपको, आपके दिल को झकझोर दिया हो, आपको पसंद हो, उसका जिक्र करें, यानी वो दो पंक्तियां हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मुझे ये पंक्तियां बेहद पसंद है जो अभी आपने फिल्म अदालत की सुनी थी कि मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है, अब आप ही की खुशी से कांटों में सो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। आपको इस तरह की कौन सी पंक्तियां पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी का संगीत, बहादुर शाह जफर की रचना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म का नाम लाल किला।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आइए मित्रों चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में। आज गजलों पर बात होगी, शायरों, गीतकारों और संगीतकारों ने कैसे गजल पर अपनी कलम चलाई, कैसे संगीत बजाया और किन कलाकारों ने अपनी आवाज से गजलों में रंग भरा, यही इस सफर में आज रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उर्दू भाषा को तहजीब और अदब का प्रतीक माना गया है। उर्दू संस्कारों के इस गुलशन में गजल को सबसे मुकम्मल स्थान हासिल है। दिल तक असर करने वाले मखमली शब्दों से सजी गीत की विधा देश के हिंदी सिनेमा जगत को सराबोर किए हुए है। एक से एक बेहतरीन उर्दू गजलें हिंदी फिल्मों में पेश की गई है। किस तरह की कैसी गजलों ने मुंबईया फिल्म जगत को अपना सुहावना एहसास दिया है, इन पर प्रकाश डालने से पहले गजल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। गजल का मतलब प्रारंभिक शेर और दोहा में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं होता। यदि कोई फर्क है तो यही कि मतला कई बहरों में लिखा जाता है और दोहा एक छंद में ही। मतला और दोहा दोनों ही दो मिसरों यानी पंक्तियों से बनते हैं और गंभीर से गंभीर विचार को संक्षिप्त भाव में कहने का भाव रखते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत तरीके से गजल को समझाया है कि क्या है गजल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई है। गजल के हर शब्द में बहुत ही गहराई होती है, भावों से परिपूर्ण होते हैं। मैं तो इस सफर में गजल फिल्म नायक सुनील दत्त जी और मीना कुमारी जी की गजल सुन रंग और नूर की सौगात किसे पेश करूं, मन में उतर जाती है और हर शब्द मोहम्मद रफी साहब की नूरानी आवाज भी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल भावनाओं की सबसे कोमल और गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम की मधुरता है, मोहब्बत की गहराई है, विधा की कसक है, दर्द की सच्चाई और अंतर्मन की अनकही पीड़ा। संगीत भावुकता और शब्दों की सुंदर लय से सजी गजल सीधे हृदय को स्पर्श करती है। गजल केवल पढ़ी या सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये मन की उन भावनाओं का दर्पण है जिन्हें अक्सर कह पाना संभव नहीं होता। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलें जो हैं फिल्मों में केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने के लिए रखी जाती हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही निराला होता है और उन गजलों के बीच शायरी तो जैसे सोने पर सुहागे का काम करती है जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। गजलों में अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा जाता है कि मानो वो हमारे ही मन का हाल बयां कर रही हो। तो आज का सुरीला सफर उन्हीं बेहतरीन गजलों से भरा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप गजलों को इतना पसंद करते हैं और इतनी गहराई से अपने जज्बात पेश कर रहे हैं। हमारे वो श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, वो तुरंत हमें ज्वाइन करें। www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो हमारे परिवार का, विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं मिर्जा गालिब फिल्म की गजल आवाज सुरैया की। रचनाकार मिर्जा गालिब और गुलाम मोहम्मद साहब का, यानी गुलाम मोहम्मद साहब का ये संगीत है।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा, जब तक फिल्मों में गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब का उल्लेख या कोई भी गजल न लिखी जाए तो शायद गजल को सुनने या गजल गायकी की जानकारी में कमी है, ये कहा जा सकता है। माफ करें, मेरे विचार इस मामले में अलग हैं। तलत साहब गजलों और फिल्मी गजलों के बादशाह हैं और शायद ही किसी श्रोता ने उन्हें यहाँ याद किया है। गजलों पर 10-12 कमेंट छाप दिए गए हैं बिना सोचे समझे, लेकिन गजल को किसी ने भी महसूस किया है वो नहीं दिख रहा। आज तलत साहब की गजलें शामिल होंगी, यही उम्मीद है। बिल्कुल होंगी, आप कार्यक्रम को सुनते रहिए। और आपने बिल्कुल सही लिखा कि जब गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब को याद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर मुझे लगता है कि गजलें वाकई में हमारे संगीत का एक अभिन्न अंग है। जो सुरीला सफर में आज के शब्दों पर गाने होंगे वो जरूरी दिल को छू जाएंगे। गजलें तो जैसे हमारे दिल की धड़कने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छत पर धूप का एक टुकड़ा फैला था और रिकॉर्ड प्लेयर पर लता जी की आवाज में गजल अपने ही पूरे शबाब के साथ फिजाओं में तैरती है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गजल सुनकर कोई गहरी संवेदना मन को छूती है, ऐसे लगता है हवाओं से कोई आहट कर मन को सहला रही है। गजल की दुनिया बहुत बड़ी है, गजल ने अपने चाहने वालों के दिलों में एक सुंदर संसार रचा है, भावनाओं का खूबसूरत संसार बुना है गजल ने, तभी तो ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जीवन की हर उदासी में, हौसले में, विश्वास में इन गजलों ने कुछ सीली सी आवाज में समझाइश दी है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक। वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही क्लासिक तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संभावित शब्द आपने लिखे हैं। अरे जब मैंने खासतौर से ये कोशिश की कि हम अपनी इबारत में शब्द कम लिखें और ऐसा टेक्स्ट लिखें जिसे आप समझ पाए, तो आप अपने शब्द लेकर हमारे सामने आते हैं। चलिए, आपके शब्द हैं गजलें, जज्बात, दिलों को शायरी, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प। बिल्कुल, जहां गजल है वहां ये भाव होते ही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजलों के लिए एक प्यारी सी बात, गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। हर शेर किसी न किसी दिल की कहानी कह जाता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि संगीत की सृजनात्मक श्रृंखला में पुनः बिखरे मोतियों को एकत्रित कर नई माला में पिरोकर सफर को नई मनोरंजक दिशा प्रदान करती हुई इबारत है आज की। गजल मन को स्पर्श कर दिलों को झंकृत करती है, कहीं प्रेममय दिलों के तारों को छेड़ती है तो कहीं टूटे दिलों के जख्मों पर मरहम का काम करती है। गति धीमी मगर असर गहरी करने में गजल दिलों को

वो मंजिल प्रदान करती हैं जिसकी तलाश में तन्हा दिल हसरतें रखता है। गजलों में सुरीला सफर गुजारने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही गहराई से अपनी इबारत हम तक पहुँचाई है। तो हमारे सवाल आपको याद है ना, हमने आपसे पूछा था कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उतने ही निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि फिल्मी गजलों में कुछ खास पंक्तियां जो आपके दिल को छू गई हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं आप। और अब पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। फिल्म का नाम है ममता, गायिका लता मंगेशकर, इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म ममता की ये गजल सुनी। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत

0: केवल एक लेख नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास की एक सच्ची समझ है। ये लेख सिनेमा और शायरी के गहरे रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लेखक ने इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि गजलें फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि किरदारों की खामोश जुबां होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर गजलों के साथ है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैं तो सिर्फ दर्द दिल की बात सुनाता हूँ। हिंदी फिल्मों में बहुत सी गीत ऐसे हैं जिनका मूल रूप उर्दू रूप थोड़ा सा अलग होता है। मिर्जा गालिब जाने माने गजलकार हैं। साहिर, लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी, ऐसे बहुत से शायरों ने अपनी गजलें फिल्मों के लिए दी हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, ये मेरी सबसे प्यारी गजल है। आज के सुरीला सफर में इस गजल को शामिल करने की मैं मंदाकिनी से प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो मेरा दिल इस प्रोग्राम में नहीं लगेगा। अरे, हमने तो इस फिल्म की दूसरी गजल आपको सुनवाई और हम उम्मीद करते हैं वो गजल आपको पसंद आई होगी। न किसी की आंख का नूर हूँ, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल दिल के भावों को, दुख और प्रेम को बयां करती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज सुरीला सफर में गजलों की बारिश होगी। फिल्मी और गैर फिल्मी गजल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिल्मों में गजल के माध्यम से अंतर्मन के सभी उद्गारों को व्यक्त करता है। शांत वातावरण में गजल को सुनने का एक अलग ही मजा है। बाकी आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजल सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर के रात के सन्नाटे में और भी सुकून मिलता है। गजल का नाम लेते ही पहला नाम जगजीत सिंह जी का आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक लोकप्रिय काव्य और संगीत शैली गायन शैली यानी गजल, जो स्वतंत्र दोहों की लयबद्ध तुकबंदी होती है, दोहराए जाने वाले भाव, मीने शब्दों की अदृश्य श्रृंखला यानी गजल, जिसे जादुई आवाज, शब्द उच्चारण और बेमिसाल स्वाभाविक अदायगी से अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत अभिजात गजलें दिखाई देती हैं जिसका जिक्र करें समझ में नहीं आता। एक बात सच है कि आज हमें लता जी, आशा जी, रफी जी के साथ तलत महमूद, पंकज उदास, हरिहरन, गुलाम अली जैसे बहुत सारे कलाकारों की शायद आवाजें सुनाई देने वाली हैं। और आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज गजलों की विदा पर प्रोग्राम लेकर आ रही है बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। जो गजल भूली बिसरी यादों में है सुनने को मिलेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी अपनी पसंद की गजल हम तो हैं, पर देश में निकला होगा चांद। अच्छा, ये गजल आपको बेहद पसंद है जो अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाती है, ये दौलत भी ले लू वाली। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गजलें सुनने को मिलने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, आप इतनी गहराई के साथ अपनी इबारत पेश कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना है, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम पतिता यानी पतिता फिल्म की ये गजल
1: है। सबसे

तलत महमूद की आवाज थी और फिल्म का नाम था पतिता। और दोस्तों, ये शुद्ध हिंदुस्तानी गजल जिसमें उर्दू का कोई अंश नहीं था, आपने अगर इसको ध्यान से सुना होगा तो महसूस भी किया होगा। और शैलेंद्र सबसे जटिल अवधारणाओं को जो कि सरलतम भाषा में व्यक्त करने में माहिर थे, उन्होंने मतलब जटिल से जटिल बात को वो कितने सरल शब्दों में कहते थे, इस गजल में हमें नजर आता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी ये जो कविता है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वो लिखते हैं हमारे सबसे मधुर गीत में है वो जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुरों में गाते हैं। तो ये गीत एक ऐसे साथी को सांत्वना और दिलासा देता है जिसने बहुत दुख झेला है और जिसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे प्यार का दूसरा मौका मिला है, है ना। तो देखिए ना कितना सुंदर तरीके से शैलेंद्र ने इस गजल को रचा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। और हाँ, हम अब आपके जो उत्तर है उसका इंतजार कर रहे हैं। आज आपने उत्तर देने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गजल वो पसंद करें जो हमारे नियमों का पालन कर रही है, हमारे यानी गजलों के नियमों का पालन कर रही है। कोशिश कीजिए जानने की, समझने की उस गहराई को कि आखिर कोई गीत गजल कब कहलाया जाता है। आइए सुनते हैं नक्श लायलपुरी की रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम दिल की राहें।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं कि फिल्मी गजलों के अलावा भी गैर फिल्मी गजल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलहत अजीज की गायी जो गजलें हैं हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि गजलों के बादशाह मदन मोहन पहले नंबर पर ही आई, लता मंगेशकर, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, यूं हसरतों के दाग, ये गजल बहुत ही पसंद थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर छेड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह क्या शुरुआत है, आनंद को बयां करना मुश्किल है आज, मदन मोहन फिल्मी गजल में उनका कोई सानी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तलत साहब का गाया हुआ ये गम है दिल क्या करूं और ये क्या जगह है दोस्तों, गजल बहुत पसंद है। वहीं हमारा एक सवाल था कि जो अधिकांश हिंदी गीतकार हैं वो कौन कौन है जिन्होंने उर्दू में भी लिखा है। हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, बहुत खूब। और एक श्रोता लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, लताजी, तलत अजीज की आवाज बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार और जावेद अख्तर साहब इस श्रेणी में आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा करते थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गुलाम अली साहब की पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बड़ी बारीकियां सजोई है आज के कार्यक्रम में, गजलों के रदीफ काफिया मिसरा गजब है आज का कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान, ये सभी हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1837 से 1857 तक शासन करने वाले भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, इनके जो गजल है वो इन्हें बहुत पसंद है। वहीं राजेंद्र कृष्ण और साहिर लुधियानवी को लोग हिंदी और उर्दू में ज्यादा पसंद करते हैं। और न किसी की आंख का नूर हूँ इस गजल को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वो कह रहे हैं कि ये गजल हमारे दिल के बहुत करीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, निदा फाजली, जावेद अख्तर और गुलजार साहब इस श्रेणी के गीतकार हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ये जो बोल है वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं

एक श्रोता लिखते हैं कि एक गैर फिल्मी गजल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गजल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गजल न किसी की आंख का नूर हूँ, ये बहुत ही प्यारी गजल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आई सुनते हैं आरजू फिल्म की ये गजल, आवाज तलत महमूद साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, अनिल बिस्वास का संगीत।

तलत महमूद को अभी आपने सुना फिल्म आरजू में। हम आपको बता दें ये 1950 की फिल्म थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद आती है। साथ ही तुमको देखा तो ये ख्याल आया और दिखाई दिए यूं कि खुद बेखुद किया, ये पंक्ति इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल आज शायर है गम एक नगमा, ये पंक्तियां हमें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बेकरारी का आलम न पूछे महोदया, कार्यक्रम सुनने के लिए हमने क्या क्या किया। अरे वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई ही गई, गजल के हर शब्द में बहुत गहराई होती है और आपने एक गजल का जिक्र किया है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की बड़ी आरजू थी मुलाकात की, चंदन दास की ये जो गजल गैर फिल्मी गजल है ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भरत व्यास के सुमधुर नायाब कर्णप्रिय गीतों से सजी आज की यादों की महफिल थी, ये कार्यक्रम भी हमें बेहद पसंद आया। एक श्रोता ने लिखा है कि गजल पहले विशिष्ट लोगों की महफिल में ही गाई जाती थी और आम जनता के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं थी, पर इसे सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय करने का काम जगजीत सिंह और पंकज उधास ने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं मंदाकिनी जी जहां फिल्मों की एल्बम में हम बात करें तो हमने लाइव ऑडिटोरियम में हमने सुना है, मतलब लाइव प्रोग्राम सुना है किसी ऑडिटोरियम में, और गजल के दीवानों के दिलों को सीधे छू लेता है। इसे सुनने का आनंद तब आता है जब हम एकांत में आंखें बंद करके सुनते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे गजलें अंतर्मन की पीड़ा तन्हाई और प्रेम को गहराई में उतार रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तलत महमूद की गाई सबसे प्रसिद्ध

सदाबहार गजल, फिर वही शाम वही गम, जो वो अपनी मखमली और थरथराती आवाज में गाते हैं, वो इन्हें बेहद पसंद आती है। इस तरह से हमारे श्रोता अपने अपने पसंद का जिक्र कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां आरा फिल्म की, तेरी आंख के आंसू पी जाए ऐ मेरी तकदीर, ऐसी मेरी तकदीर कहां, ये हमें बेहद पसंद आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिल्म गजल की ये गजल मैं आपको सुनवा रही हूं। बोल है नगमा और शेर की बारात किसे पेश करूं। और एक बात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अक्सर हम इस फिल्म का जो गीत है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, इसे हम गजल समझते हैं और हमारे कई श्रोताओं ने इसकी फरमाइश भी की है कि ये हम सुनना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये गजल नहीं है। अगर मतलब आपने कभी इसके बोलों पर ध्यान दिया हो तो आपको पता भी चलेगा कि ये दो पंक्तियों के छंदों में नहीं है, बल्कि इसका जो दूसरा गीत है नगमा और शेर की सौगात, जो मैं अब आपको सुनवाने वाली हूँ, हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गजल की शर्तों में आती है। ये गजल उस नियम, वो दायरा जो है गजल का, उसके अंतर्गत आती है। तो आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की लिखी ये गजल, फिल्म का नाम गजल, आवाज लता मंगेशकर की, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था गजल। और अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी के विचार, आप सभी की पसंद हमें जानने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अब अंत में हम ये बताना चाहेंगे, खासतौर से मैं, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस शायर की कौन सी पंक्ति आपको पसंद है, तो मैं कहूंगी बहादुर शाह जफर की पंक्तियां। मुझे आज भी

अंदर तक भिगो देती हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी ना मिली कुए यार में। इस पंक्ति को जब मैं पढ़ती हूँ, जानती हूँ, महसूस करती हूँ, तो आंखों से अश्रु अपने आप बह निकलते हैं। आपने भी अपने विचार रखे, अपने पसंद की पंक्तियां, अपने पसंद के गीतकारों का जिक्र किया, गजल क्या है आपने उसको महसूस किया। आज के इस कार्यक्रम को, इस सफर को महसूस करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम त्रिवेणी। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। बद्रा, ये शब्द सुनते ही मन में सावन की भीगी भीगी तस्वीर उभर आती है। आकाश में तैरते ये मेघ केवल जल की बूंदे नहीं लाते, बल्कि अपने साथ अनेक भावनाएं भी लेकर आते हैं। तपती धरती को शीतलता देना हो, सूखे खेतों को हरियाली से भरना हो, या फिर प्रकृति को नया जीवन देना हो, बद्रा हर बार अपनी अनोखी भूमिका निभाते हैं। दूर क्षितिज पर उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं किसी उत्सव की तैयारी कर रही हो। उनकी छाया में पेड़ पौधे झूम उठते हैं और हवाओं में एक अलग ही ताजगी घुल जाती है।

भारतीय साहित्य, संगीत और लोकगीतों में भी बद्रा का विशेष स्थान रहा है। कभी इन्हें प्रेम का संदेश वाहक माना गया तो कभी विरह की वेदना का साथी। गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों की सड़कों तक बद्रा का आगमन हर किसी के मन में एक नई उम्मीद जगा देता है। बच्चों के लिए ये कागज की नावों का मौसम होता है, किसानों के लिए समृद्धि का संकेत और कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। यही कारण है कि बरसात और बादलों का जिक्र आते ही मन अनायास ही गीतों और कविताओं की दुनिया में खो जाता है।

बद्रा हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन कितना आवश्यक है। जैसे सूने आकाश को बादल सजाते हैं, वैसे ही आशाएं और सपने जीवन को अर्थ देते हैं। वे आते हैं, बरसते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अपने पीछे ताजगी, हरियाली और यादों की एक लंबी श्रृंखला छोड़ जाते हैं। शायद यही वजह है कि हर वर्ष सावन के साथ लौटने वाले बद्रा केवल मौसम का हिस्सा नहीं लगते, बल्कि किसी पुराने मित्र की तरह प्रतीत होते हैं, जिनकी प्रतीक्षा पूरे वर्ष बनी रहती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी

0: राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के

0: अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को रब रब बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर

0: रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार पांचवें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी

तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोंसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टी

0: विटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
1: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार गीता दत्त और हेमंत कुमार, फिल्म का नाम डिटेक्टिव।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का 2 गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और मोहम्मद रफी हैं, शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

आशा भोसले की आवाज में अभी अपनी फिल्म फागुन का गीत सुना। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा था और ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत
0: मन चाहे गीत
1: मन चाहे गीत
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। ये हैं सदर नागपुर से कमल गोलचा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलचा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से। लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत काड़ेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायल का और मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं, आप सबने हमें खत लिखा है, ये है काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, हर्षेल रंभाड़े, वैष्णवी रंभाड़े, जानवी रंभाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं ये, इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का, और ये हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीर सागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की, गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
2: आज आकाशवाणी न्यूज के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो वक्त है उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एकेडमिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही हैज बीन द एकेडमिक इन इंग्लिश। कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज सीनियर मोस्ट टीचर रिटायर होने के बाद इसके साथ साथ वो उनका जो करियर रहा है, उनका जो प्रेजेंस रही है ऑन द लिटरेरी एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक साहब एक बड़ा ऐसा नाम है जिनका नाम सामने आते ही स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, लिटरेचर से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ विद ऑल रेस्पेक्ट लव फॉर प्रोफेसर शफी शौक साहब। तो आज हमारे स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर शौक साहब, हम मुख्तसरन हमारे जो लिसनर्स हैं हम आपकी जुबान से ही जानना चाहेंगे कि आप जिंदगी का सफर, एजुकेशन का सफर किस तरह से चला, यहाँ इस लैंडस्केप में आप एक ही बहुत ही आला मकाम पे आ गए, पद्मश्री अवार्डी आप हैं, इसको आप कैसे हमारे सामीन हमारे लिसनर्स को उन तक पहुँचाना चाहिए।
3: मेरी जिंदगी का, मेरे अदबी सफर का और मेरी तालीम का जो सफर है वो किसी खाते मुस्तकीम से नहीं चला, एक लीनियर प्रोग्रेशन से नहीं चला, बल्कि बहुत ही जिगजैग तरीके से करूँ और अपने जो मैंने सोचा था करूँ वो नहीं हुआ। पूरी नाकामियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन वही नाकामियां मेरी कामयाबी बन गई। ये अजीब इत्तेफाक है कि मसलन मैं स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने गया था घर से बाहर, लेकिन फिर बीएससी बायोलॉजी में किया, बायोलॉजिकल साइंसेस में, लेकिन वहाँ नाकामी ये हुई कि मेरा अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ ही एकदम बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए वो 3 साल का। फिर जो ही फारिग हुआ बीएससी से तो सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में मैंने एडमिशन ले लिया, कोई 1973 की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी के कुछ इम्तिहान पास किए हैं, फारसी में कुछ इधर उधर हाथ मारा, यानी कि कहीं एक सिमत में नहीं रहा। अंग्रेजी अदब पर्टिकुलरली मेरा चॉइसेस्ट फील्ड था। मैं साइंस में तालीम हासिल करते वक्त भी अंग्रेजी के बारे में लिखता रहा, अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता रहा या कश्मीरी से ट्रांसलेट करता रहा अंग्रेजी में, वो चीजें छपती रही, लेकिन साथ साथ बहुत सारी अजीब तरह की दिलचस्पियां रही। मैंने मसलन कश्मीरी जबान का पहला ग्रामर लिखा जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज में ही मैंने पहली बार एक जर्नल भी स्टार्ट किया, खुद ही अपने हाथ से कलम से लिखता था, उसका नाम था आश। और फिर लाल चौक में आकर शोपियान से अनंतनाग से लाल चौक में वो बेचता, उसे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट शुमारा छपता। लेकिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में रहकर

0: Because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children.
1: So, dear listeners, with this, the special program with Padma Shri, Professor Shafi Shauk concludes here. Khuda Hafiz.
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: दोस्तों आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती।
1: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
2: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मधमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
3: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सके।
2: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
4: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
5: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
4: ओह।

0: हमारे साथ ये यज्ञसेन अदलाबदली का व्यवहार कर रहा है। ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीरसेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक।
1: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी। उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: देखा
1: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: मालविका अब तू जा।
1: ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए। महाराज जी भर कर
2: मैं क्या पूछूं जी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
3: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका है महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
0: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
1: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है।

0: जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
1: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
2: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
0: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
3: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
0: दे, दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
3: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अब इसे अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
1: जो आज्ञा।
0: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
2: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
0: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि वैद्य ही अपने पास ही औषधि भी दे।
3: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
2: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
3: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: अब तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्य का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्य पुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
0: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहस सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया। मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवा की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सकें।
0: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: हम घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रानीवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय?
0: उपाय उपाय हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
1: हम उसे मालामाल कर देंगे।
0: बकुला वलिका, समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ
4: आर्य गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ
2: अरे मालविका, तुम आ गई।
5: दासी सेवा में उपस्थित है देवी, पांव में क्या बहुत कष्ट है?
2: ओह, इस दुष्ट गौतम के नटखट बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ, दोनों पांव में ऐसी चोट आई है।

0: मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
1: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
0: तो तुम बकुला बालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
1: जो आज्ञा।
0: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुँह मांगा पुरस्कार दूंगी।
2: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। तुम्हें देखे तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
3: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा।

0: रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा सह नहीं पा रहे हो क्या? ओह, ये प्रेम की पीड़ा, हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रूप। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं वो उतने ही कठोर होते हैं।
1: महाराज, तनिक धीरे से काम लीजिए। आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
0: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा। आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा?
1: चलिए झूला गृह की ओर।
0: झूला गृह की ओर?
1: हाँ हाँ, अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
0: हाँ, मान तो ली थी, परंतु
1: अरे कैसी अचरज की बात है कि...
0: क्या हुआ?
1: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे सादे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है?
0: क्या क्या मालिका आ रही है?
1: और क्या,
0: तो सब जवाब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
1: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
0: आहा, ये सीधे सादे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंडलता में इन्हें गिने फूल बचे रह गए हों।
1: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज?
0: मित्रों को ऐसा ही सुझा करता है। अरे मालिका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र, हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
1: लेकिन महाराज, अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
0: मित्र, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
2: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ दे तू मिलने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है और ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। तुझे यूं सताकर तुझे क्या मिल रहा है?
0: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने

0: अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है।
1: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायका बकुला वल्का उसके पास पहुंच गई।
0: अरे, ये बकुला वल्का साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
1: अरे,

0: के पास पहुंच गई।
1: अरे ये बगुला वलिका साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
0: अरे आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
1: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
0: और नहीं तो क्या आपके लिए?

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं। लो सखी, हृदय ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
1: वाह तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
0: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। हाँ
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
3: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप ही अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
2: मन चाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे निपुणिका, आर्यपुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
4: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे, आइए उन्हें ढूंढे।
0: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
4: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेमगुलता मंडप में बैठे।
0: अच्छा चल।
4: अरे ये क्या स्वामिनी?
0: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
4: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
0: अरे क्या कह रही है?
4: देवी तनिक उधर देखिए, उधर वहाँ अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
0: हैं? मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
4: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूपुर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
0: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
4: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
0: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साथ सिंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
1: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
0: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
1: सच सच कह दूं,
0: ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
1: सच?
0: बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
1: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ
0: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
1: आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है।

0: लाओ अपना दूसरा पैर दो। मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
1: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
0: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
1: मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए
0: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
1: ये सब झूठ है उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
0: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। हाँ
1: क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो।
0: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
1: सच पर सखी उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
0: अरे पगले भौरों के डर से कोई कानों में आम्र मंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो इस पैर में भी महावर लग गया अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दू। लो अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो।
1: अरे क्या सोच रही हो।
0: सखी यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
1: अरे मेरा तो नाम ही बकुलावली का है मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
2: वाह बकुलावलिका वाह। मित्र बकुलावलिका ने बड़ी चतुराई से मालिका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
3: महाराज उधर देखिए मालिका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कान में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
2: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं ही अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
3: तो आइए महाराज मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया।
1: आई गौतम महाराज भी
3: क्यों रही बकुलावलिका सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं।
1: आर्य गौतम मैं आर्य इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की थी महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
2: अच्छा तो कोई बात नहीं उठो मालविका हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
3: ठीक है ठीक है ठीक है महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
2: क्यों भद्रे तुम्हारा ये किसले कोमल बाया चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है। लजाओ नहीं विलासनी बोलो।
1: महारानी को जाकर सूचना दी जिनकी आज्ञा अनुसार हमने।
0: अरे पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
2: भद्रे तुम जा सकती हो परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
4: मालविका अग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण भी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
3: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी। वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
2: हाँ हाँ।
3: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
2: बिल्कुल।
3: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
2: हाँ।
3: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है क्योंकि दोनों गाने वही थे।
2: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की,
3: नहीं,
2: थी कि चुनरिया पर ही आपको
3: नहीं, नहीं,
2: लिखा।
3: मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
2: आपस का
3: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5000 चुनरिया तो नहीं है। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: अलग मैंने किया। लक्की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग।
1: हाँ।
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन

0: एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सैमसन
0: वो जगह ही रहता था।
1: अरे
0: और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल, हम लोग बैठ जाते थे। सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के। हाँ ना भाई साहब, इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया।
0: और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया, हिमेश रेशमे के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना, वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहां तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं। तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए, दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी, जी।
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया। तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: बोले लिख लेना, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा। तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया। और ये उनका बहुत बड़ापन था, उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया। और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ तीन पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया। और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले, अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है, आ जाना।
1: अरे वाह।
0: तो इतने ग्रेट थे, वरना कहाँ रविंदर जैन और कहाँ सुधाकर शर्मा, क्यों मेरे गाने लेंगे वो। देखिए रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते। तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल,
1: अच्छा,
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में लाके दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए हैं,
1: भूख लगी
0: होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत
0: खूब। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ।
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर।
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा।
0: मैं बेचैन हो गया। हमने कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया।
1: अच्छा।
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से

0: हटा दीजिए आप और इसको यहां लगाइए और इसको यहां लगाइए।
1: जी।
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा, जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है, और वो हो गया। और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा, तो मैंने गाना लिखा नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है।
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था नीले पीले फूलों में तू है, ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का, और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार विजू।
0: पहली बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था, तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लक्की सब में है ना,
1: हाँ।
0: दावा नहीं कर सकते
1: जी,
0: अपन
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मेरा ठीक है,
1: ओहो
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी।
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा। मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेज को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था। तो ये इस गाने की कहानी है, बहुत ही खूबसूरत गाना था
1: जी, और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बना,
0: और मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ। ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया, उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये बातें ना जानने को मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है, मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे
1: जी।
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं। ट्यून जो है ना ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है।
1: अच्छा।
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था मेरे को एक दिन बोले गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए, तो मेरे को हिमेश भाई बोले सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त।
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
1: बिल्कुल।
0: बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के कितने हैं
1: बहुत।
0: तो सर ये बनाते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है।
0: फिर मैंने दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता, फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी तेरे बिन, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया। और ये सुपर डुपर हिट गाना हो।
1: गजब सर, गजब गाना। तो, क्या तो के साहब और

0: भाई ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है। मैं
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कोई चीज को क्रिएट कर रहे हैं,
1: लेकिन नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिन

0: दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा जो राजस्थान से हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है, उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है, तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ, जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
1: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा,
0: वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब, वो
1: सोनू निगम जी के पिताजी
0: जी, वो गाना गा रहे हैं, तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है, वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा, हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा, और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे, और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते हैं, उसमें कोई
1: बहुत बड़ी बात आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है आपने, और आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना, तो ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
0: ये मुझे भी नहीं पता, वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
1: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत है, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़े आपके गीतों को?
0: नहीं नहीं, अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहां भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है, तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है उसको ले जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
1: अच्छा।
0: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता।
1: अच्छा।
0: हमने फायदा क्या इसका, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है। तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम, मैंने कहा लिखोगे अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया, और वो इतने ग्रेट हैं वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले, तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा।
1: तो हाथों हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
0: बिल्कुल लिखवा देते,
1: सिचुएशन बतानी पड़ती है या
0: हाँ जो भी सिचुएशन बताएंगे
1: बहुत खूबसूरत
0: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
1: हर रिकॉर्डिंग में
0: मैं रहता हूँ, और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है, मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीजें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, संगीतकार है, वो चाह

0: हूँ कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें। ऐसी स्थिति कभी आई?
1: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी, लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
0: अच्छा।
1: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूं कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
0: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद
1: एक
0: का।
1: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं।
1: जी।
0: इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी।
1: लेकिन ये एक

0: ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूं और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं, वीना कैसेट कंपनी
1: जी
0: हमारे केसी मालू जी की है,
1: बिल्कुल
0: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूं, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
1: जी
0: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से,
1: उड़ली।
0: ओडली
1: अच्छा, यहाँ पर भी
0: म्यूजिक,
1: चुनरी आई।
0: चुनरिया अंडरस्टूड
1: हाँ जी।
0: है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने अमित कुमार।
1: अरे वाह।
0: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए
1: अच्छा
0: और हम लोग घर पे गए। तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
1: जिनका जिक्र अभी आप कर
0: जिक्र
1: रहे थे।
0: किया। तो मैंने कहा यार सतीश जी मेरे लिए इतना काम कर दो यार। उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं
1: अच्छा
0: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कई बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूं, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूं, जो है वो है।
1: जी जी
0: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या पैसा। तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए यार कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो
1: क्या
0: मेरे को यकीन नहीं हुआ
1: बात
0: कि
1: को,
0: अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 रुपया
1: ₹1
0: नहीं
1: नहीं
0: लूंगा।
1: लूंगा। वाह अद्भुत
0: ये बहुत ही अद्भुत,
1: बात।
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदर कांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदर कांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा,
1: हाँ हाँ सही
0: लेकिन
1: बात
0: मेरी
1: है।
0: औकात ही क्या, मैं
1: हाँ
0: क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर
1: उनकी
0: पाऊंगा।
1: महानता देखिए आप, अमित
0: लेकिन
1: कुमार
0: उनकी
1: साहब
0: ग्रेटनेस देखिए, हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है ये बात अलग है, लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं,
1: जी
0: लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ,
1: बहुत
0: और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं
1: सैल्यूट
0: कि
1: है उन्हें।
0: बस वो खुश रहें स्वस्थ रहें एकदम।
1: बिल्कुल
0: ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना।
1: जी।

0: जी,
1: लेकिन उन्होंने क्लियर किया
0: कि मैं कुछ नहीं लेने
1: वाला, कुछ नहीं लेने
0: वाला। बहुत बड़ी बात सर।
1: तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई है और मैं भावुक हो गई हूँ। एक गाना पहले सुन लेते हैं।
1: एक गाना हम लोग सुनते हैं। मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए। तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी।

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो मैं, लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना,
0: गाना नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला।
1: अरे
0: गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: नहीं, आपने उनको एक

0: प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
1: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं।
0: हाँ, जी,
1: तो
0: जी, जी,
1: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
0: बहुत सुंदर।
1: और वो हो गया।
0: सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को। क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
1: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करोगे एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन बट AI जो है ना, आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता। चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
0: सबसे बड़ी बात,
1: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
0: एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई।

0: भी रहे हैं।
1: अच्छा, लेकिन
0: बट AI जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: सबसे बड़ी बात
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तभी आज तक काम कर रहा हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोड़ पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फोड़ पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे तरीके,
0: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, पांच पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाग्नि जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी, जी।
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूं तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा, और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए। और एक गाना ही नहीं, समझ लो मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
1: बिल्कुल,
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं मैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है।
1: बिल्कुल,
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही। तो आप आइए, काम कीजिए, हैव पेशेंस, काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
1: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया,
0: फिर 82 से 97 तक इंतजार किया
1: दूसरे गाने का।
0: नहीं, कोई गाना बाहर तो आए। 97 में गाना बाहर आया, ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है
1: जी।
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ।
1: अच्छा।
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, और उसमें कोई 300-350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ कंजक

0: उन जगह नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया मैं, घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और बोलता है अरे यार मैं तेरे को भी फोन लगा रहा हूँ तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूँ तब तक तू आ गया। वह जल्दी आ अंदर आ अंदर आ अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, तीन गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो।
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ ना कुछ
1: बात करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं। इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब ये कभी मेरे ख्वाबों में थे और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सबसे मैं मिला हूं।
1: जी, और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश देशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद वक्त है थोड़ा रुकने का, थोड़ा मुस्कुराने का और खुद के लिए जीने का।
1: दोस्तों, जब दिन भर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है तो दिल कहता है कुछ अपना सा चाहिए, और यही वो शाम का वक्त है जिसका इंतजार हम सभी को रहता है।
0: दोस्तों, सूरज ढल रहा है लेकिन सपने अभी जिंदा हैं। दिन ने शायद थका दिया हो लेकिन शाम फिर आई है आपको जोड़ने, आपके जज्बे से, आपकी धड़कन से।
1: दोस्तों, फिलहाल तो आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर कार्यक्रम युवाणी के साथ,
0: और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त मनीषा,
1: और मैं हूँ रजत।
0: तो कीजिए स्वीकार हम दोनों की ओर से हंसता खिलखिलाता प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों, कहते हैं कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर खुद को पहचाने कैसे।
0: बात तो तुमने ठीक कही कि आखिर हम खुद को पहचाने कैसे। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों की सफलता देखकर अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: हमें लगता है कि शायद हमारे भीतर कोई खास बात नहीं है, जबकि सच तो ये है कि हर इंसान अपने आप में अनमोल कृति है।
1: हाँ दोस्तों, हर इंसान में अपनी एक विशेषता होती है। किसी की ताकत उसकी सोच है, तो किसी की मेहनत, तो किसी की मुस्कान, और तो किसी का आत्मविश्वास उसकी ताकत हो रही है।
0: इसलिए दोस्तों, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपने आप को कभी भी कम मत मानिए, बल्कि आप यूं मानिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अपने काम में अपना 100% दीजिए और कभी भी अपनी तुलना औरों से मत कीजिए,
1: क्योंकि दोस्तों ईश्वर ने किसी को भी साधारण नहीं बनाया है। साधारण तो हमारी सोच होती है। हर व्यक्ति अपने भीतर असीम संभावनाओं को लिए होता है, इसलिए अपने गुणों को पहचानिए।
0: और वैसे भी रजत, हम सब वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं।
1: हाँ,
0: है ना। बस अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, लगन हमारी सच्ची होनी चाहिए, कोशिशें जीवन में ना जो करते रहनी चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना कि मंजिलें मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। और हमारे जो इंटेंशन है ना वो प्योर होने चाहिए।
1: बिल्कुल। और जीवन में हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी औरों को देखकर दुखी और मायूस भी नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ हैं, यही मानना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: सभी में अलग अलग टैलेंट होता है, बस जरूरत होती है उसको निखारने की। इसीलिए जो है उसमें खुश रहिए, बस मेहनत करते रहिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा रजत, कि जो है हमारे पास उसमें खुश रहें हम, संतुष्टि का भाव हम रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्दों की इत्तेफाक में कुछ यूं बदलाव करके देखिए, आप मुस्कुरा कर देखिए, अच्छा लगता है।
1: हाँ,
0: तो
1: हमें अच्छा करने के लिए पहले अच्छा फील करना जरूरी
0: अच्छा फील होता है। सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए कुल मिलाकर हम कहें तो, क्योंकि जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अच्छा होगा हमारे जीवन में। तो फिलहाल हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक अच्छा सा गीत दोस्तों को सुनवा लेते हैं।
1: बिल्कुल।

श्रोता अभी सुन रहे हैं युववाणी। फिलहाल अभी लेते हैं छोटा सा अंतराल और सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की कड़ी संख्या 8। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
2: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए और समाज में बड़ा परिवर्तन आए।
2: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
3: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है। अच्छा। हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं हुआ।
2: अच्छा।
3: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया, जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गाँव को हरा भरा बनाएं।
2: तो ये कब शुरुआत की आपने?
3: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहाँ से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया, राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले। और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल ने मन में धारण कर लिया, प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
2: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
3: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं, एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
2: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
3: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
2: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
3: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
2: अच्छा।
3: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
2: अच्छा।
3: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
2: अच्छा।
3: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम। और उसमें मातृ शक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
2: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
3: सोनीपत।

0: सोनीपत में ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो वो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
1: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें, पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं। लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
0: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
1: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, IPS हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे DGP हैं, IG हैं, SSP हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर। जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई। जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा। अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
0: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब GK के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
1: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
0: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
1: जब हमें पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है, तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले, एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग, भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति, एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है, उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
0: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
1: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं, उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला। और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए, और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गाँव अपना परिवार की तरह है, और पूरा देश अपना, एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि आज एक विचार है प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मात्र

0: शक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूँ, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूँ, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: अपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को विचार को हिला दिया, समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहाँ पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहनें युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को ही बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहाँ भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गाँव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गाँव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे वो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को इकट्ठा करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं बहने बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, एक जैसे घर में त्योहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूं विचार के माध्यम से ये एक संख्या पंचायत तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया।

0: बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
2: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें जैसे एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहे और ऑक्सीजन भी खुश हो के देश के।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
2: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े और थैला प्रयोग करते थे, और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
2: तो देखो ये पर्सनैलिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनैलिटी है, एक इंटरनल पर्सनैलिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ, प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गाँव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
2: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में, मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
2: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है, लेकिन समाज की बात करें लोगों में बहुत कम जागरूकता है कि पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा, एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं, हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है,
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
2: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
2: हां, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं, और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
2: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता मैं, जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक

0: इतनी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां मधुमक्खियां और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए? जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हो, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है, किस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमरता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की कड़ी संख्या 8 FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम

वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी का शेष भाग।

0: दोस्तों, हर दिन कुछ नया सीखना जरूरी नहीं कि मुश्किल हो। कभी कभी एक छोटी सी जानकारी भी बहुत कुछ सिखा देती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा रजत। और अब कार्यक्रम में समय है नॉलेज कॉर्नर का, जहां आसान शब्दों में मिलती है काम की जानकारी।
0: तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, सोच को खुला रखिए और ज्ञान के सफर का हिस्सा बनिए। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो हर साल जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दुनिया भर में सरकारी आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA द्वारा 1923 से जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है।
1: रजत, जब भी हम कोई दिवस मनाते हैं, सप्ताह मनाते हैं, पखवाड़ा मनाते हैं, तो किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर के हम मनाते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और आज के दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो भी हम दोस्तों को बता देते हैं कि लोगों को सहकारिता की भावना से जोड़ना और यह संदेश देना कि जब लोग मिलकर कार्य करते हैं तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है।
0: वाह। और दोस्तों, सहकारिता का अर्थ है एक दूसरे का सहयोग करते हुए सामूहिक रूप से आगे बढ़ना। किसानों, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों, ग्रामीण समुदायों के आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण में सहकारी संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: रजत, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसान अकेला खेती करे, महिलाएं स्वयं सहायता समूह न बनाए या लोग मिलकर एक दूसरे की मदद न करे, तो क्या विकास की गति वही रहेगी?
0: बिल्कुल नहीं, क्योंकि विकास तब होता है जब लोग साथ चलते हैं। सहकारिता हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है सामूहिक प्रगति।
1: बिल्कुल। और यदि हम हमारे देश की बात करें रजत, तो भारत में सहकारिता की जड़ें बहुत गहरी हैं।
0: हाँ।
1: दुग्ध उत्पादन से लेकर कृषि, बैंकिंग, हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूह तक सहकारी संस्थाओं ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं।
0: और मनीषा, यही कारण है कि आज सहकारिता आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बन चुकी है। और दोस्तों, सहकारिता हमें ये भी सिखाती है कि मैं से हम तक का सफर ही सच्ची प्रगति का मार्ग है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज आवश्यकता है कि हम अपने परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज में सहयोग, पारदर्शिता और विश्वास की भावनाओं को और अधिक मजबूत करें। फिलहाल हमारी वाणी को थोड़ा सा यहीं विराम देते हैं और सीधा दोस्तों आपको लिए चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा संगीत।

0: तो दोस्तों, अब वक्त है नॉलेज कॉर्नर में आगे बढ़ने का। और आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे महान क्रांतिकारी को जिन्हें आंध्र प्रदेश के लोग प्यार से मैयम विरुडु यानी जंगल का वीर कहते हैं। आज उनकी जयंती है, महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती।
1: जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में हम आपको बता दें कि इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश की पंद्रंगी गांव में हुआ था। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार, विशेषकर आदिवासी समुदाय पर हो रहे अन्याय को करीब से देखा और उनके अधिकारों की लड़ाई में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
0: और दोस्तों, साल 1922 में उन्होंने आदिवासी साथियों के साथ मिलकर रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया। ये विद्रोह ब्रिटिश सरकार के उन वन कानूनों के खिलाफ था जिनकी वजह से आदिवासियों की पारंपरिक आजीविका और जंगल पर उनके अधिकार छिन रहे थे। राजू ने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई और कई पुलिस चौकियों पर सफल अभियान चलाए।
1: और रजत, तुम्हें पता है कि अंग्रेजों ने उस वक्त उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। आखिरकार 7 मई 1924 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय उनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी, लेकिन इतने छोटे से जीवन में उन्होंने साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी प्रेरणा देती है।
0: और दोस्तों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान वर्ष 2022 में उनकी 125वीं जयंती पूरे देश में मनाई गई और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सम्मान दिया गया।
1: दोस्तों, उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के कमजोर और वंचित लोगों के अधिकारों के लिए खड़े होने में है। और वैसे भी तो कहा जाता है दोस्तों कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, हम काम ऐसा करें कि औरों के हित भी आए।
0: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हैं और उनके साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम से प्रेरणा लेते हैं।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज उनकी जन्मतिथि है। एक ऐसे नेता जिनकी पहचान सिर्फ भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी, सादगी और राष्ट्र सेवा के लिए भी की जाती है।
1: दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को तत्कालीन पंजाब प्रांत के सियालकोट में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक और श्रमिक मामलों के शोधकर्ता के रूप में की, और बाद में वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए।
0: और इसी के साथ साथ दोस्तों, श्रमिकों के अधिकारों के लिए उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। वे लंबे समय तक अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से जुड़े रहे और स्वतंत्र भारत में श्रम एवं रोजगार योजना और गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे।
1: और मनीषा, एक दिलचस्प बात मैं बताऊं कि गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने।
0: अच्छा।
1: पहली बार 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद, और दोनों ही बार उन्होंने लगभग 13 दिनों तक देश की जिम्मेदारी संभाली और लोकतांत्रिक परंपराओं को पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़ाया।
0: और उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात ये थी कि सादगी। इतने ऊंचे पदों पर रहने के बावजूद उन्होंने बेहद साधारण जीवन जिया। उनके ईमानदार सार्वजनिक जीवन

0: और राष्ट्र के प्रति योगदान के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया।
1: और दोस्तों, गुलजारीलाल नंदा हमें ये संदेश देते हैं कि किसी भी पद की सबसे बड़ी शक्ति अधिकार नहीं बल्कि ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सेवा की भावना होती है।
0: तो दोस्तों, गुलजारीलाल नंदा जी की जयंती पर उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शत-शत नमन करते हैं और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वाह करने का भी हम संकल्प लेते हैं।

0: दोस्तों नॉलेज कॉर्नर में आगे बढ़ते हैं और करते हैं बात एक ऐसी संस्कारी योजना की जो बहुत कम खर्च में परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने का काम करती है। इसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी PMJJBY।
1: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रजत ने जैसा कि बताया एक सरकारी योजना के बारे में जो आप सभी के लिए बड़ी काम की है। तो कई बार हम चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत महंगा होगा, हम सोचते हैं पर ले नहीं पाते हैं रजत, है ना। लेकिन ये जो योजना है जो तुमने बताई इस सोच को बदलती है।
0: हाँ।
1: ये भारत सरकार की एक वार्षिक जीवन बीमा योजना है जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य ये है कि देश का हर नागरिक कम प्रीमियम में जीवन बीमा का लाभ उठा सके।
0: और दोस्तों इस योजना के तहत अगर बीमा धारक की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी को 2 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है।
1: अब इसके लिए तो पात्रता भी जरूरी है कि वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो हम दोस्तों को बता देते हैं कि इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के वे लोग ले सकते हैं जिनके पास किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता हो। योजना हर साल 1 जून से 31 मई तक मान्य रहती है और इसे हर वर्ष रिन्यू किया जा सकता है।
0: और सबसे खास बात मनीषा कि इस योजना का सालाना प्रीमियम केवल 436 रुपए है
1: बस,
0: और ये राशि सीधा आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट हो जाती है, यानी राशि अलग से जमा कराने की कोई चिंता नहीं होती।
1: तो याद रखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के कई बैंक खाते हैं तो वे इस योजना का लाभ सिर्फ एक ही खाते के माध्यम से ले सकते हैं।
0: और आज के समय में जब जीवन की अनिश्चितताओं का कोई भरोसा नहीं, ऐसी योजनाएं परिवार को आर्थिक संबल देने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।
1: बिल्कुल बन सकती है दोस्तों। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ा है तो अपने बैंक या नजदीकी डाकघर से इसकी जानकारी अवश्य लें।
0: और दोस्तों लोगों को इसके लिए जागरूक भी करें क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है।

0: दोस्तों कहते हैं कि अगर इंसान प्रकृति के साथ मिलकर काम करे तो ऐसे चमत्कार जन्म लेते हैं जो सदियों तक दुनिया को प्रेरित करते हैं। और आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे अनोखे अजूबे की ओर जहां पुल सीमेंट और लोहे से नहीं बल्कि जीवित पेड़ों की जड़ों से बने हैं। वैसे तो पुल बनाने का काम इंजीनियर्स का होता है, लेकिन भारत में एक ऐसा पुल है जिसे प्रकृति और आदिवासियों ने बनाया है।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेघालय के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज की। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद अपने हाथों से रास्ता तैयार किया है। ये पुल सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि अपनी मजबूती और पर्यावरण के प्रति संदेश के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको बता दें कि ये पुल 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और अपनी सुंदरता और अनूठेपन के लिए इन्हें 2022 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया गया है।
0: और दोस्तों यूनेस्को ने इन पुलों को जियेन कियेंग जरी नाम से मान्यता दी है। इसका मतलब है जीवित जड़ों से बना पुल।
1: दोस्तों आपको बता दें कि ये कोई आम पुल नहीं है बल्कि पेड़ की जड़ों से बने होते हैं और वो भी पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से।
0: और दोस्तों जैसा कि मनीषा ने बताया कि ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और आज भी मजबूती से खड़े हुए हैं। और इस अनोखी कला की वजह से अब ये पुल पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन गए हैं।
1: दोस्तों इन पुलों को रबड़ के पेड़ की मोटी जड़ों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलाकर बनाया जाता है। इन जड़ों को धीरे धीरे कई सालों तक एक खास दिशा में मोड़ा जाता है ताकि वो पुल का आकार ले सकें।
0: और दोस्तों इसे बनाने में 15 से 20 साल लगते हैं, लेकिन जब एक बार ये बन जाते हैं तो ये पुल 500 साल तक भी टिक सकते हैं।
1: अब आपको बताते हैं दोस्तों कि ये पुल है कहाँ। जैसा कि मेघालय का तो हमने नाम लिया ही, लेकिन मेघालय

0: का सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज 175 फीट लंबा है। यहाँ अलग अलग गांवों में लगभग 100 या उससे ज्यादा लिविंग रूट ब्रिज हैं।
1: और दोस्तों इनमें सबसे प्रसिद्ध है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज जो मेघालय के नोंगरियाट गांव में स्थित है। 2 मंजिला ये प्राकृतिक पुल दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
0: और दोस्तों ये पुल हमें एक बड़ा संदेश देते हैं कि विकास का अर्थ केवल आधुनिक निर्माण नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना भी है। जब हम पर्यावरण का सम्मान करते हैं तो प्रकृति भी हमें अनमोल उपहार देती है। तो दोस्तों ये तो था हमारा देश हमारा सेगमेंट।

0: दोस्तों, समय सचमुच पंख लगाकर उड़ जाता है, है ना रजत? बातचीत का यह खूबसूरत सिलसिला अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। उम्मीद है आज की बातों ने आपके मन को छुआ होगा, आपको कुछ नया सोचने और कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी होगी।
1: याद रखिए दोस्तों, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें देखने का साहस हो, और मंजिल उसी को मिलती है जो हर चुनौती के बावजूद अपने कदम आगे बढ़ाता रहता है। इसीलिए अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और हर दिन खुद कर एक बेहतर रूप बनाने का प्रयास कीजिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा रजत, कि हर दिन हम खुद को एक बेहतर रूप में बनाने का प्रयास करें, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी मुस्कान हमेशा बनी रहे, आपके सपनों को नई उड़ान मिले और आपका हर प्रयास सफलता की नई कहानी लिखे। अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं। आज का सफर आपने तय किया मनीषा और
1: रजत के साथ।
0: दीजिए अनुमति हम दोनों को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया।

0: किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म नमकीन का गीत, जिसके शब्द लिखे हैं गुलजार साहब ने।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजूं से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

सुनते हैं अगला गीत फिल्म अर्थ से। जगजीत सिंह की आवाज में कैफी आजमी का गीत और जगजीत सिंह का ही संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

इस नज्म के बाद आइए सुनते हैं कव्वाली फिल्म आरजू से, जो 1965 में बनी थी। आशा भोसले मुबारक बेगम की आवाजों में हजरत जयपुरी की लिखी रचना, जिसे संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं यही कव्वाली।

आइए श्रोताओं, आपको एक कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे दें। आज रात्रि 8 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण। तो सुनना न भूलेंगे 8 बजे आज रात। आइए इसी के साथ सुन रहे थे हम फिल्म संगीत और सुनते हैं अब अगला गीत। अगला गीत हमने चुना है फिल्म आवारा से। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र की गीत रचना और शंकर जयकिशन का संगीत।

और इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.03.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:27 होने को है और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिन्दी में प्रादेशिक समाचार और फिर जिले की चिट्ठी और उसके बाद सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: श्रोताओं, अब समय हो चुका है समाचारों का।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया।

0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी और राज्य में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ी। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। 79,450 करोड़ रुपए से अधिक की ये रिफाइनरी प्रदेश के औद्योगिक और पेट्रोलियम सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगी। हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम से सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का शोधन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। उन्होंने चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये परियोजना विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से राजस्थान में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी रिफाइनिंग क्षमता में लगातार विस्तार किया है और देश आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला राष्ट्र बन चुका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वैश्विक संकट के बावजूद घरेलू रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित रखने में सफलता हासिल की। समारोह के दौरान श्री मोदी ने सरकारी सेवा में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने एलपीजी टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी के मैन कंट्रोल यूनिट का अवलोकन कर कच्चे तेल की शोधन प्रक्रिया, तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रिफाइनरी परिसर में खेजड़ी का पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पूरी दुनिया को 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने समय पर लिए गए निर्णयों, प्रभावी रणनीति, संसाधनों के संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति के बल पर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ईंधन संकट से जूझ रहे थे, तब भारत ने स्थिति का सही आकलन करते हुए दूरदर्शी नीति अपनाई और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे राजस्थान के लिए

0: गौरव का क्षण बताया। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज समूचा देश और राजस्थान विकास की गति पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
1: आज का यह ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और यह सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
0: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से बना यह टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के हिसाब से तैयार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। प्रदेश भर में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालयों पर हुए कार्यक्रमों में जिला प्रभारी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान 54,000 से अधिक युवाओं को रोजगार किट वितरित किए गए। इनमें प्रधानमंत्री के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में नियुक्ति पत्र सौंपे। जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित रोजगार उत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। डीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सवाईमाधोपुर में डॉ किरोड़ीलाल मीणा और चूरू में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि विभाग ने प्रदेश को जैविक खेती का मॉडल बनाने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच के प्रयास तेज किए हैं। कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने आज कोटा में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि किसानों को जैविक उत्पादों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए जिलों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी।
2: अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को किसानों के पास जाएं, कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो कई बार बिक नहीं पाते, तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है हमारा है। इसमें हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी हमारे संस्थान है, वहाँ हर जगह हम जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अपने प्रोडक्ट लाके निःशुल्क उनको जगह उपलब्ध कराएं।
0: सिरोही जिले के आबूराज स्थित ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आज से विधि और न्याय मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। दो दिन के सम्मेलन में देश में न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक सुधारों और कानूनों पर देश भर से आए विधिवेत्ता विचार विमर्श कर रहे हैं। इस दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुसार देश के न्यायिक क्षेत्र में कार्य योजना पर भी मंथन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 12 से 18 जुलाई तक आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 अब 9,651 पदों के लिए होगी। गौरतलब है कि आयोग ने शुद्धि पत्र के जरिए पूर्व में पदों की संख्या बढ़ाकर 10,537 कर दी थी, जिसे कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले पर आयोग के सचिव ने आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान बताया कि मूल पदों में अधिकतम 50% तक की ही बढ़ोतरी की जा सकती है।

0: सुनवाई के बाद आयोग ने शुद्धि पत्र जारी करते हुए 9651 पद अधिसूचित किए हैं। राज्य में मॉनसून की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। करीब सप्ताह भर की देरी से आए मॉनसूनी बादलों ने बीते 24 घंटों में दक्षिणी पूर्वी जिलों के साथ ही पश्चिमी जिलों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की उत्तरी सीमा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू से होकर गुजर रही है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 5-7 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की भी चेतावनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ी। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मॉनसून, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी अनेक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के साथ साथ विकास कार्यों की भी लगातार समीक्षा कर रहा है। आज की जिले की चिट्ठी में इन सभी पर बात करेंगे। जिले में पिछले दिनों मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिला। कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश थमने के बाद उमस बढ़ गई है। दूसरी ओर धान की रोपाई का काम शुरू होने से किसान खेतों में जुट गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। इसके साथ ही घग्गर नदी में पानी की संभावना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई और नदी के तटबंधों के मरम्मत का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव लगातार शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी काम करने के निर्देश दे रहे हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में अनियमितताओं की जाँच भी जारी है। कृषि विपणन विभाग ने जांच के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी विक्रय के मामले सामने आने की पुष्टि की है। विभाग के अनुसार दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और आढ़तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 3 दिन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग 2 लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा की 2 बूंद जिंदगी की पिलाई, जो निर्धारित लक्ष्य का 78.70% रहा। CMHO डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर छूटे बच्चों को दवा पिलाई। अभियान में 11,780 पोलियो वैक्सीन वॉयल का उपयोग किया गया। शेष बच्चों तक पहुंचने के लिए फॉलो अप अभियान जारी है। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बीते दिनों 1 दिवसीय रोजगार शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। शिविर में निजी कंपनियों, प्रशिक्षण संस्थानों और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से सैकड़ों युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया। रोजगार विभाग ने साल भर ऐसे शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। जिले के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को गैर संचारी रोग कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर 2रा स्थान प्राप्त हुआ है। CMHO ने बताया कि समयबद्ध स्क्रीनिंग, नियमित उपचार, फॉलोअप, डेटा गुणवत्ता में सुधार और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं

0: के प्रभावी क्रियान्वयन से ये उपलब्धि मिली है। जिले में उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की व्यापक स्क्रीनिंग की गई। हाल ही में राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले 60 भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान तथा 24 प्रेरकों को प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने दानदाताओं की सराहना करते हुए उनके योगदान के वीडियो जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शित करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस और प्रशासन ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की। गांव-गांव जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया। जिला प्रशासन के मिशन बुनियाद के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 400 से अधिक ईंट भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीमों ने स्वास्थ्य जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, बच्चों का टीकाकरण, कुपोषण की पहचान, एनीमिया जांच और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। श्रमिकों को स्वच्छता, मौसमी बीमारियों तथा नशा मुक्ति के प्रति भी जागरूक किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ, जिसमें 4000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाला विकास रा काम आरी शुरुआत कीनी और पूरा भया काम देश ने समर्पित कीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माए मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई हूँ। राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी। और राज्य में चौमासारी बिरखा तेज भी, आवता कुछ दिन माए उगनी और लंकाओ हल्का माए भारी बारिश री चेतावनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालोतरा जिला रा पचपदरा माए देश रो पहलो ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स देश ने सौंपियो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार का न्यू मिलर 79,450 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चों बनाई जी ई रिफाइनरी माए सालाना 90,00,000 मीट्रिक टन कच्चो तेल साफ करियो जावेला। इस मौके प्रधानमंत्री 1,05,000 करोड़ रुपया रा खर्च वाला पेट्रोकेमिकल्स शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली और जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा चरण रा काम रे शुरुआत कीनी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपिया। वह चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेलवे लेन ने दोवड़ी बनावन री परियोजना और नेशनल हाईवे नंबर 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 ने 4 लेन री बनावन रा काम री शुरुआत कीनी। श्री मोदी 1,000 मेगावाट बूता वाली बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना ये जनता ने सौंपी। प्रधानमंत्री राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा हल्काऊं बिजली निकासी सारू 1,900 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चों बनाई जी ट्रांसमिशन लाइन रोई उद्घाटन कीनो। इस मौके वे कहो के रिफाइनरी री आ परियोजना विकसित और खुदरे पान उबो भारत बनावन री दिशा माए खास कदम है। श्री मोदी कहो के तेल साफ करन रा इन कारखानाओं प्रदेश माए मोकड़ा लोगा सारू नौकरी धंधा रा मौका बनेला और औद्योगिक विकास और तेज वेला।
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ।

0: आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी कहो कि पश्चिम एशिया संकट रे बावजूद भारत टेम सर करी जिया फैसला, असरदार रणनीति, साधना रा संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति रे पाण ई चुनौती

0: भारत टेम सर करी जिया फैसला असरदार रणनीति साधना रा संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति रपाण ई चुनौती रो कामयाबी सागे सामोकिनो व कहो के दुनिया रा कई देश ईंधन री परेशानियों जूझ रिया हा वहां वगत ही भारत आगे री सोच उन नीति अपनार देश री ऊर्जा हिफाजत तय कीनी।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया, औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: प्रधानमंत्री कहो के भारत तेल साफ करण रा बूता ने लगातार बधावन सागे आज दुनिया रो रिफाइनिंग बूता वालो चौथो मोटो देश बन गयो है। श्री मोदी कहो के सरकार दुनिया माए तेल गैस रा संकट पीछे रसोई गैस रा मोल माथे काबू राखण माए कामयाबी हासिल कीनी। जलसारा दौरान वे नवी सरकारी नौकरी लागण वाला नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपया। ए मौके प्रधानमंत्री रसोई गैस भरिया टैंकर ही रवाना कीना। श्री मोदी रिफाइनरी री मेन कंट्रोल यूनिट रो दौरो कर कच्चा तेल न साफ करण री प्रक्रिया तकनीक और उत्पादन की जानकारी लीनी। वह एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत रिफाइनरी परिसर माए खेजड़ी रो पौधो ही रोपियो। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रधानमंत्री रो आभार जताता थका तेल साफ करण रा कारखाना रा उद्घाटन ने राजस्थान सारू माथो ऊंचो करण वालो बतायो। श्री शर्मा कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए पूरो देश और राजस्थान लगातार विकास कर रियो है।
1: आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और यह सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
0: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाव बागड़े, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री, जनता रा नुमाइंदा और मोटी तादाद माए जनता मौजूद रही। इन पहली प्रधानमंत्री जोधपुर माए हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल भवन रो उद्घाटन कीनो। इ मौके वे संशोधित उड़ान योजना री शुरुआत कीनी। 28,840 करोड़ रूपये री ई योजना रो मकसद आवता 10 साल माए जनता ने हवाई सेवा मुहैया करावनु है। कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती मौजूद रहा। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव राखी जियो। जिला मुख्यालय माथे राखी जिया कार्यक्रम में माए जिला ना प्रभारी मंत्री और जनता रा नुमाइंदा सरकारी महकमा माए नई नौकरी लागण वाला ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपिया। इस दौरान 54,000 नौजवाना ने रोजगार किट दिया जिया। आ कार्यक्रम माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा पचपदरा माए राखी जिया कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण बताई जियो। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर माए नियुक्ति पत्र दीना। जोधपुर माए राखी जिया रोजगार उत्सव माए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सागे राज्य रा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल समेत जनता रा कई नुमाइंदा शामिल भया। डीग माए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, सवाई माधोपुर माए प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, सवाई माधोपुर माए किरोड़ी लाल मीणा और चूरू माए प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत नवी नौकरी लागण वाला ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपिया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई न शुरू फैला। 13 अगस्त ताई चालन वाला पावर सत्र सारू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे दीनी है।

0: संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू आ जानकारी दिनी। वे बतायो कि सत्र में देश रा भला सारो खास मुद्दा माथे सार्थक बहस चर्चा और फैसला करण माथे ध्यान दियो जावेला। कृषि विभाग प्रदेश ने जैविक खेती रा हलका माय आदर्श बनावन सारू जिला स्तर माथे सोशल मीडिया अकाउंट मनार बत्ताऊं बत्ता काश्तकारां ताई पहुंच बधावन री कोशिश तेज करती नी है। कृषि आयुक्त नरेश गोयल आज कोटा माय राखी जाए कार्यक्रम माय बतायो कि किसाना ने जैविक उत्पादा ने बेचण लायक बनावन जनता ताई वारी जानकारी पुगावन और सर्टिफिकेशन री जानकारी दी जावेला। वे बतायो कि जैविक उत्पादा री बिक्री सारू जिला माय ठौड़ मुहैया कराई जावेला।
1: अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को किसानों के पास जाएं, कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो कई बार बिक नहीं पाते, तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है हमारा है, इसमें हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जो भी हमारे संस्थान है ऑफिसेज है वहाँ हर जगह हम जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अपने प्रोडक्ट लाके निःशुल्क उनको जगह उपलब्ध कराएं।
0: सिरोही जिला रा आबू राज माय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माय आज विधि और न्याय मंत्रालय री खास उपलब्धियां वारा माय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कीनो। दो दिन रा ई सम्मेलन माय देश माय न्याय व्यवस्था प्रशासनिक सुधार और कानून बारा माय देश भर आया कानून रा जानकार विचार कर रहा है। अरब मौसम राज्य में भय रही चौमासारी बिरखा बीच लाड़ला 24 घंटा माय प्रदेश लंकाऊ उगनी जिला सागे आतुणी हल्का माय कई ठोड़ा चोखो में बरसियो। मौसम महकमा रे मुजब मानसून री उत्तरी सीमा उदयपुर अजमेर झुंझुनू वहती निकल रही है। विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन माय राज्य रा कुछ और हल्का माय चौमासारी बिरखा भवन रा आसार है। जयपुर भरतपुर कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माय आवता 5-7 दिन चौमासारी बिरखा चालती रहवन री संभावना है। इन दौरान उगनी और लंकाऊ उगनी हल्का माय कठे कठे भारी और कठे कठे घनी भारी बारिश सारू चेताईचियो है। आखिर माय खास समाचार एकर फेरू सुन ले राओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा माय देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपया बत्ता खर्च वाला विकास रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा भया काम देश ने समर्पित कीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माय मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई हूँ। राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी। और राज्य में चौमासारी बिरखा तेज हुई। आवता कुछ दिन में उगनी और लंकाऊ हल्का में भारी बारिश री चेतावनी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।

FM 102.3.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम न सुन बाला सारा किसान भाई और बनियान कताई दन्ना भाई के डी से गणी गणी राम राम भाई बनाओ आज च अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस आप कताई बता दें जुलाई का पहला शनिवार के दिन अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाओ छे सहकारिता में अपना कतरा ही जो किसान बन भाई छे वहाँ कता कई फायदा छे इमा अपन कता खाद मिल जाओ छे बीज मिल जाओ छे सहकारिता सु

0: जुड़िया रहा मा कृषि ऋण भी आपन ले सकाचा, खाद बीज भी आपन ले सकाचा। भाई बनाओ अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन 1923 में पहली बार यो दिवस मनाया गयो और एक बाद संयुक्त राष्ट्र ने एकताई मान्यता दी और 1995 में एकताई आधिकारिक रूप में मनायो जा रहे छे। 1926 में एक थीम छे शांति पूर्वक विश्व के लिए सहकारिता। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कताई सहकार से समृद्धि संकल्प साथ मनायो जाओ छे, जिको मुख्य उद्देश्य छे किसान महिला और ग्रामीण जो लघु उद्यमी छे वही सशक्त बनावो। तो बनवाया हूँ सहकारिता छे उसो आपन कताई जुड़नी चाहिए और पूर्ण रूप से इस फायदो उठानी चाहिए। भाई बड़ा अब जो छे आप फसला ले वाला चा बुआई का फली कर वालो एक मुख्य काम छे उच्च बीज उपचार। बीजाई फफूंद से बचावा के लेकर कीट और रोग से बचावा के लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एक प्रक्रिया छे। इसु अंकुरण क्षमता में भी बढ़ोतरी हो छे, तो क्यों ना अपन कताई ऐसा काम कर लेनी चाहिए। फफूंद नाशक सु उपचार करवा के लेकर बीजा में मिट्टी जनित रोग छे सड़न च इसु बचावा के लेकर फफूंद नाशक कार्बन डाइजिमसु उपचार कर सकता। कीटनाशक उपचार च शुरुआती अवस्था में लाग वाला जो रस चूस वाला कीट च दीमक च वासु बचाव के लेकर आपन इमिडा क्लोरोपिड लेप लगा उपचार कर सकता। जैविक उपचार च रासायनिक दवासु बचवा के लेकर ट्राइकोडर्मा पाउडर को उपयोग कर भी आपन पौधा की जड़कताई मजबूत कर सकता। और नाइट्रोजन स्त्रीकरण का लेख बुआई सुटी फली राइजोबियम कल्चर को उपयोग कर भी आपन बीज कताई उपचार कर सका था। भाई बनाओ आपन कताई बीज उपचार कर वो आवश्यक छे, जैसे वह खचन का छोटा बच्चा का आपन टीको लगावा चा तो ये आपनो बीज को टीको छे उपचार कर लेगा।
1: फसल के अच्छी पैदावार और कीटासु सुरक्षा के लेकर जैविक और रासायनिक बीज उपचार विशेष रूप से आपन कताई करनी ही चाहिए। भाई बनाओ ग्रामीण विकास योजना को मुख्य उद्देश्य च गाँव में आजीविका का अवसर और जीवन स्तर कताई ऊपर उठावो। ग्रामीण विकास योजना गरीबी उन्मूलन शिक्षा स्वास्थ्य कृषि कताई सशक्त बनार ग्रामीण अर्थव्यवस्था कताई आत्मनिर्भर बना वाली योजना च। ग्रामीण विकास योजना का अंतर्गत आजीविका और रोजगार सृजन जैसा आप कताई बतावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का माध्यम से ग्रामीण परिवार कताई हर साल 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास योजना का अंतर्गत छ यानी जो बेघर लोग छ जहाँ कच्चा मकान छ वहाँ परिवार कताई बुनियादी सुविधा सुयुक्त पक्का मकान उपलब्ध करा वाली एक योजना छ। स्वच्छता और स्वास्थ्य स्वच्छ भारत मिशन के जरिए गाँव में व्यक्तिगत शौचालय को निर्माण और साफ सफाई कताई बढ़ावो देर और खुला में शौच से मुक्ति दिलाबा का लेख बीमारियों से मुक्ति दिलाबा का लेख एक बहुत ही अच्छी योजना छे। पेयजल आपूर्ति योजना जल जीवन मिशन को मुख्य उद्देश्य हर ग्रामीण का घर ताई नलका माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करावो छे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के द्वारा गाँव का जो युवा छे वहाँ का ताई मुक्त कौशल प्रशिक्षण देर और रोजगार और स्वरोजगार का अवसर प्रदान करावो छे। यह आत्मनिर्भर बना वाली एक बहुत ही अच्छी योजना छे। कृषि और सिंचाई आधुनिकरण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का माध्यम से प्रति बूंद अधिक फसल का सिद्धांत पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ार और किसान सिंचाई की उन्नत संसाधन उपलब्ध करा वाली एक मुख्य योजना छे। भाई बनाओ आपन कता ये जितनी भी सरकारी योजना छे या में ज्यादा से ज्यादा फायदो उठानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपन कताई भाग लेनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि सिद्धन्ना भाई तो बताई बता कर रहे छे। भाई बनाओ आज जो छे आपन आकाशवाणी गाँव का क्रम में चालंगा गाँव पटोलिया तहसील केसुराई पाटन और जिला बूंदी का गाँव में तो लियो चाला गाँव पटोलिया। किसान भाई बनाओ कोटा मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव पटोलिया केसुराई पाटन मुख्य सड़क से दाया हाथ पर पटोलिया गांव में एक डामर की सड़क जारी छे। जैसे अपन गांव में चल रहे छा बड़ो ही अच्छो गांव दिख रहे छे, पेड़ पौधा यहाँ पर्याप्त मात्रा में दिख रहा छे। गांव में चलना चा कई कई तो यहाँ खेती बाड़ी हो छे, कसी कसी फसला हो छे और लोग यहाँ का खेती बाड़ी कसी करे छे, डंडा डोर कतरा पाड़े छे।

0: जी साहब बैठे जी या चूतरी में या सुकरा राम राम राम राम राम साहब
1: राम राम साहब
0: का नाम छ आप
1: मार नाम छोटलाल जी।
0: छोटलाल जी आप मां कता ये बताओ आप नो जो यो गांव छ पटोले कितना बरसा पुरानो गांव हो
1: देखे मान रहे हो
0: यही देख आप ये बता सको जगह भाई यो पटोले जो गांव छ खुले बसायो
1: मीणा रहते हैं कोकर विचार या बिल मीणा भी रहता है यहां पडियार भी छ यहां बहुत भी रह छे देखो
0: दादी ये भी बताओ जो यो गाँव च पटोले हो तो एक नाव पटोले कशा
1: पटोले से पड़े गाँव का नाव एक नट चौकिया बेच बात वो मोड़े पाटन जो राजा का राज में जो वहां की गाँव जागारी में दिया ने जो वहां चल गया जगह पाटन ले गो पटोलगढ़ ले गो क्या तो पटनी च कहीं तो ना लिया का पटोलगढ़ लेगा अरे यहाँ चार एक झोंपड़ा है पटोलगढ़ नाव मार आ गयो छो जब नटे जागारी में अच्छा पटोलगढ़ नाम
0: अब दाई साहब ये भी बताओ अच्छी कोई पुरानी तालाब
1: पुरानो मंदिर तो ठाकुर जी को मंदिर छे देखो
0: कितना वर्षा पुरानो
1: वो ये गांव के ले रहा है
0: अच्छा
1: और देव महाराज को मंदिर छो वो भी साथ गए जी
0: अच्छा ये भी ऊट पुराना टाइम
1: हाँ पुराने टाइम का है जमा गया तो मंदिर माता जी को रे सब
0: अच्छा दाई साहब आप मांग दाई अभी बताओ कहियो जो गांव छे यो आपने अशान कोई देखियो कान का ही में फिर बदलो
1: भाई पहले तो चा कच्चा झोंपड़ा है पूरा टोटल कच्चा झोंपड़ा अब तो वहाँ ये पक्का हो गया है ज्यादा पक्का हो गया
0: ये रोड वोड ये भी चल बोले
1: कौन सा कहीं भी कौन सा गेला की बहुत मच्छी पक्षी है गारा में चाल
0: फिर ऊट से मान लो कोई बरसात का दना मरिया में कोई बीमार से
1: मारोगे ले जाओ ना तो फिर कना बटान ले जाओ सर
0: अतरी समस्या थी
1: अपनी समस्या थी गांव में तो बहुत समस्या थी
0: ये लाइट वाइट रही है कतरा बरस हो
1: गया 15-16 साल
0: अरे रोड वोड रही है बढ़िया अपना गांव में यो खुरंचो जो यो सीसी रोड जो यही बढ़िया कतरा टाइम
1: यही तो ज्यादा धंधा हुआ हाल 10-15 साल हो
0: अजय भाई साहब ये भी बताओ कि जो आज आप देख रहे हैं जहाँ अबाणु को जमाना और पुरानो जमाना
1: अंतर हो गए भाई यू सुधार मरिया बस सारी बात में बड़े गणो अंतर आ गए साहब
0: तो आप ही पहले को जमाने बढ़िया लागे जो अखबार को बढ़िया लागे
1: भाई पहले को बढ़िया जो दो अखबार को तो चार देख ही रहा था
0: सुख सुविधा में देखा तो
1: सुख सुविधा में देखा तो
0: अब ज्यादा होगी
1: ज्यादा सुविधा सारी सुविधा होगी बार
0: पहले कोई ना जी
1: पहले कहाँ जी
0: खान
1: पीन ठीक लागे जी आजकल की कौन ये पहले का वावड़ा बड़ा मया में जे गाराम मंडिया रह जा ये रह जा बच्चा बच्चा या सभी ने
0: मतलब जमानो खाबा पी बगा हिसाब से पुराना बढ़िया छ
1: बढ़िया अच्छा
0: कशा कशा गांव हो चा दाज
1: सुंदर है हो चा गाड़ा गांव हो चा सारे ताने का 3-4 कुलटी गांव हो चा बढ़िया गांव
0: पहले और अब
1: बना पानी का
0: बना पानी का भी चना और खाद की जगह काई दे छ
1: खाद तो आ तो काई ना दे छ यूं ये खाद की जेवड़ी को खाद कचा
0: और अब
1: तो खाद दे रिया नहीं
0: कहा दे रहे तो भी नटा हो रहे
1: नटा हो रहे
0: तो फली को अनगाड़ को चुदा जी बाहर को गाड़ो
1: फली को अनगाड़ को चौबाण को तो कहे जे वो बुम चबू सोए तो
0: सारे
1: दुआया को माम सब्जी में दुआया चाह रही थी अरे गुआ में दुआया चाह रही थी चावड़ा में दुआया चाह रही थी सभी दुआया बीमारियां ना हो थी
0: फली
1: हाँ तो 17 बीमारियां गोडा दुख छ कोई का कहीं दुख छ कोई कमर दुख
0: फली स्वस्थ रह जा मन
1: स्वस्थ रह जा बोले काम करे अब आजकल का कोई काम ना कर
0: कुल मिलार बात ही अच्छे का जमानो फली को बढ़िया जो खान पीन का हिसाब दाई साहब आपने मस्त बात करी बहुत बहुत धन्यवाद राम राम
1: सर राम राम सर
0: एक और अपनी किसान देख रहे हैं कराचा राम राम राम राम साहब
2: राम राम साहब
0: का नाम जाप
2: मारो नाम मुकेश
0: अच्छा मुकेश जी गाँव करे वाला छो
2: हाँ
0: तो मुकेश जी मांगता ये बताओ कि जो गर्मी की गहरी जुताई करा था तो कैसे करिया
2: पहले आपने अगर जुताई करवा ली धान की तैयारी कर रहे हैं आप
0: क्यों करी जाओ थे गर्मी की जुताई
2: ताकि उमग आ जाए कचरो ना हो
0: जो भी जीव रह
2: समाप्त हो जाए
0: काय करेगा अब
2: धान की बुआई कराऊं
0: तो धान में बीज बीज ले
2: आओ
0: अच्छा बाध्य हो
2: आओ
0: कतरा दिन को बीज हुए
2: 20-25 दिन का
0: अजय मुकेश जी माइ बताओ कि बीज बाबा को सही तरीको का है कैसे बानी चाहिए बीज
2: पहले खेत में पानी भर लो फिर उसमें ट्रैक्टर से जुताई करवा लो बढ़िया बढ़िया कर करके उसमें फंटे वंटे फेर देते हैं बढ़िया, तो उसमें धान का बीज बो देते।
0: अच्छा बीज ही कहीं

0: ओरा जाके छाटा छा कई करे
1: आप तो छाटा जा बड़े रहे
0: बड़ी कई बार आप देखा देखा अपना बीज में कचरो भी हो जाओ तो कई कई ध्यान रखना मुके
1: कचरा गले फिर अपनी जने ध्यान रखनी पड़े भाई कचरो करनो भाई साहब अपनी दवाई लगा दे
0: कितना दिन का बीज हो एक बाद में दवाई कोई स्प्रे कर सके
1: आप 15 से 20 दिन
0: जो बीज कम बढ़ियो कई कारण रे
1: इस साल का जब बारिश कम हो रही है अपना भाई साहब
0: बरका पड़ा जब कतरा दिन को लाग जाओ
1: बारिश पड़े जब एक महीना को
0: है ना कब तक गड़ो लगा बाकी आपको संभावना थी
1: 7-8 दिन में लगा ला यहां
0: खेत को लेकर काई काई तैयारी कर लिया
1: अब अन तो खेत पानी भर ले जाए और गड़ चारी
0: तो पानी की काई सुविधा जी मुको
1: आड़ मोटर ला रही
0: क्यारा बांध बांध रे पानी भरेगा कपेर मैं ये को नहीं भर देगा
1: क्यारा क्यारा बांध नहीं पड़ेगा कोई जगह ऊंची रहे कोई जगह भरे
0: काई तरह कुछ लगा बाको रुखाड़ बाको
1: पहले तो जो पाड़ दे धीरे धीरे फिर बीज को गेटा कर फिर उतार फैला दे खेत में फिर लेवल लगाती रहे धीरे धीरे
0: तो एक एक पौधो लगाओ जो मुके जी दो पौधा लगाओ
1: मोटो बीज हो जब तो एक एक पौधो ला जाओ या बारीक हो तो फिर दो पौधा भी ला जाओ
0: अच्छा कतरी कतरी दूरी में लगाओ
1: एक एक बार
0: अगर ज्यादा श्यागण लगाते हैं तो
1: फिर नुकसान हो जाए आटो पड़ जाओ
0: भाई दो दिन में तीन दिन में कैसा पानी पुआ रहे जी
1: बीज सुबह सुबह डेली
0: रोज ही पानी
1: पुआ सुबह
0: अजय सुबह के टाइम शाम की भी पुआ सकते
1: शाम की पिलावा तो नुकसान हो जाएगा ठंडो मौसम हो जब तक पिला सका जहाँ ठंडो मौसम ना होना
0: अजय मतलब दिन भर तावड़ो पड़ा
1: जाए शाम
0: तो अपनी सुबह के टाइम पानी पुआनी चाहिए शाम की
1: ना पुआ
0: शाम की पुआते हैं तो बड़े जाए
1: बड़े जाओ
0: कई बीज का पेड़ा पेड़ा पड़ रही है तो ये पेड़ा पड़वाओ का कारण से क्यों पड़ रहे
1: हैं धूप ज्यादा हो रही है ना
0: गड़ो लगावा कुछ सही तरीको काई तो तैयारी करा और कश्या गड़ करनी पड़ोगो काई करनी पड़ोगो ये सारी विधि बताओ मांगे
1: पहले तो अपनी खेत की बढ़िया काई जुताई बढ़िया खेत तैयार करानी पड़ेगा फिर पानी वाणी भर दे अपना फिर बढ़िया पानी भरे हो फिर हम ट्रैक्टर से जुताई करा ले बढ़िया फिर बढ़िया कल्टीवेटर फिर 2-3 बार फेर लिया बड़े हो जाओ खेत अपने फिर बीज ला फिर पटक दे फैला दियो फिर लेवल लगाती रह जाए आराम धीरे धीरे धीरे
0: ज्यादा खाद दे बस ज्यादा फसल होगी काई फर्क
1: पड़ेगा पौधा की पैदावार बढ़िया पुटन बढ़िया
0: बढ़वार बढ़िया हो
1: बढ़वार
0: आप अक्सर देखा जाएगा आपने जो आडो क्षेत्र से यो केशुराई पाटन क्षेत्र से ब्लास्ट आउचर हो तो उनका लेकर अपन फली सुई से कहीं उपचार करा कहीं सावधानी रखना जो ब्लास्ट ना हो
1: तो अपने पेड़ पौधा की डेली देख रेख करनी पड़े ताकि अपनी पत्तो जाल तोड़ भाई काई कंडीशन जो काई कोई ना पौधा ही
0: अच्छा रोज खेत का फेर दे एक बात तो यार दूसरो
1: अपनी पत्तो जाल जाओ जगह जगह आवन गए पहले लागता है आज दवाई लगा दो
0: काई पहचान से उकी रो
1: उसमें सफेद सफेद बाला फेंकने लग जाए
0: अच्छा सफेद बाला फेंक तो बाला की टाइम आओगे उनका पल्ली भी कान का रोग आ भाई संभावना
1: रह जाए ना कोई पौधे नहीं सड़ जाओ जो कीड़ा ला जाओ नहीं
0: जो आपकी बात करते हैं सुन रहे जो और वही काई सलाह दे पूछाओ जो आप
1: समय समय पर देखभाल करो यही से सबसे बढ़िया
0: वही एक बच्चा अपना क्षेत्र मुकेश जी खेती पाती विनती और मोरा पाच कुजाल और जो भाई सुख चाव तो हाथी बात समाज मुकेश जी आप नमाज बात करी बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब
1: राम राम साहब
0: या सुकराचा राम राम राम राम
1: साहब राम राम
0: साहब काय नाम जा आपको
1: बद्रीलाल मन खेती कोई करा साहब उमा वन दान ही वर मुड़ी
0: दान और अगा
1: वर दियो
0: और दियो
1: वर दियो
0: तो माग दाई या बताओ का दान और बवाड़ो बढ़िया रहे छे या फिर आपने एक एक पौधो लगावा बीज तैयार कर करा वो बढ़िया रहे
1: अब ऐसी हो रही तो मान देखो पानी की पिलाई भी ज्यादा
0: अच्छा
1: और लगाए भी कोई बचाओ महंगो पड़े थे तो ये जैसे लगावा से ये और आवास मांग है गड़ को बच गया और लगाई भी बच गई मांग यो उपाय देते
0: अच्छा 18 साल ऐसा आप वो कर रहे थे दूसरो लगा बड़ो ऐसा आपने ओर दो तो आपका कैसे जमेगा भाई मुस गड़ो ओर दो
1: भाई यहीं की थोड़ी पोक ज्यादा देखी माई करते भी कम
0: तो मैं एकदम ये बताओ कई तरीको जो मतलब उराई को कशा हो रहा था कतरा किलो बीघा को हो रहा था
1: 10 किलो 8 किलो 10 किलो 8 किलो
0: 8-10 किलो बीघा को
1: ये हो रहा
0: कई तरीको जो
1: वही तरीको जो कागज साबान से बोर देता वहाँ सुखा मर थोड़ी सुखा मर जो हो रहा है
0: कुंडो मल
1: इतने सौ मल था मतलब एक दो आंगर तीन आंगर ऊपर मल डाल फिर वहाँ सुखा मैं दवाई छिड़क दियो फिर हूँ मतलब थोड़ा तो बाहर आ जाओ चाचा आंगड़ हो फिर हूँ थोड़ा पानी छोड़ देता फिर मतलब दवाई स्प्रे वर कर देता वो जो अंडो हो गए ना जो सब साफ हो जाओ खत्म हो जाओ
0: अच्छा वो मतलब कचरा गंडा है
1: वो
0: पानी को कैसे साधन से आपको
1: हमारे पास तो आम साम तो जो दूसरा गुड़ आम साम बोरिंग से जैसे पिलाऊंगा
0: अच्छा बोरिंग से यहाँ आपको माल में तो आम साम कोई
1: सुविधा वो पिलाई देते
0: अच्छा गड़ो जो गड़ा

0: एक फसल में देखो पानी तो खूब चाहो
1: बीमार को पानी चाहो सा
0: पानी के बना तो गड़ा एक फसल में काम ना वो के दिन में पानी पवान उठो
1: मैं देख लो मैं बाहर ना बसाई छी आमी रे बसाई जो मोल गोल को गे छी पानी पिलाओ जा ना अपने ऐसे प्रकार से पानी पिलाओ जा हूं पूरे बिना रे ना लाल को पानी भर जाओ आमी पूरी रानी चाहिए छे बाहर ना बसाई जी
0: अच्छा
1: तो ये में मतलब जो पोलिटा हम रहेगी तो पौधा बड़ा बढ़ जाओ से
0: खाद बात की काई व्यवस्था करी आप
1: खाद 10 किलो बीघा को तो बोल जाओ
0: वो के ले रहे हैं मलार हो रहे हो
1: प्रमाण तो मिला रहे
0: सुपर हो रही है अच्छा तो यूरिया वगैरह भी देना रहोगे
1: यूरिया पे तो थोड़ा तो लगाऊंगा फिर बाद में
0: कब देगा
1: यो मतलब आपने मतलब 25-23 दिन को जाओगे ना 23 दिन के बाद में
0: फिर यूरिया
1: देंगे 10 किलो 15 किलो
0: बीघा को के बार देनो रहोगो
1: दो बार करते था मतलब ये शुरू में करते था अच्छा एक बात जो पोटा आती टेम पर टेम फेंक दे जाओ सब 5 किलो बस ये फेंका था पोटा आती टेम पर पानी की कमी ना कारण चाहिए बस
0: अजय पैदावार की बात करा तो पैदावार दुनिया में ज्यादा खुशियां होगी
1: देखो इनमें भी 10 था तो इनमें भी बोर्ड को 10-11 था
0: अच्छा
1: पूरे में भी बोर्ड को
0: और लगाए में
1: भी 9 बर्ड और 8 बर्ड और 9-8 को चले जाते ज्यादा ना बट
0: इनमें भी वही बर्ड
1: इनमें भी यही बर्ड
0: और खर्चो ज्यादा कीमत
1: खर्चो इनमें लगाएगा
0: लगाएगा
1: हमसे साहब
0: और मंथ भी ज्यादा
1: मंथ भी ज्यादा
0: लगाए काम
1: लगाएगा
0: पहले बीज भी उछेरनी पड़ो
1: बीज उछेरो फिर मतलब दवाया छिड़को पानी पिलाओ अब गाड़ करो गाड़ कर बीज उपड़ा लट्ठे को दो लगाएगा जो तू वो लेगा 3,000 रूपया वो ले ले 3,000 गाड़ कर ऐसा कर मतलब पानी का जो आ कोई अगर साधन कोई ना तो 3,000 रूपया बिल्कुल दूसरा ले जाए बोरिंग वाला पानी का जो 8-9 हजार रूपया 10 हजार रूपया
0: कतरो खर्चो आए
1: इमें तो यही खर्चो मांगता बन तो कोई ना मालो बन तेज बात
0: कतरा बीघा खर्चो मान
1: अभी तो मांग का 15 किलो बीघा को तो खाद मान लो था और 8-9 किलो बीघा वो बोलो ये खर्चो अरे इमें बात दवाई का जाओ तो मतलब जो 3,000 रूपया मान लो दवाई का खींचो बस खींचो 3,000 रूपया दवाई
0: तो अपने साहब दवाई तो दूरा में भी छिड़कनी पड़े
1: दबाव ना लगे तो फुटाउन कर लीजिए फिर मतलब जो पोटा टेम आते पानी कर दे जाए
0: तो कुल मिला बात और बालो ज्यादा हो गया
1: अब और बाल
0: ये नहीं कर रहे हो जी
1: ये नहीं कर रहे थे पूरा उराई उराई जो मांग तो ऐसे माल मां गड़ा के तो लगा बाल तो बहुत कम से
0: है ना
1: 5% से वो सब
0: ये यहाँ आपके गांव में घुसता है उठी है बार गड़ा
1: हाँ ये लगा रहे थे यहाँ बस ये दो दो पांच दिन ही थे मतलब जगह साधन से पानी का जगह ट्रैक्टर से
0: तो वो लगा बाल
1: लगा बाला
0: बाकी सब और बालों
1: को और बालों को बोलते सब ने सबको उगरी थे अपन होते
0: बिल्कुल आपकी बात करता है जो और मनक सुन रहे थे वहां से आप का खबो छाओ भाई खेती कैसे तरीका से करनी
1: अकाय जताए करो मतलब उनको टाइम से मतलब कचरा पत्र खत्म हो यहाँ पाँच में उनके तब उड़ाई कर दे उड़ाई करो मतलब स्प्रे कर दे फिर उड़ाई कर यहाँ पाँच सूखा में फिर मतलब चार चार छः चार आंगन को आए मतलब वो रोम पानी छोड़ रूम अलग अलग सब पानी छोड़ दवाई छिड़क दे
0: यही तरीके
1: यही तरीके से फिर मतलब एक महीना को हो रूम खाद को स्प्रे कर दे पानी अलग खाद फाँक दे फिर दूसरा खाद फाँक दे फोटो आते टाइम बस कहें वो राम राम साहब
0: राम राम सर
2: राम राम
0: का नाम जा आपको
2: राम स्वरूप
0: जी मांगता है या बताओ गड़ा को बीज बीज बाध्यो का
2: वो रे जा मान भाई भाई भाई
0: तो लगाओ कोई ना का
2: अब ना लगा 2 साल ना लगाऊंगा
0: तो लगा बड़ा फायदो जो और बड़ा फायदो जो
2: और बड़ा फायदो जो
0: का फायदो जी में कशा जी
2: में से गड़ बच गई अकाई बच गई लगाई बच गई अकाई मारो भी मेरे गड़ में दो बार टिकट फरेगा फिर ऊंधा लगाओगा और लेबर ठेका देगा तो हमने वो 2,200-2,300 रूपए ले वो
0: अच्छा पहले आप मतलब पोत तैयार कर रहे फिर गड़ू लगाओ जा और अब सीधी उराई कर
2: सीधी डायरेक्ट
0: उराई तो किसी किस्म को बीज ले रहा है
2: वो 15-09
0: उराई कर दी
2: उराई कर
0: कितना दिन हुए
2: 15 दिन हो गया वो
0: तो छोको तावड़ो पड़ रही जिदी कर
2: ना बारिश बरसी जी ने पड़ी
0: अबाड़ो बीच आम पड़ी जी
2: पड़ी पड़ी जी
0: अच्छा उमई वोट
2: सुर पर तने वो डिमांड
0: दो तो उगे हो का कहीं
2: उगे पानी भी पिला दियो
0: कदनो पड़ो यो देखभाल करनी रहेगी
2: कहीं कोई ना मतलब अड़ो को छोड़ दे 20-22 दिन को छड़क देगा
0: छड़क देगा
2: फिर पानी पिला देगा और फिर से 5 किलो या 10 किलो बीघा को यूरिया देगा जो खत्म हो जाएगा सब
0: फली न चढ़ के काम लोग।

0: बात
1: सो काम में चढ़ के मान ना चढ़ी
0: आपने सो काम ना चढ़ की
1: 22 दिन को हो जाए
0: तो अब उन के दिन को
1: आल 15 दिन को
0: 15 दिन को 5 दिन बाद दवाई चढ़
1: हां सर
0: पानी के बार पायो
1: एक बार ही पायो
0: अच्छा काई तरीको जो और बागो कसे हो रहा था
1: कहे 10 किलो बीगा को पटके से कोई 12 किलो बीगा को पटके से कोई 15 किलो बीगा को पटके से वो से पटके कोई डीएपी मिला रहा कोई ना मिला और वो से कर
0: अच्छा अच्छा सही तरीको कहे जे भाई मलार और नहीं चाहिए जे
1: बना मले हो रहा है जो में अबार माले अपने बीज भी हो रहा था और खाद भी हो रहा था तो सड़न हो जा रहा हूं
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई कृषि वैज्ञानिक भी यही कहते कि अगर खाद और बीज दोनों ले रहा पड़ गयो ना
1: तो सड़ेगा
0: तो उसड़ेगा कोई नहीं बहुत बढ़िया
1: अब यहाँ से अब मशीन अलग अलग तरीका क्या बला गई खाद रहेगी पाछे गड़ो लगे आगे जब बीच में वो जगह रहेगी ना जब वो पौधो दुनिया को खींच लेगो
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बात आप बता रहे जो
1: अलग अलग पेटिया कर जाए अलग अलग पेटिया बला
0: वही मशीन सीड ड्रिल काम लेनी चाहिए वो बढ़िया रहते
1: आज 40 अब हो अगले साल देखो
0: अब जैसे शुरू में आपने कहा नदियों पर होता है
1: सुपर फांग निर्माण फली हाँकड़े में
0: अच्छा अजय सुपर फांग बस का ही फायदो
1: मैं ये फायदो से उसे बढ़िया रौनक आ जाओ पौधों से खींच करे
0: पोली जमी रहेगी तो पैदावार बढ़िया हो
1: बढ़िया हो जड़ उंडी जाओगी
0: और अब जैसे 21 दिन को 25 दिन को होगा कचरा की दवाई
1: कचरा की दवाई
0: तो कचरा की दवाई छिड़के के बाद में खाद वाद देगा नदी
1: खाद देगा फिर बाद में देगा मूंगफली यूरिया डालेगा 10 किलो बिगा को या 5 किलो बिगा को और 2-4 दिन पानी भरे रखा 24 घंटा रूम में पिया वो सड़ जाएगा बिल्कुल खत्म हो ये 2-4 दिन बाद फिर वो पानी रोक निकाल देगा और फिर यूरिया डीएपी डीएपी देना हो जो दे देगा
0: भाई यूरिया तो कहे जी थोड़ा सा पानी में ही अगर यू गीलो भी रह जाए निकल
1: जाए पानी भरवो जरूरी
0: पानी भरवो जरूरी और डीएपी कैसे देनी चाहिए
1: डीएपी हमारे बाद में फांका कोई 10 किलो बीघा फांक दे कोई 20 किलो भी फांक दे पर यहाँ तो 10
0: आप कितना किलो बीघा दे
1: 10-15 किलो बीघा डीएपी यूरिया मिला ले जाऊँ मैं 10-15 किलो 25 किलो बीघा दो नहीं मिला फिर जी का बाद में फिर यूरिया फांक देगा
0: अच्छा कितना दिन में पाक जाओ गुड़
1: वो कहे 60 दिन में 90 दिन में सौ आ जाए
0: भी आओ
1: हाँ 90 दिन में मान
0: जाओ 90 दिन में पाक जाओ आपने देखा था कि रोग भी आ जाओ कई बार तो कशो कशो रोग आओ ज्यादातर
1: अब यहाँ देखो पपनी नासिंग भी आ जाओ कोई ब्लास्ट भी लाग जाए तीतिया भी लाग जाए सभी तरह का लाग
0: फिर उनको लेकर काय करनी पड़े
1: दवाया से करनी पड़े देखो
0: है ना
1: रोकथाम लाग जाओ
0: अच्छा अच्छा कितना किलो बीघा की पैदावार
1: यहाँ तो 8-7-8 से जाए रंगड़े
0: अच्छा 7-8 क्विंटल
1: नो खड़िया हो कहाँ से कोई कोई जो हाँ नो तो मुश्किल खड़े
0: 7-8 ही खड़े थे
1: 7-8
0: तो सबको खड़ी जाओ
1: हाँ कोई का कम भी खड़े देखो वो तो मान को फंसे जैसे मान करे वो तो
0: अच्छा आपकी बात करता है जो और मनक सुन रहे भाई आपका सलाह दे बुझाओ भाई खेती बाड़ी में अपनी काई करनी चाहिए
1: खेती बाड़ी में जो भाई ध्यान रखने पड़े जो मैं तो काई जुताई भी करनी पड़े टाइम में खाद बीज भी देनी पड़े थे दवाई भी देनी पड़े थे
0: अच्छा सारो काम टर्म को टर्म ना चूकनी चाहिए आपने माजू बात करी बहुत बहुत धन्यवाद राम राम सर
1: राम राम
0: एक और ये किसान बटिया बैठे हैं सुकरा राम राम राम राम साहब काय नाम जी आप
2: रामकरण
0: रामकरण जी कितना साल की उम्र होगी
2: मारी होगी 50
0: अच्छा खेती बाड़ी करो जो बार
2: हाँ खेती बाड़ी
0: कितना बीघा खेती बाड़ी कर मिल लीजिए
2: बार 5 बीघा मक्का कर मिले
0: कई तरीको जब साहब मक्का करवाओ
2: मक्का को ये तरीको जो मैं 3 किलो बीघा की हो रहा जा
0: कशो बीज कसी किस्म की लाया
2: 70-74
0: तो कहीं बढ़िया किस्म से गया
2: आमा का हिसाब से तो बढ़िया ही से देखो
0: आपना माल का हिसाब
2: से हाँ
0: अच्छा वो बीज कहता है उपचार भी करे हो
2: उपचार वही वही आई
0: तो कशा हो रहे हो काय करे हो
2: वो 3.5 की चूड़ी में
0: कितना किलो बीघा पड़े
2: 3 किलो बीघा को
0: और इका फली भी कान का एक एक आज का है जुताई करेगी
2: हाँ दो बार या का जो
0: तीन बार कट गयी ट्रैक्टर
2: तीन बार कट गयी
0: अब जैसे ये उगेगी तो कान का खाद देनो रहो
2: इमा जैसे अब और ये 30-35 दिन की होगी तो दो आई छोड़ कहाँ कचरा की फिर जी का बाद में 8-10 दिन पास है फिर खाद पाकेगा अभी उन्हें 5 बीघा में 3 कट्टा तो मान रही चालू यूरिया का
0: अच्छा
2: फिर एक बार गंडा रंग दवाई खाड़नी चाहिए फिर फ्री चाहिए फिर तो भगवान को ऊपर जब पका बोर न पका बोर लास्ट में
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया जैसे आप ये मक्का चे तो ये मक्का बेचेगा कसरा बेचेगा
2: नहीं मक्के बेचा सरावरा ना बका
0: तो आस पास जैसे हम आलू ये मंडिया मंडिया मरिया में जाओ तो खूब शराबी बका तो वो मत ज्यादा पाए तो रहो कहीं मत ज्यादा पाए
2: माँ तो देखो शराबी बेच वाला पाए तो रोज

0: मैं कहीं बेचे
1: अच्छा मकई बेचे जो एक बीघा में कई पैदावार रहेगी
0: इमें देखो छह कुंटल भी खड़िया हो पांच भी खड़िया हो और चार भी खड़िया हो बट 400 तो नीचे न खड़ा
1: अच्छा
0: हर बेर ऊपर आला की मर्जी हो जाओ टमाटर बद्दू आई सभी मल जाओ तो छह भी खड़ जाओ चे पांच भी खड़ जाओ चे एक साल सात भी खड़ी जी यहाँ पर सात खड़ी जे भी बिगाड़ दी वो
1: अच्छा
0: वो अलदी की नाई कर गाली
1: है ना
0: जो सात भी फिर वो काई भाव न बकी
1: पांच छह तो खड़े ही
0: नॉर्मल जे
1: अच्छा तो काई भाव से बक जाए
0: ये 1700 1800 2300 ताई तक खींचर
1: है ना लास्ट या तो बकेगी गड़ो में फायदो रोगो का मकाम फायदो
0: देखो गड़ो तो खर्चा को छे गड़ा में तो ज्या बीज पटगे ना ज्या से खर्च हो मक्या में तो हाँ मक्या में कोई ना तो खर्च
1: पैदावार मक्का में ज्यादा छे गड़ा में ज्यादा
0: गड़ा में ज्यादा रह छे और गड़ा को भाव भी ज्यादा रह छे पर उमे खर्चो ज्यादा रह
1: खर्चो ज्यादा रह
0: छे उमे तो ता देख लियो 3000 रुपया भी को तो गड़ और लगाए 5-4000 को तो यो खर्चो लगाए गड़ को तो यो तो डेविनेंट छे
1: बिल्कुल
0: ई के बाज की दुआया पोया वो तो बारे छे वो तो
1: आपको कबो मतलब यो छे के खर्चो कर बराबर हो जाओ
0: हाँ बढ़िया भाव में बग जाओ ना दोनों पास लाए गड़ और में क्या तो दुनिया के पाई दो
1: बराबर ही रहे अजय आपकी बात कहता है जो और मनक सुन रहे थे जो मक्का कर बो छाओ वही आपका सलाह दे बो छाओ
0: भाई ये जो खेती है का और जुताओ और सब टाइम पर करो और का
1: है ना
0: बस
1: और बढ़िया फसल जो मक्का की
0: बढ़िया माओ के तो बढ़िया ही माने पर बढ़िया भी दिशा देख लो मक्का खेता की नाएगा खेत होगा जब भी होगी एक तो बड़ी खेता बोर देगा तो ना मटी को रासो
1: अच्छा ऊपर टाई जमी होनी चाहिए जी
0: हाँ
1: बहुत बढ़िया साहब आपने मस्त बात करी बहुत बहुत धन्यवाद राम राम
0: राम राम साहब
2: किसान भाई बनो आज जो छे आपन आया गांव पटोलिया तहसील केसुराई पाटन और जिला बूंदी में बड़ोई आछो गांव छो खेती बाड़ी भी यहाँ बहुत अच्छी छी पशुपालन भी बढ़िया छो खेती बाड़ी बढ़िया हो छ पानी को साधन नर छ बहुत ही आछो गांव छो भाई बनो वह अचानक टर्म को काम टर्म पर करनी पड़े छ और अब अपना कार्यक्रम में बिल्कुल भी टर्म कोई ना तो आपका धन्ना भाई कहता है दियो आज्ञा चाला सा राम राम ये कार्यक्रम को निर्देशन करियो तेजराम मीणा संयोजन हिमांशु नामा और प्रस्तुति धनवीर मीणा।

आइए श्रोता, आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें। आज रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लोकार्पण समारोह की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल FM 102.106 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।

राजस्थानी लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुन रहे हैं जमुना प्रसाद परमार की आवाज में गाया एक लोकगीत, ओ जुल्मी धीरे धीरे।

अगली आवाज सुन रहे हैं हम अमावस नाथ जी की। आइए सुनते हैं इनकी आवाज में बहुत प्यारा सा लोकगीत, मुझे सतगुरु समझाई रे।

अगला लोकगीत के बोल हैं ओ बादिला थाने। ये गीत के गायक कलाकार हैं बनारसी लाल।

आइए चलते चलते एक और गीत सुन लेते हैं हम। गायक कलाकार हैं जमुना प्रसाद परमार और लोकगीत के बोल हैं कानूड़ो भी जाने मारी प्रीत।

FM 102.3.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लोकार्पण समारोह की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से राजस्थान के पचपतरा में 79,000 करोड़ की राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण किया गया। ये देश का पहला एकीकृत रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल परिसर है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से देश के पेट्रोलियम क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। 9 MMTPA क्षमता वाले इस रिफाइनरी परिसर में 29 प्रसंस्करण इकाइयां काम करेंगी। इन इकाइयों से लाखों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के आरंभ में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऊन से बना पट्टू ओढ़ाकर स्वागत किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस परियोजना के चरणबद्ध विकास की जानकारी दी। आपने इसे विश्व स्तर की नवीनतम पेट्रोलियम परियोजना बताया।
1: आज का दिन केवल राजस्थान और भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। विश्व भर में पिछले 10 वर्षों में बहुत कम ग्रीनफील्ड रिफाइनरीज बनी हैं। इनमें से 2 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किए। 2016 में IOCL की पारादीप रिफाइनरी और आज यहां पचपादरा में HRRL रिफाइनरी जो कि HPCL और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है। आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को मेरा धन्यवाद, जिनका इस परियोजना को पूरा करने में सक्रिय योगदान रहा। सबसे बढ़कर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कर कमलों द्वारा आज इस रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में काफी चैलेंजेस आए, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहां क्रूड या कच्चा तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए एक 490 किलोमीटर लंबी मुद्रा से एक डेडिकेटेड पाइपलाइन बिछाई, मंगला तेल क्षेत्र से एक 75 किलोमीटर की लोकल क्रूड पाइपलाइन बनाई गई, पानी के लिए 230 किलोमीटर लंबी एक अलग पाइपलाइन द्वारा नचना जलाशय से पानी लाने की व्यवस्था की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका स्पष्ट संकल्प था कि थार क्षेत्र को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यह परियोजना सितंबर 2013 में इस परियोजना की शुरुआत हुई। अप्रैल 2017 से तत्कालीन राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन दिसंबर 2023 में जब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी तब ये हालत बदली और ये परियोजना पूरी गति से आगे बढ़ी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित महामहिम राज्यपाल महोदय और अन्य आमंत्रित मेहमानों का अभिनंदन किया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान से हमेशा विशेष लगाव रहा है। आज आप जब भी राजस्थान को आ रहे हैं, आपने सदैव राजस्थान को नई विकास की नई नई सौगातें देने का काम किया है। आप 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान में पधारे थे। आपकी प्रेरणा से राजस्थान में निवेश 35 लाख करोड़ के रिकॉर्ड समझौते हुए थे, लेकिन आप उसमें 9 लाख करोड़ से ज्यादा के काम धरातल पर उतर गए। सरकार का एक साल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर 2024 को आपने राम जल सेतु लिंग परियोजना के साथ 46,365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया था। माननीय

0: फेडरेशन के साथ 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी। पिछले साल सितंबर में पासवाड़ा में आपने माई पासवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास सहित 1,80,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य के उपहार राजस्थान को आपने दिया था। इस वर्ष 28 फरवरी को अजमेर में आपने करीब 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर एवं 17,000 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ देशव्यापी एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया था। आपने प्रदेश को भारतमाला परियोजना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जैसी ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। आज भी आपके कर कमलों से प्रदेश को 1,05,000 करोड़ से अधिक के विकास के कार्यों की सौगात मिलने जा रही है।
1: राजस्थान रिफाइनरी लोकार्पण के साथ 13,000 करोड़ लागत की जयपुर मेट्रो फेज 2, 34,000 करोड़ रुपए की यमुना जल परियोजना का उद्घाटन किया गया। इससे शेखावटी क्षेत्र में जल अभाव से मुक्ति मिलेगी। 75 लाख आबादी निर्बाध जल प्रवाह से लाभान्वित होगी।
2: राम जल सेतु और यमुना जल परियोजनाएं राज्य के जल प्रबंधन को नई दिशा दे रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर जरूरतमंद परिवार को अपना घर दे रही है। और सड़क विकास गांवों को शहरों से जोड़ रहा है।
1: इस अवसर पर ऊर्जा, नागरिक उड्डयन एवं रेल विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया गया।
3: रेगिस्तान का रत्न एचपीसीएल, राजस्थान रिफाइनरी और चूरू सादलपुर चूरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण कार्य। अब हम आप सभी की तालियों के उद्घोष के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्साह के अतिरिक्त के साथ आग्रह करते हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर हम सभी राजस्थानियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें। मान्यवर,
1: समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न आयोजनों में उपस्थित हुए लाखों लोगों का अभिवादन किया। आपने इस उपस्थिति को सरकार के विकास कार्यों में सहभागिता बताया।
4: आज राजस्थान की धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं। यहां जो हादसा हुआ उसके बाद इतनी तेजी से काम पूरा कर लेना, ये भी परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है। आप सबने दिखा दिया है, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है।

0: किया गया है। और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है, चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा। इस कार्यक्रम में जो लोग जोधपुर से जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। भाइयों बहनों, शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रदेश के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी के उत्पादों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
2: जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी।
3: बड़े निवेश प्रस्ताव रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार मिले और लगातार चल रही भर्तियां भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों से युवा हुनरमंद बन रहे हैं। शिक्षा में सुविधाएं बढ़ी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट, साइकिल, स्कूटी जैसी पहल बच्चों के सपनों को गति दे रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के साथ राजस्थान में महिलाएं नई ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं।
1: आकाशवाणी बाड़मेर द्वारा उत्पादित इस रेडियो रिपोर्ट के निर्देशक थे चमनलाल चौधरी और प्रस्तुतकर्ता दिनेश कुमार सैनी, वाचन स्वर मुकेश पाल सिंह। ये
4: FM 102.03.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में सबसे पहले हम सुना रहे हैं फिल्म चिराग से लता मंगेशकर की आवाज में गाया मजरू सुल्तानपुरी का गीत, जिसे संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म बात एक रात की से, हेमंत कुमार लता मंगेशकर की युगल आवाजों में मशहूर सुल्तानपुरी का गीत है और एस डी बर्मन का संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: मगर लगता है कुछ ऐसा

अगला गीत हम लाए हैं फिल्म झुमरू से, किशोर कुमार की आवाज में, उन्हीं के बोल और उन्हीं के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

अगला गीत सुन रहे हैं फिल्म सुजाता से तलत महमूद की आवाज में मशरू सुल्तानपुरी का गीत और एसडी बर्मन का संगीत। लीजिए सुनते हैं अगला गीत।

लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म पेंगेस्ट से लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एसडी बर्मन के संगीत के साथ।

0: दिन
1: शादी नामुमकिन।
0: ये देखो
1: तो कैसे हुआ, कब हुआ? मुझे विश्वास नहीं होता, ये खबर झूठी है।
0: झूठी है? जरा सामने तो देखो।
1: आप माफ करना, बिना खबर के ऊपर चली आई, मगर मेरा ख्याल था तुम अकेली हो। कोई बात नहीं, रमेश ये है। ये कौन है मैं जानती हूँ, सूरत बुरी नहीं?
0: सीरत भी बुरी नहीं,
1: वो तो देखना है।
0: देखने वाले देख चुके।
1: अच्छा तो फिर देर किस बात की?
0: शहनाई बजाने वाले छुट्टी पे गए।
1: बड़ी खुश नजर आ रही हूँ, मुझे भी तो बताओ कौन सी दौलत मिल गई।
0: देखी नहीं आपने?
1: नहीं तो
0: मसूर आपका नहीं, ये दौलत ही ऐसी है जो नजर नहीं आती।
1: फिर वो दौलत नहीं वहम होगा।
0: ठीक कहा आपने, सोना और चांदी ढूंढने वाली निगाहें हर खुशी को वहम, हर मुस्कुराते चेहरे को नजर का धोखा और हर कहते को फरेब समझ।
1: और देखने वालों ने ये भी देखा है, जब सोना चांदी नहीं होता तो हर खुशी गम बन जाती है, मुस्कुराते चेहरे आंसुओं में डूब जाते और हर कहका फरियाद बन जाता है।
0: देखने वालों ने गलत घर में जाके देखा होगा, उन्हें इस घर का पता दे दीजिएगा, यहाँ पाका करके भी लोग मुस्कुराते हैं। क्यों शान है?
1: देखना है कब तक?
0: आखिरी सांस।
1: बड़ा गहरा प्यार मालूम है, क्यों शांति? न जाने तुम लोग क्या कर ले बैठे, छोड़ो इन बातों को। ये बता शादी के बाद कैसे गुजर रही, देखने से पता नहीं चलता?
0: देखने से तो आपकी दौलत का पता चलता है।
1: रमेश चंचल दयाल साहब को साथ क्यों नहीं लाई? अच्छा याद दिला दो, दयाल साहब मेरा इंतजार करते होंगे। बाय बाय।
0: बाय बाय।
2: आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म सोने की चिड़िया से, तलत महमूद और आशा भोसले की आवाजों में साहिर लुधियानवी की गीत रचना है और ओपी नैयर का संगीत।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत, FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, हम डिजाइन

0: मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
0: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
0: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ

0: सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी।

0: एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102.0 3.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 MHz अर्थात 1413 KHz पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं और आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आपके रेडियो दोस्त रामनारायण मीणा का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, आपका सप्ताह भर का इंतजार समाप्त हुआ और उन श्रोताओं का दो दिन का मुश्किल इंतजार भी समाप्त हुआ जिन्होंने हमें फोन करके अपनी बातचीत रिकॉर्ड करवाई और अपनी पसंद के गाने हमें बताए। लेकिन इस बात को थोड़ा सा हम देर से बताने वाले थे, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं को इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये भ्रम बना रहता है कि भाई हम अभी फोन करें या क्या करें, तो उनके लिए बता दें भाई कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग गुरुवार को हो चुकी है। अब आपको ये प्रोग्राम सुनना है और आने वाले गुरुवार का इंतजार करना है फोन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का वही लोकप्रिय प्रोग्राम जिसका इंतजार है पूरे देश भर के रेडियो श्रोताओं को। तो सुनते हैं ये पहली कॉल जरा कहां से आई है। हेलो
1: जी नमस्कार, मैं विजय पांडे पछवाड़वा बलरामपुर से बोल रहा हूँ, पहली बार लगा है आपके।
0: तो बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में
1: जी। मैं दो लाइन कहना चाहूँगा।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इरशाद सुनाइए।
1: महक दोस्ती की

0: महक दोस्ती की इश्क से कम नहीं होती।
1: अच्छा।
0: इश्क बिना जिंदगी खत्म नहीं होती।
1: अच्छा।
0: अगर साथ हो जिंदगी में दोस्ती का तो जिंदगी भी जन्नत से कम नहीं होती।
1: वाह वाह वाह।
0: आपको विजय पांडे का प्यार भरा आदाब नमस्कार।
1: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो विजय पांडे साहब, आप शायरी करते हैं?
0: जी जी जी।
1: अच्छा अच्छा, क्या लिखते हैं, गजल लिखते हैं या गीत लिखते हैं, क्या लिखते हैं?
0: शेर भी लिखते हैं, अधिकतर शेर।
1: अच्छा अच्छा, मुख्तलिफ शेर लिखते हैं आप?
0: जी जी जी, लखनऊ में लगाता रहता हूँ।
1: अच्छा।
0: और वहीं मैं सुनाता रहता हूँ।
1: जी, तो लखनऊ आपके कितने नजदीक है आपके
0: जहाँ? 200 किलोमीटर की दूरी पर है लखनऊ।
1: तो अच्छा, तो आपकी जो कोई प्रतिनिधि गजल या जो रचना हो उसके कुछ अंश अगर आप सुनाएं हमें इस प्रोग्राम में तो हमें खुशी होगी सर।
0: जी, तेरे बिना जो गुजरे हैं
1: वह
0: लम्हे सदियों जैसे हैं, जग में कोई मीत कहाँ, सारे सिक्के खोटे हैं, किसकी अब पहचान करे, मनसुई से चेहरे हैं, फसले बहारा में उन अब के वर्ग भी पीले पीले हैं, दिन के उजले दामन पर काली रात के धब्बे हैं, वक्त के गहरे सागर में हम गुमनाम से कतरे हैं, बेगानी इस दुनिया में आंसू ही बस अपने हैं।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छी नज़्म आपने सुनाई। जी,
0: मैं दोस्ती पर कुछ कहना चाहूँगा।
1: जी जी, कहिए।
0: कहा गया है कि दोस्त वो नहीं जो एक तालाब खुश्क हो जाने पर मुर्गाबी की तरह उड़कर किसी दूसरे तालाब का रुख कर ले, बल्कि दोस्त तो वो है जो तालाब खुश्क हो जाने पर
1: जी
0: कंवल के फूल की तरह सर झुकाकर वहीं पर खत्म हो जाए।
1: अरे,
0: यही सच्चे दोस्त की दोस्ती की पहचान का आला दर्जा है।
1: वाह वाह वाह, बहुत बहुत अद्भुत बात कही आपने। कमल के फूल की तरह अपना सर झुकाकर और वहाँ पर खत्म हो जाना, ये वाकई में एक बहुत ही सुंदर उपमा है। अब बताइए सर, कौन सा गाना सुनेंगे आज प्रोग्राम में?
0: फिल्म का नाम है गबन और गीत के बोल है एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार
0: हाँ नमस्कार, रामनारायण भाई साहब को,
1: जी। जी भूपेंद्र गुप्ता जी।
0: भूपेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, विद्यानगर कोटा।
1: बिल्कुल, हम पहचान गए, हमने आपका नाम पहले ही बता दिया,
0: हम भी आपको पहचान गए।
1: पहचान गए हमें भी। तो
0: जो
1: भूपेंद्र
0: मैंने पहचान लिया बस उसके बाद क्या है, सब कुछ ठीक
1: जी जी जी जी
0: है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: गाना सुना दो मैं तो, एक रात का, इसका कोई सा भी सुना देना आपके हिसाब
1: ठीक
0: से।
1: है,
0: हाँ,

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार।
1: जी भैया, योगेश जांगड़े विमय तरह छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: हाँ योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या हालचाल है आपके गांव के आसपास बारिश का?
1: नहीं है भैया बारिश का, अभी तक तो कोई अता पता। बाकी धान की बुआई तो कल से शुरू कर दिए हैं भैया। जी
0: अच्छा, ये बताइए कि जब बारिश नहीं होती है उससे पहले सूखी जमीन में बुआई कर देते हैं धान की?
1: बन जाता है भैया,
0: अच्छा।
1: मतलब जैसे बुआई कर दिए तो 8 दिन 10 दिन तक में बारिश होना अनिवार्य है, और उस 8 10 दिवस में अगर नहीं होता तो फिर वो परेशानी का कारण बन
0: फिर बीज
1: जाएगा।
0: खराब हो जाता है ना।
1: लेकिन अब उम्मीद तो करेंगे ही भैया, बारिश का दिन है और दस दस दिन तक नहीं आएगा, और आषाढ़ का महीना भी शुरू हो गया है, तो इसी उम्मीद में और सही समय

0: पर डाल रहे हैं भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारी तरफ के कुछ किसानों की सूचनाएं इस तरह से हैं कि उन्होंने बो दिया था लेकिन वो दोबारा बुआई करनी पड़ेगी उनको अब।
0: जी, जो पहले वो बुआई किए होंगे 10 दिन पहले और बारिश नहीं हुआ होगा तो फिर वो वैसी स्थिति बन जाती है।
1: जी हाँ जी हाँ। और बताइए आज के प्रोग्राम में खास क्या कहना चाहते हैं?
0: अब खास तो यही है भैया, अब खेती बाड़ी का दिन है हम लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए, और काफी ज्यादा मेहनत और परिश्रम लगता है, सांस में भाग्य का भी उतना जरूरी रहता है क्योंकि मौसम जो होता है वो प्रकृति जो होता है वो हम पर निर्भर नहीं होता, हम प्रकृति पर निर्भर होते हैं। तो प्रकृति से प्रेम करे, प्रकृति से निकट रहे, यही कह सकते हैं भैया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है हर साल, है ना, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि नहीं? तो योगेश जी बताओ आज के कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: तुम्हें गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, फिल्म सावन को आने दो का टाइटल सॉन्ग सुनवा देंगे।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी। नमस्ते सर जी। जी
0: जी नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका।
1: सर, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर जी।
0: अरे क्या बात है, छिंदवाड़ा तो बहुत ही प्यारी जगह
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सर जी, बिल्कुल आप आइएगा सर, आपका स्वागत है सर छिंदवाड़ा में।
0: तो छिंदवाड़ा के बारे में हमें बताइए, आपके वहां पर आसपास कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां पर्यटक आ सकते हैं या आते हैं अभी।
1: जी सर, हमारे यहाँ पे सर मंदिर सर बहुत ही अच्छे हैं और राइट साइड में सर घूमने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है सर जी।
0: अच्छा।
1: और इधर से सर ये पर्यटक स्थल है सर कर्माजीरी करके पड़ता सर हमारे इधर गांव से, तो सर वहाँ पे मतलब सब पशु देखने की व्यवस्था है सर वहाँ पे। जी
0: अच्छा, सारे पशु देखे जा सकते हैं वहाँ।
1: जी बिल्कुल सर, वहाँ पे सब पशु को देखे जा सकते हैं और बढ़िया मतलब यात्रा हो जाती है सर वहाँ पे, मतलब दूर दराज से लोग आते हैं सर देखने के लिए।
0: अच्छा। तो कौन कौन से पशु वहाँ आते हैं।
1: सर वहाँ पे शेर भी हैं और हाथी भी हैं और मतलब छोटे से लेकर बड़े पशु तक सर पूरे हैं वहाँ पे। जी
0: तो और अपने अपने गांव के बारे में, अपनी जगह के बारे में आप श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे।
1: सर, अभी तो हमारे यहाँ पे सर अभी बारिश हो रही है और मैं एक छोटा सा जॉब करता हूँ सर, बिजली ऑफिस में हूँ सर, ऑपरेटिंग का काम करता हूँ।
0: अच्छा, अरे वाह।
1: और सर साथ में रेडियो में भी सर थोड़ी सी लाइट दे देता हूँ श्रोताओं के बीच में।
0: अच्छा वो कैसे।
1: वो सर बैठे बैठे सर ड्यूटी में जब हम रेडियो चालू करते हैं सर जी, तो हमारा काम रेडियो के माध्यम से यूं ही आसानी में हो जाता है, और कब हमारा समय हो जाता है ड्यूटी का वो कुछ समझ कुछ कुछ पता नहीं लगता सर जी। क्यों सर, कि आप जैसे अनाउंसर महोदय की जब हम आवाज सुनते हैं तो सर आपके साथ साथ हम भी गाना गुनगुना लेते हैं, और आपकी जो वार्तालाप होती है सर जी, तो
0: वाह,
1: हमको सुनने में बहुत ही आनंद आता है सर जी।
0: अरे वाह वाह, आपने तो बहुत ही अच्छी बात कर दी और सारे अनाउंसरों को खुश कर दिया आपने तो है ना।
1: बिल्कुल सर जी, क्या होता है कि देखो आप में सर हमसे जो आप सलाह लेते हो, हमसे जो जगह की जानकारी लेते हो, कहाँ किस जगह पे क्या है कहाँ पे क्या है, ये सर पूरी आपके माध्यम से हमको सुनने में आती सर। क्या होता है कि हम लोग कभी बाहर घूमे फिरे नहीं है, और एक आकाशवाणी एक ऐसा है सर जी कि मतलब यहाँ तो सभी प्रकार के श्रोता लोग से जानकारियां मिल जाती है कि किसके यहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या है, कौन कहाँ पे घूम रहा है, कौन सा गांव कहाँ है, मतलब ये सब सुनने को मिल जाता है सब
0: बिल्कुल
1: सिर्फ हमारी आकाशवाणी।
0: बिल्कुल, हमारा प्रयास यही रहता है कि इस कार्यक्रम में जो भी श्रोता जहां से जुड़ते हैं, वहां की पर्यटन की, वहां के इतिहास की, पुरातत्व की जानकारी हम देश भर के श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, है ना।
1: जी सर।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज के कार्यक्रम में।
1: सर जी आप मुझे सुनो दीजिए सर जी, फिल्म का नाम है अनाड़ी और गीत के बोल रहेंगे सर जी, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है,

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार नमस्कार सर।
0: बहुत स्वागत है हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में।
1: सर धन्यवाद। तो मैं किले धारूर जिला बीड महाराष्ट्र से आपका रेडियो दोस्त सैयद जलाल भाई आपसे बात कर रहा हूँ सर।
0: अरे क्या बात है सैयद साहब, मजा आ गया। आप तो पहली बार फोन आया आपका हमारे प्रोग्राम में, है ना?
1: पहली बार फोन है सर,
0: हाँ
1: आपसे बात कर कर बहुत खुशी हो रही है सर।
0: हाँ जी, हमें भी बड़ी खुशी होती है। नए नए श्रोता आते हैं और आप लोग तो बरसों से रेडियो से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल सर, सही फरमाया सर आपने, सही फरमाया।
0: जी जी जी जी
1: मेरा तो किले धारूर के अंदर फुटवेयर की शॉप है सर।
0: अच्छा। तो कुछ रेडियो की यादें आपके जहन में होंगी जब आप लंबे समय से सुन रहे हैं, तो कौन कौन से
1: हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो 1980 से रेडियो सुनता हूँ सर।
0: अरे वाह।
1: हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत यादें हैं सर रेडियो के बारे में, तो बहुत यादें हैं सर। 1980 से सुनता हूँ सर मैं, बिना का गीत वाले भी मैंने सुना हुआ सर।
0: हाँ निश्चित रूप से सुना होगा।
1: हाँ जी सर,
0: वो समय था जब सिलोन से प्रोग्राम विविध भारती
1: हाँ
0: पर
1: जी
0: आया,
1: सर, हाँ जी सर, हाँ
0: विविध
1: जी सर,
0: भारती पर आया, हर सोमवार को कार्यक्रम आता था।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एक रेडियो था और कर्म का साधन सर, रेडियो लेके बैठे थे तभी आजू बाजू चार पांच लोग और दोस्त वो भी बैठते थे सर सुनते रेडियो को। आज जमाना बदल गया सर,
0: जी
1: आज हर एक के जेब के अंदर रेडियो आ गया सर मोबाइल के जरिए।
0: हाँ ये बात तो सही कहा आपने, क्योंकि बदलाव
1: हाँ जी
0: को
1: सर,
0: देखो परिवर्तन जो होता है ना उसे रोक नहीं सकते, तकनीक का जो परिवर्तन है उसे स्वीकार
1: हाँ जी
0: करना
1: सर,
0: होता
1: हाँ जी सर,
0: है हमें।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज के प्रोग्राम
1: तो
0: में।
1: गाना सुनने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ
0: जी
1: सर।
0: जी इरशाद आपका।
1: दिल में हर राज दबा कर रखते हैं,
0: वाह।
1: दिल में हर राज दबा कर रखते हैं, ओठों पर मुस्कुराहट सजा कर रखते हैं, ओठों पर मुस्कुराहट सजा कर रखते हैं। ये दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, ये दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, इसलिए हम आंसुओं को छुपा कर रखते हैं, इसलिए हम
0: वाह वाह वाह,
1: अपने आंसुओं को छुपा कर रखते हैं।
0: क्या बात है क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर से अपना नाम बताएं सर।
1: मैं किले धारूर जिला बीड महाराष्ट्र से आपका रेडियो दोस्त सैयद जलाल भाई आपसे बात कर रहा हूँ सर।
0: वाह वाह जलाल भाई, आपने तो मजे कर दिए। और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी थी लेकिन अभी कुछ श्रोता अभी लाइन पर हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो फिल्म का नाम है सर सौतन, सौतन 1983 की फिल्म है सर। गायक है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी, और गीत के बोले हैं सर जिंदगी

0: प्यार का गीत है, इसे हर दिल तो गाना पड़ेगा।
1: तो एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं कि ये दोनों आवाजों में अलग अलग गाना है,
0: अलग अलग अलग अलग है सर।
1: तो अब आप कौन सा सुनना चाहते हैं? तो आप कौन सा
0: लता जी की आवाज में सुनेंगे?
1: लता जी की आवाज वाला सुनना चाहते हैं।
0: हाँ जी सर।
1: तो
0: इस गीत के लिए मेरे चंद दोस्त हैं सर।
1: अच्छा,
0: पहले तो आप हैं सर, उसके बाद है हमारे शाहरुख नूर अंसारी, गौतम रायबोली जी, लोकेंद्र वर्मा जी, गंगाधर सावंकर जी, सुनील झा जी, सुजीत राय जी और रामपाल जी। हम सब मिल के इस गीत का आनंद लेंगे सर।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। जलाल भाई, सुनते हैं आपकी पसंद पर, आपके सभी दोस्तों को ये गाना सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।

0: हेलो आकाशवाणी चंबल चैनल।
1: सर नमस्कार।
0: हाँ नमस्ते, स्वागत आपका।
1: धन्यवाद सर जी। टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था सर, परासे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: तो अग्रवाल साहब, आपके इलाके में क्या स्थितियां हैं बारिश की?
1: सर बारिश तो 3 दिन से सर बढ़िया झमाझम बारिश हो रही है।
0: अच्छा, ये कौन सा इलाका पड़ता है आपका?
1: ये सर छिंदवाड़ा जिला पड़ता है सर।
0: हाँ, छिंदवाड़ा से बिल्कुल। एक श्रोता ने अभी अभी कहा था कि उनके यहाँ आपके यहाँ बारिश हो रही है।
1: मेरे कोई मित्र है सर, सतीश रघुवंशी जी।
0: अच्छा,
1: शायद उन्हीं का फोन लगा है।
0: हाँ, एक श्रोता का भी थोड़ी देर पहले फोन लगा है, तो अच्छा लगा कि छिंदवाड़ा के श्रोता कोटा केंद्र पर फोन कर रहे हैं। तो कोटा और छिंदवाड़ा की दोस्ती अब बढ़ती जा रही है।
1: सर कोटा

0: अच्छा, से तो हम लोग काफी समय से जुड़े हैं। अभी मेरा दोस्त है, ढाई महीने पहले कॉल लगा था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: अप्रैल में लगाया था, 17-18 अप्रैल के आसपास।
1: जी, कभी कोटा आना हुआ आपका?
0: सर कोटा आना तो नहीं हुआ, लेकिन सर हमारे मित्रों के बच्चे वहाँ से एजुकेशन निकले, एजुकेशन करके निकले हैं। तो कहना चाहिए यहाँ पर कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर है।
1: वाह वाह।
0: और ये कोटा की एक विशेषता है कहना चाहिए।
1: हाँ,
0: और मेरे एक मित्र थे सर वहाँ पर, वो MPB में मैकेनिकल इंजीनियर भी रहेगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
0: जी
1: हाँ, तो कोटा ने पूरी दुनिया में जितने डॉक्टर्स और इंजीनियर दिए हैं वो तो रिकॉर्ड है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, कोटा का बहुत नाम है इस एजुकेशन क्षेत्र में।
1: अब हमारे आकाशवाणी कोटा के प्रोग्राम का भी नाम है आप लोगों के दिल में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, कोटा से हमें बहुत अच्छी चीजें मिलती है। और एक सर ये जो कहना चाहिए हेलो फरमाइश जो कार्यक्रम चला है
1: जी,
0: इसके माध्यम से सर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ देखा भी है। मतलब मालूम हुआ है हमें रेडियो के माध्यम से, क्योंकि सर हमारे जब श्रोता मित्र जब
1: जी
0: अपने यहाँ की जगहों के बारे में बताते हैं तो हमें कुछ प्रसिद्ध जो है धार्मिक स्थल, कुछ घूमने फिरने की जगह, उनकी जानकारियां होती है जो हम कभी वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, मेरा ये कोशिश रहती है कि हम एक साधारण बातचीत तो बरसों से करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई श्रोता अपनी जगह के बारे में, अपने जिले के बारे में और अपने राज्य के बारे में कोई ऐसी बात बताते हैं जो बाकी लोगों को पता नहीं, तो इस कार्यक्रम की ये और ज्यादा उपयोगिता बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये आपके माध्यम से जो सर हमें जानकारियां मिलती है
1: जी
0: वो काफी सटीक रहती है सर।
1: जी जी जी जी। तो चलिए कोटा के बारे में हम आपको बता दें कि भाई कोटा बहुत तेजी से विश्व के पर्यटन मानचित्र पर उभर रहा है और यहाँ बहुत सारी चीजें पिछले 4-5 सालों में विकसित हुई है, जैसे कोटा रिवर फ्रंट है ना, और यहाँ पर चंबल नदी की जो नदी घाटियां हैं और यहाँ जो बाघ अभ्यारण्य है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग धीरे धीरे जब कभी आएंगे तो आपको लगेगा कि राजस्थान के बारे में एक धारणा होती है कि वहां रेगिस्तान होगा और ऐसे पानी नहीं होगा, वो कोटा में आकर सारी धारणाएं टूट जाती हैं यहाँ आके, है ना।
0: जी जी। तो, और सर मैं भी आपको आमंत्रित करना चाहूंगा सर कि कभी आपका मौका मिले तो सर पचमढ़ी जरूर आइएगा।
1: अच्छा, अरे
0: क्योंकि पचमढ़ी जो है सर एक पर्यटन स्थल है, कहना चाहिए दूसरा कश्मीर कहते हैं जिसको। तो कहना सर हमारे घर से करीबन ये 60-70 किलोमीटर के पास में है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: तो कभी आपका आना हो तो हमें याद कीजिएगा, तो हो सके सर हम जितनी आपकी सेवा कर पाए वो उतना कम ही होगा। कहना चाहिए सर बरसात का सीजन है तो कर सर, अब क्या है कि एक सीनियर सिटीजन है सर और सीनियर सिटीजन से 6-7 साल ऊपर भी हो गए हैं।
1: कोई बात नहीं।
0: तो क्या होता है सर बारिश में भीगने का तो बहुत मन होता है, लेकिन अब सर बच्चों का भी कुछ घर पे उनकी चलती है कहना चाहिए, आप लोग की कम चलती है, बोलते हैं कि पापा अगर कहीं इस उम्र में भीगे और कोई बीमार पड़ गए तो दिक्कत में आ जाओगे।
1: अब जो पीढ़ी है वो बड़ी नाजुक नाजुक मिजाज पीढ़ी है अब।
0: जी जी सर, और हम लोग तो सर मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बोलते हैं कभी फिसल विसल गए सर तो कहीं हड्डी वड्डी इधर उधर हो गई तो जुड़ने में भी बहुत दिक्कत आएगी।
1: जी हाँ जी।
0: सिर्फ सब गाने के माध्यम से सर आनंद ले लेते हैं। और फिल्म है नमक हलाल, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी, आज फिसल जाइए तो हमें ना उठाइए।
1: स्मिता पाटिल जी के साथ में ये गाना हुआ था।
0: जी जी।
1: और बहुत ही अद्भुत गाना है। बिल्कुल, ये तो हो गई उस पर फिल्मांकन की बात, लेकिन इधर किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने इसको गाया है तो वो बात ही कुछ और है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो अग्रवाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुनाते
0: हैं आपका बहुत देर इतना समय देने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार। राम राम, खमा गणी हुकम।
0: हाँ नमस्कार नमस्कार, आप कैसे हैं?
1: मस्त है सर।
0: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
1: मैं उदयलाल टेलर उदयपुर से बोल रहा हूँ।
0: तो चलो बताओ, बारिश को मनाने के लिए आज कौन सा गाना सुनाओगे आप?
1: सर अभी तो मैं पुरानी फिल्म का गीत सुनूंगा, मधुमती का।
0: अच्छा,
1: सुहाना सफर और ये मौसम।

0: समासी
1: मुकेश जी का गाया हुआ बहुत ही
0: मुकेश जी का मुकेश जी की आवाज में गीत है ये सुनेंगे।
1: बहुत सुंदर सलील चौधरी साहब का संगीत है।
0: हाँ जी सर,
1: है ना। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी सर, मेरे साथ राय बोले जी है, गौतम राय बोले जी और लोकेंद्र जी वर्मा, गंगाधर जी सावनकर, भगवान सिंह जी, टेकचंद जी अग्रवाल, मोहनलाल जी, दिलीप जी,
1: अच्छा।
0: और धीरज भाई रेवारी जी, कोटा चैम्बल के सभी श्रोता भाई बहन सुनेंगे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: हाँ नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका
1: हाँ
0: कार्यक्रम
1: मैं
0: में।
1: बोटा सुलेमान बोल रहा हूँ।
0: हाँ सुलेमान जी, अब बताइए कैसे हैं आप?
1: कि आपकी दुआ है साहब, सीखो मतलब हम दुआ करते हैं आपके लिए।
0: चलिए हमारे हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप स्वस्थ रहें और जीवन में आनंदित रहें आप, है ना?
1: ठीक है सर।
0: और बताएं कैसे हैं इन दिनों, क्या
1: क्या आपके सब सुनते ही हम तो सारे जो खबर मिल जाती है, है ना? है ना? अच्छा काम है, अच्छा चल रहा है सारा काम। एक तो दोस्त बैठे मेरे यहाँ पर, एक तो
0: अच्छा
1: केला जी साहू है, ओम जी है,
0: अच्छा
1: शंकर जी है।
0: नहीं कहाँ से
1: तो
0: बोल रहे?
1: मेरा गाना तो लगा था ना आप, दूसरा फूल, हाँ जो दूसरा फूल था ना, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ।
0: अच्छा वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ।
1: हाँ
0: चलो सुनाते आपकी पसंद पर ये गाना, और आपके तमाम दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार हमारा।
2: तेरे

0: हेलो आकाशवाणी
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, स्वागत आपका
1: जी। मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से। हाँ जी सर। और मैं बताऊँ, अभी मौसम बड़ा अच्छा है, बरसात हो गई हमारे यहाँ पर जी। सोयाबीन की फसल लगाई है, सभी किसान अच्छा। में काफी उत्साह है। और अभी आपको बताऊँ, मोबाइल एक्सरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं आपके जी। हाँ, और आकाशवाणी।
0: तो हमारे इस कार्यक्रम में क्या अच्छा लगता है आपको?
1: जी जैसे कि हेलो आकाशवाणी आता है ना, फोन इन प्रोग्राम, इसमें हमें हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को, मतलब दोस्त के बातें सुनने को मिलती है, उनकी पसंद के गाने सुनने को मिलते हैं, और साथ में हमें नए नए दोस्त भी मिलते हैं।
0: अच्छा, आपको याद, मतलब आपको याद आता है कि पिछले कार्यक्रमों में किसी श्रोता ने अपनी जगह के बारे में बताया हो तो वो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वहाँ की जगह के बारे में बताया था, वो मुझे याद रह गया, कुछ याद आ रहा है आपको?
1: जी जैसे कि आपको बताऊँ, हमारे लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन से हैं, वो भी वहाँ उज्जैन के बारे में जानकारी बताते रहते हैं। ऐसे टेक्चंद अग्रवाल जी है और उदयलाल टेलर जी है, उन्होंने कई बार मतलब वहाँ उदयपुर के बारे में हमें बताया, तो ऐसे जानकारी हमें मिलती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है, मतलब आपको जानकारी बताते रहना चाहिए इस कार्यक्रम में, है ना? अच्छा लगता है सुन के।
1: जी जी बिल्कुल। तो मैं भी एक जानकारी बताना चाहूंगा।
0: हाँ बताइए
1: जी। जैसे कि हमारे नागदा शहर में ग्रेसिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर एक बिरला मंदिर भी बनाया हुआ है।
0: अच्छा।
1: और महाकाल विष्णु जी का मंदिर बनाया गया है, और ऐसा शिल्पकारी बनाया गया मतलब पत्थर पर कि मतलब देखने लायक है। और साथ में मंदिर भी है, और मतलब ऐसे गार्डन टाइप रखा है ताकि पिकनिक के लिए भी मतलब वहाँ पे काफी लोग आते हैं।
0: मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई नागदा में उतरता है, वहाँ कुछ एक दो दिन रहता है व्यक्ति, तो वहाँ पर एक तो बिरला मंदिर और एक क्या बताया आपने
1: जी, पिकनिक पोर्ट,
0: पिकनिक स्पॉट जरूर देखें वहाँ पे नागदा में।
1: जी हाँ।
0: अच्छा क्या
1: तो
0: है
1: मतलब
0: नागदा में? नदी,
1: मतलब
0: नदी
1: पास पास में ही है, मतलब मंदिर के पास में ही पिकनिक स्पॉट बनाया गया है और मंदिर भी है। तो मतलब वहाँ पे ऐसे टूरिस्ट आते हैं ना, तो दर्शन भी हो जाते हैं और पिकनिक भी मनाई जा सकती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी। और नागदा आने के लिए ट्रेन की सुविधा भी है, बस से भी है, और अपनी मतलब गाड़ी से भी आ सकते हो।
0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो पिकनिक क्या नदी का किनारा है या तालाब है, क्या है पिकनिक स्पॉट?
1: नदी का किनारा भी बना हुआ है, नदी के मतलब किनारे किनारे बनाया हुआ है जी, और मंदिर के सामने भी है।
0: अच्छा, तो नागदा में जो ये कौन सी नदी वहाँ से गुजरती है?
1: जी चंबल नदी है नागदा में।
0: अच्छा,
1: और चंबल नदी के अंदर ही मतलब आपको बताऊँ चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ, और मतलब आपको बताऊँ मंदिर में जो नदी में जो मंदिर बनाया होगा ना चामुंडा माता जी का, मतलब कितना भी पानी आता है लेकिन फिर भी मंदिर ऐसा का ऐसा ही बना रहता है पूरे, मतलब बरसात में मंदिर में पानी ही रहता है, और जैसे ही बरसात का पानी खाली होता है फिर मंदिर में आवाजाही शुरू हो जाती है।
0: अच्छा।

0: अच्छा, तो ये तो अद्भुत बात हो गई वहाँ की, है ना
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सुनाओ, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में?
1: जी जी बताना चाहेंगे सर, फिल्म का नाम तुम मेरे हो और गाने के बोले जब से देखा तुमको यारा।

तो भाई श्रोताओं, अब आज का कार्यक्रम समाप्त होने को है और बहुत सारे श्रोता ये सोच रहे होंगे कि हमें भी अगली बार इस कार्यक्रम में बात करनी है, फोन करना है और अपनी पसंद का गाना सुनना है। तो लीजिए आपको बताते हैं वो प्रक्रिया जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम में फोन करके और अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं और अपने बारे में हमें बता सकते हैं। आने वाले गुरुवार को सवेरे 11 बजे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी, यानी हर गुरुवार को 11 बजे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है। नंबर है 2941142 और इससे पहले आपको कोटा शहर का एसटीडी कोड मिलाना होगा 0744। और हाँ, आज जिन श्रोताओं की फोन कॉल्स इस कार्यक्रम में शामिल हो गई हैं, वे कृपया अब हमें 2 महीने के बाद ही फोन करें। कार्यक्रम के संयोजक तेजराम मीणा और ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया रामनारायण मीणा ने। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर और 1413 किलोहर्ट्ज पर। ये हम कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। शाम ढली और चांद निकल आया, मैंने पलकी मूंदी और तेरा चेहरा नजर आया। हर अंदाज था जुदा, हर अदा थी निराली, बहुत भा रही थी मुझे ये खुमारी। तेरे जलवों में खोया रहूं, तेरी पनाहों में सोया रहूं, तेरी बाहों में ही मेरी रात गुजरे, दिन जो भी गुजरे अब तेरे साथ गुजरे। न वक्त की परवाह है मुझे अब, न जिंदगी की फिक्र है, तू ही मेरी मंजिल है, मेरी सांसों में बस तेरा ही जिक्र है।

नूर की बूंद जो चांद से टूटकर बिखरी थी मेरे वजूद पर, अब तक भीग रहा है जिस्म मेरा उसी में, छाया है धड़कनों में उसी का सुरूर सा। चांद से मिलने चला था, तेरा चेहरा नजर आ गया, कहकशां तेरे कदमों पर बिछाने की ख्वाहिश जो की, सितारों में सिमटा तेरा हुस्न महफिल में छा गया। तेरे लबों की जुम्बिश, तेरी सांसों की हरारत, निगाहों में है मस्ती और अदाओं में शरारत। शोखी तेरे हुस्न की है सबसे जुदा, हर अंदाज लाजवाब है और आंखों में है वफा।

0: कल रात मेरे सिरहाने पर चांद का एक टुकड़ा बिखरा हुआ था। शायद ख्वाबों में आकर तुमने ही उसे रखा था। सुबह सवेरे जब नींद खुली तो गुलों की चादर बिछी हुई थी। शायद तुम्हारे कदमों की आहट यहां कैद हो गई थी। दरीचे से बाहर झांका तो आंगन में मोगरे के फूल खिले हुए थे। शायद तुम्हारी मीठी हंसी की गूंज इन्होंने सुनी थी। आज धूप की किरणें ज्यादा ही सुनहरी हैं। शायद तुम्हारी मखमली जुल्फों को छूकर ही वो यहां आई हैं। चांदनी को ओढ़कर जब तुम निकलती हो सरे शाम, सारे दिए जल उठते हैं और दिल पुकारता है बस तुम्हारा ही नाम।
1: न झटका जुल्फ

अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है छाया गीत में। तुम्हारी हसीन यादों का सफर अक्सर मुझे भीड़ में भी तन्हा कर देता है। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। तपता रेगिस्तान भी मुझे ठंडी झील सा लगने लगता है और मैं एक मुसाफिर सा उसके किनारे बैठकर तुम्हें सोचता हूं। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। जिंदगी जब थकाने लगती है तो तुम्हारी खुशबू का असर कुछ ऐसा होता है कि हर रास्ता छोटा लगता है, हर मंजिल आसान लगती है। मैं चल पड़ता हूं फिर से उठकर तुम्हारी उसी खुशबू और खूबसूरत याद को आंखों में समेटे।

एक रंग तुम्हारी निगाहों का, एक रंग तुम्हारी अदाओं का, एक रंग तुम्हारे लबों का, एक रंग तुम्हारे गालों का। उस रंग में रंगी हो तुम, उस रंग में रंगा हूं मैं, उस रंग में रंगी हैं हसरतें हमारी, उस रंग में उलझी हैं जुल्फें तुम्हारी, उस रंग में रंगी हैं ये वादियां, उस रंग में खिली हैं कलियां। कहते हैं उसे रंग इश्क का, कुछ मदहोशी का, कुछ सुर्ख सा।

आंखों से खींच कर तुम्हारे दामन को, तुम्हारी एक एक अदा को पलकों में कैद कर लिया। तुम्हारे हुस्न के साए में है अब मेरी मंजिल, तुम्हें देखकर तुम में ही मैं जी लिया। जब भी शाम आती है तुम्हारी खुशबू सी महक जाती है, जब भी सुबह होती है तुम्हारी सांसों में धुल जाती है। कभी मोहब्बत की आहटों सी तुम गूंज उठती हो, कभी मत भरी शामों सी बहक जाती हो, कभी गुनगुनी धूप बनकर सहला जाती हो, कभी चांदनी बनकर धड़कनों को बहला जाती हो। पास आती हो तो जिंदगी बन जाती हो, दूर जाती हो तो बंदगी बन जाती हो। छोड़

जाऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा बच्चा।

0: FM 102.03.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय